0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है? कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे? अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

01 02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म,

0: मन वही सोचे जो सही है, दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल. सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं, ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी. अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल. हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना. द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो. और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए. दिस इज द पावर दैट वी हैव. लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर. दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

खेडूपुनी आवाज 107.9 एफएम पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में बात की थी रोल्स की। हम में से हर कोई कहीं न कहीं एक एक्टर के रूप में अपने आप को जरूर देखना चाहता है। तो आज मौका मिला है कि हम जिंदगी में किस तरह के रोल अदा करते हैं उन्हें देख पाएं। जब अवेयरनेस, क्योंकि जब भी हम एक्ट कर रहे होते हैं हम अवेयर होते हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर जो रोल मैं दिन भर में प्ले कर रहा हूं उसके प्रति अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चल रहा है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं, थोड़ा सा भी अगर अपने आप को डिटैच करके देख पाते हैं, इट इज एक्चुअली लाइक एन एक्टर। हम वो हर रोल को बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड था कि इस रोल को मुझे ऐसे ही डिफाइन करना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी या पिछली कड़ी अगर हमें देखें, वो हमें फ्रीडम देती है कि मैं हर रोल को, हर सीन को अपने हिसाब से अदा कर सकता हूं। तो फिर कौन ज्यादा अच्छा एक्टर होगा जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर उसे प्ले करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने ट्राई किया तो स्क्रिप्ट लिखने में मुश्किल आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो पुरानी जो चीजें हैं वो टेक ओवर कर जाती हैं। कैसे अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें कि हाउ इज दिस क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि उसमें कहीं फन दिखता है, वो जिंदगी के नजदीक दिखती है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग टू रियली यू नो थिंकिंग है या डूइंग में कुछ नहीं हो रहा होता।
1: सी वी फॉरगॉट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि जो हम कर रहे हैं, हमारा हर कर्म, हमारा हर संबंध, हमारा हर इंटरेक्शन, उसमें मेरा अपनी चॉइस, मेरा अपना कंट्रोल, मेरा राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ फीलिंग, राइट वे ऑफ परसीविंग एंड देन राइट वे ऑफ एक्टिंग। हर कर्म करते हुए मेरी सही सोच क्या है, उसका रिजल्ट मेरी सही फीलिंग क्या होगी, मैं हर एक व्यक्ति को, हर परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखती हूँ, और फिर जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा वैसा मेरे व्यवहार में आएगा। तो वो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे पावर दी है कि वो राइट थिंकिंग क्या है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि मैं थिंकिंग कर सकता हूं, पहले तो यही नहीं पता।
0: वही तो मैं कह रही हूँ कि जो तीन पोर्शन आपने बताए वो तो ऑटोमेटिक हो रहे थे, मैं सिर्फ एक्टिंग या मैं जो कर्म कर रहा था उस पर केंद्रित था,
1: क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ बाहर देखा है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीइंग कि वो प्रोसेस शुरू कहां से होता है। यू नो, जैसे एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट रेडी होकर मेरे हाथ में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट का जो प्रोसेस था कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे हुआ। तो आज दिन तक बॉडी कॉन्शियस या हम मटेरियलिस्टिक जिसको कहते, मतलब प्रोडक्ट को देखना, दिस पर्सनैलिटी आफ्टर इट इज रेडी, तो ये पर्सनैलिटी कैसे बोलती है और ये पर्सनैलिटी कैसे व्यवहार करती है, लेकिन ये पर्सनैलिटी क्या सोचती है वो उसकी फाउंडेशन है। लेकिन जब हमें ये नहीं पता था कि थिंकिंग इज द फाउंडेशन ऑफ माई एवरी वर्ड एंड एक्शन, और मुझे ये नहीं पता था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, मेरा हर संकल्प मैं क्रिएट करती हूं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर कि इररिस्पेक्टिव परिस्थिति कैसी भी है, आई हैव द पावर टू क्रिएट विच एवर थॉट आई वॉन्ट। सो बेसिकली ज्ञान या स्पिरिचुअलिटी हमें ऑटोमेटेड मोड से चॉइस के मोड में ले आता है कि आई चूज टू डू, टू थिंक, टू प्ले, टू एक्ट द वे आई वॉन्ट, एंड दिस इज फ्रीडम, दिस इज कम्प्लीट फ्रीडम। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी विल गिव मी फ्रीडम, दिस फ्रीडम विल गिव मी क्रिएटिविटी, कि एक बार मुझे समझ में आ गया मेरी फ्रीडम है, मेरी चॉइस है, मैं हर रोल को कैसे भी प्ले कर सकती हूँ, दिस विल गिव मी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी विल एनहांस माई इफेक्टिवनेस। नाउ वेदर इट्स अ पेरेंट्स रोल, वेदर इट इज द रोल ऑफ अ बॉस, द रोल ऑफ अ वाइफ, एनी रोल, माई इफेक्टिवनेस इन प्लेइंग दैट रोल विल इंक्रीज, एंड जहां मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी माई सेटिस्फेक्शन लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज।
0: डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग ये रहेगा कि आपको जो कुछ भी मैं एक्ट कर रहा हूं उससे पहले का प्रोसेस मैं समझ चुका हूं और ये मैं अपने कारण कर रहा हूँ।
1: दैट्स वाई वी कॉल द प्रोग्राम अवेकनिंग, कि पहले हम अंदर तो एकदम स्लीपिंग मोड में थे और बाहर काम कर रहे थे, तो मतलब ड्राइवर सोया हुआ था, गाड़ी चल रही थी अपने आप, बट देन इट वॉज जस्ट गोइंग वेर एवर इट वॉन्टेड। नाउ द ड्राइवर हैज द पावर टू टेक द कार वेयर ही वॉन्ट्स टू टेक द कार एंड ड्राइव एग्जैक्टली द वे ही वॉन्ट्स टू ड्राइव, एंड देन वेन द ड्राइवर वेक्स अप ही कैन ड्राइव अवॉइडिंग एक्सीडेंट। हमने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा था कि हाउ इज इट वर्किंग. हमें लगा स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, विच इज येस, बट परमात्मा को याद करके फिर उससे क्या करना, उस शक्ति को लेकर जीवन के हर रोल में प्ले करते हुए उसको कैसे यूज करना. सो आई थॉट स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन मतलब सिर्फ परमात्मा को याद करना, तो वो तब करेंगे जब सारे कामों से बाकी फ्री हो जाएंगे.
0: 70 साल में आप जाओ और तब करो.
1: इसीलिए द फर्स्ट कॉमन आंसर दैट कम्स इज आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी अ सेपरेट थिंग. तो जहां की मेरे आज अभी की जो जिम्मेवारियां वो ही नहीं पूरी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, तो एक अलग पहलू के लिए टाइम निकालना इट इज चैलेंजिंग. वी नीड टू हैव फन, बट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग फन इनसाइड, वी वर लुकिंग फॉर फन आउटसाइड.
0: हमने इतना खेला बाहर, इतना खेला और समझ में आया नहीं कि हम मतलब उसको हम एंजॉय नहीं कर पाए थे.
1: लेकिन हम फिर अगेन वी वर लुकिंग फॉर फन इन सिचुएशंस. सी अगेन मटीरियलिस्टिक मीन्स आप सब कुछ बाहर सिचुएशंस में ढूंढते हो कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे आई हैव फन, मैं क्या ऐसा खाऊं, मैं क्या ऐसा पहनूं, मैं क्या ऐसा यू नो लोगों से मिलूं, मैं क्या करूं जिससे आई विल हैव फन. बिकॉज I want to have fun, I want to have joy, I want to enjoy life, but then we were looking for it in physical things because we thought I am the body. Jis din samajh mein aaya ke who wants to have fun, I want to have fun. I not body doesn't want to have fun kyunki iski to koi feeling hi nahi hai, isko nahi aati. I want to have fun. Now where do I have fun?
0: In fact, yes, I just go back to that jab hame ye samajh mein aaya tha ki responsibility sabse pehle kiski hai, meri, you know, like the being, aur uski fir core values kya hai aur sab purpose of life jo hai, it actually now stays, you know.
1: So spirituality answered this fundamental question ki main kaun hu, aur main kaun hu jab sharir se hatkar आत्मा पर आंसर आया तो सब कुछ चेंज होने लग गया ना. जस्ट द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग चेंज्ड एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग गुड.

0: एक्चुअली लाइक यू से लोग सोच रहे हैं कि आप सफर कर रहे हैं. सफरिंग मतलब अंदर की फीलिंग है और वो हमें ही पता होता है. कई बार लोग हमसे मिलेंगे तो वो कहेंगे बेचारे आप, आपके सामने कितने दुख आए. हमारे सामने परिस्थिति आई, आप उसको दुख की तरह परसीव कर रहे हैं. हो सकता है आई एम नॉट गोइंग थ्रू एनी पेन इनसाइड. एंड कई लोगों के लिए हमें लगेगा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से प्रोबेबली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन. तो ये हरेक सिर्फ और सिर्फ अपने को जानता है. इसमें वी डोंट नीड एनीवन एल्सेस यू नो ओपिनियन बिकॉज ओनली आई नो. सो इफ आई नो दैट आई एम नॉट सफरिंग देन इवन इफ अदर पीपल से इट डजंट
1: नो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टर शिवानी ये भी एक बिलीफ सिस्टम आता है कि अगर मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूं या कोई और इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो इसमें तो दुख होगा ही.
0: इट्स अ कंडीशन्ड बिलीफ ना, क्रिएटिविटी नहीं है. अगेन दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो कंडीशन्ड बिलीफ सिस्टम्स बन गए थे कि ऐसा होगा ही. लेट्स से फॉर एग्जांपल मी, आई नो मी एज अ पर्सनालिटी कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूं अच्छी तरह से एंड वो मुझसे वापस ठीक से बात नहीं कर रहे या वो बात ही नहीं कर रहे हैं, यू नो दे हैव व्हाटएवर इशू और व्हाटएवर एनर्जी फ्लोइंग इन बिटवीन, तो वो बात ही नहीं कर रहे. मैं फिर एक तरफ एक बार बात किया ठीक से, फिर भी नहीं बात कर रहे. दो बार किया, अभी भी नहीं बात कर रहे. ना इफ आई लुक एट माई सेल्फ एज द ओल्ड पर्सनैलिटी, मैं एक बार आपसे करूंगी, दो बार करूंगी, तीसरी बार आई विल से ओके यू डोंट वांट टू टॉक टू मी एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इट्स फिनिश्ड, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. वैसे भी मुझे आपसे क्या चाहिए, यू नो इट्स लाइक दैट. आई डोंट केयर फॉर आपको बात नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी. ना आई विल वर्क कि ठीक है वो बात नहीं कर रहे. Do I have a choice? Do I want to play my role differently? This is the question. Or do I want to play my role the same way that I have played for so many years? And then this time I tried, okay, I will continue speaking to you. And with a very pure thought, not upar se. This is fundamental. See, every time hum is program pe jo bhi discuss kar rahe hain, har ek jo usko practice kar raha hai, usko ye dhyan rakhna padega, it has to be internally.
1: Thought
0: kuch bhi bahar se nahi kijiye. Kyunki majority time jo hum keh rahe hain, hum kar rahe hain, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा. हम कर रहे हैं लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसको अंदर से नहीं कर रहे. अगर आप थॉट और फीलिंग से करेंगे तो यू विल एंजॉय एब्सोल्युटली. तो अब क्या होता है, एक बार दो बार आई कैन गो ऑन टॉकिंग 10 times, 20 times, 100 times टू यू बिकॉज आई फील लाइक टॉकिंग. एंड एवरी टाइम आप मेरे से नहीं बात कर रहे हैं लेकिन मैं फिर भी यू नो बहुत अच्छा फील करके आपसे फिर भी बात कर रही हूँ. इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ विक्ट्री ओवर माई सेल्फ. नथिंग टू डू विद यू. आप जैसे हैं, पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे हैं, नो प्रॉब्लम. एंड उस एंगल से नहीं बात कर रहे कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू चेंज. पहले जब ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो बहुत भाई बहने ये लिखते हैं, मैंने दो बार बात की, मैंने चार बार बात की, आंट दे सपोज टू नाउ चेंज. नो, नाउ वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन. क्रिएटिविटी मीन्स सिर्फ एक के रोल पर फोकस करना है. अच्छा, 50 बार बात की, वो अभी भी नहीं बात कर रहे. हाउ डू आई वॉन्ट टू प्ले माई रोल? नो, आई स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू नाइसली, स्टिल कंटिन्यू. एंड जिस तरह से हम फिर इस क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, हम खुद हैरान होते हैं
1: और उसमें फिर हमारा हर्ट नहीं आ रहा ना.
0: हर्ट होता है,
1: मेरा डिसीजन, मेरी चॉइस,
0: अच्छा लगता है करके, यू नो आई एंजॉय डूइंग इट. एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. हम अपने आप को देखते हैं कि अच्छा, पहले इसी परिस्थिति में हम इस तरह से बिहेव करते, टुडे आई एम डिफरेंट, विच वन मेक्स मी फील बेटर. तो इसलिए आप इसको कल जाकर किसी भी रिश्ते में करके देखिए कि किसी भी रिश्ते में एक पर्टिकुलर कंडीशन रिस्पॉन्स बहुत टाइम से चल रहा होगा. कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है कि हर रोज इरिटेशन है ही है, हर रोज आर्ग्यूमेंट है ही है.
1: पूरे दिन की स्क्रिप्ट जो है हमने एक ही तरह से लिखी हुई है, तो हर रोज यही होगा, यही हो, और उसी कारण हम फिर दूर भागते हैं. अगर हम आज देखें कि रिश्तों की जो दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, बिकॉज वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इवनिंग में क्या होगा, सुबह क्या रोल प्ले किया जाएगा, सुबह क्या सीन क्रिएट होगा, वी ऑल सीन इट, वी विजुअलाइज इट एंड वी स्टिल गेट इन टू इट एंड वी डोंट ट्राई टू चेंज.
0: एंड नाउ लेट्स क्रिएट इट अ डिफरेंट वे, ताकि वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे. अभी क्या होगा, हो सकता है आपके साथ अगर मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, यू नो स्पेशली हस्बैंड वाइफ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे आपकी एक एक सोच समझ में आ गई है, व्यवहार समझ में आ गया, तो मुझे पता है कि हर परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. लेकिन आजकल कई बार वी डोंट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे बिकॉज समटाइम्स आर रिस्पॉन्सेज हैव बिकम वेरी अनप्रडिक्टेबल आजकल. लेकिन वो जो

0: यू नो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जा रही है, क्योंकि अंदर इतना दर्द भरा हुआ है कि वो लोग जो आज तक काफी ठीक थे, स्टेबल थे, अब वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने लग गए हैं,
1: स्ट्रांग होने लग गए.
0: यू नो बच्चे हमारे जो ठीक थे सडनली टीनेज एज में आ रहे हैं, वो क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अनप्रडिक्टेबिलिटी आ रही है. सो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मुझे आपके रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड पता थे, तो कहीं मेरे भी रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड थे आपके. लेकिन नाउ आई हैव टू बी रेडी कि हरेक के साथ जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ कोई भी तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है. तो समवेयर आई कैन नॉट फिक्स माई रिस्पॉन्सेज, आई विल हैव टू बी रेडी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं. हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन द बेस्ट वे. कई लोगों के साथ ऑफिस में स्पेशली पता ही नहीं चलता सडनली आज ये लोग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, कल तक तो ठीक थे आज क्या हो गया. फिर क्या होता है, जैसे हमें दूसरे के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस दिखाई देता हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये आज इस तरह से क्यों नहीं बात कर रहे. सपोज आपके अंदर कोई टेंशन है, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा सुबह, आप कॉरिडोर में मुझे ऐसे ही क्रॉस करके चले गए, अब मैं आपके बारे में ही सोचना शुरू कर दूंगी, क्या बात है मेरे से नाराज.
1: हाँ, मुझसे मैंने मुझसे रूठ क्यों हो गए हैं, मेरे साथ मेरा इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, किसी और ने तो नहीं कहा.
0: एग्जैक्टली, सी वेयर ऑल द थिंकिंग इज गॉन एंड पूरी कॉन्शियसनेस किस पर है कि आपने अपना रोल किस तरह से प्ले किया और अब मैं क्या करूं जिससे आप अपना रोल चेंज करें. That's it. Why not कि ठीक है आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया या आपने ठीक से बात नहीं की, why can I just not continue? Is it necessary कि जैसे ही आपका रोल चेंज हुआ मुझे भी चेंज करना है कि उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो फिर अब मैं क्यों गुड मॉर्निंग करूं. नो, आई हैव टू बी क्रिएटिव विद माई रोल एंड कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी पर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी जरूर जागृत करेगी. दैट इज डेफिनेट. सो लेट्स बी कॉन्शियस, अवेयर. अवेयरनेस जहां आई कि हर पल अवेयरनेस ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई रोल. अब इसके ऊपर ये शायद सुनने में थोड़ा सा लगे कैसे कैसे करेंगे, इज इट वेरी डिफिकल्ट. इसको तुरंत आज या कल में जाकर करना है कि जहां कोई रिश्तों में फिक्स्ड आ रहा था या कहां हमें बहुत दिनों से एक दूसरे से किसी से अगर हमने बात नहीं की थी या ठीक से बात नहीं की थी, जस्ट गो एंड बी क्रिएटिव एंड यू नो जस्ट डू इट अ डिफरेंट वे टुडे.
1: एंड इनफैक्ट यू नो वो चेंज होता है या नहीं होता उन तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती है नहीं पहुंचती, आपकी अपनी वाइब्रेशंस जो है वो आपको बहुत खुशी दे देंगे.
0: बिकॉज हमने खुद को ही खुशी देनी है. दैट्स व्हाट वी सेड, हर चीज जो हम करेंगे इट मेक्स मी फील गुड. अभी मैं सोच रही थी पहले कि आप मुझे अगर ठीक से विश करोगे सुबह में आके देन आई विल फील गुड, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड आप करो या नहीं करो अगर मैं आपको अच्छी तरह से विश करती हूँ आई फील गुड. दैट्स ऑल. अब मैं हर स्टेप पे हरेक को मिलती जाऊं, हर सीन में क्रॉस करती जाऊं और हर स्टेप पे ध्यान रखती जाऊं, फील गुड फैक्टर मेरा.
1: यू नो आई फील सो लाइट एक्चुअली.
0: यस, पहले आपको देख देख कर आपके बारे में सोच सोच कर मैंने यहां बहुत भारी कर लिया था, इसने क्यों नहीं आज ठीक से बात की, इसने इस तरह से क्यों व्यवहार किया, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, यू नो हर चीज में भारी. अब मुझे सिर्फ एक के बारे में सोचना है और एक पर ध्यान देते जाना है कि उन्होंने जैसा भी किया मुझे कैसा करना है. अ न्यू रिस्पॉन्स एवरी टाइम, दिस विल मेक मी फील वेरी लाइट एंड ये मुझे बहुत हल्का रखेगा और क्रिएटिविटी मुझे एक मोटिवेशन देगी सारा दिन एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट. और उससे क्या होगा, मेरे कोई भी रिश्तों में वो दूरी नहीं आएगी क्योंकि जहां अगर मुझे लगा भी कि कहीं दूरी आ गई है तो वो किसके हाथ में है,
1: मेरे अपने हाथ.
0: क्विकली गो चेंज, प्ले द रोल अ डिफरेंट वे. दूरी आई क्योंकि हम इतने पर्टिकुलर टाइम से उस रोल को इस तरह से प्ले कर रहे थे. अगर लग रहा है दूरी आ रही है एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट, यू नो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो जस्ट गो एंड प्ले द रोल अ डिफरेंट वे.
1: बट हम तो बेसिकली क्या होता है कि कई लेवल्स पे पहुंच के हम चेंज ही नहीं करना चाहते, हम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते क्योंकि हम कहते हैं कौन करे क्या है उनसे, हमें मुझे मिल के जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे मुझे मिल क्या रहा था,
0: उनसे नहीं मिल रहा है ना.
1: हाँ, बट बेसिकली ये मुझे एम्पावर कर रहा है.
0: एब्सोल्युटली. तो इसको आई थिंक अगर हम आज के आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टूगेदर.
1: एंड इफ इज गोइंग टू बी विद मी, जिनके साथ भी मेरा रिश्ता है, अगर वो मेरे साथ ऑफिस में होने वाले हैं तो उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा ही.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो मैं उनके साथ दूरी क्यों बढ़ाऊं.
0: क्यों ना हम जितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं उतनी करते जाएं.

0: just a role. And jab mujhe yaad rahega, this is just a role. This is just a scene. Her scene jo gaya, it's just a scene. No one scene is more important than the other scene. Every scene is equally important. It's just a scene. And I'm playing a role. I am an actor. Jab mujhe ye yaad rehta hai, ye perception rehti hai ki I am an actor, I am playing a role. Mujhe ye bhi yaad rehta hai, I can create it the way I want. Mujhe ye bhi yaad rehta hai ki mere paas choice hai. Mere paas bahut sari options hai. Mujhe ek particular tarah se nahi play karna. Mujhe ye bhi yaad rehta hai ki I will not swim with the current. Main flow nahi ho jaungi. I will be able to detach myself jahan chahiye kyunki it's just a scene. Aur phir mujhe ye yaad rahega ki finally ye scene bhi khatam ho jayega. Chahe wo kitni bhi badi paristhiti aaj, it's just a scene which will fade away. And I also have to remember, this role will also one day fade away. The only one who remains
1: me
0: is the actor. To wo right drishtikon se mujhe is jeevan ki yatra mein chalna padega ki ye role bhi aaj hai, kal ho sakta hai, nahi hai. The only thing eternal is I the actor. To jab sare roles play kar rahe hain, actor ka dhyan de. Actor ko bhool ke role ke consciousness mein agar itne fit ho jate hain, to ye perception agar rehta hai, it's just a game, it's just a drama, it's just a role.
1: And I have another choice. You know, like, agar theek hai, is scene mein main bahut acha nahi bhi kar paya filhal, I have another option.
0: Absolutely.
1: Agla scene jo hai, usme I can do my best.
0: I can do. So it gives me that flexibility. Aur usse kya hoga, jab yahan is tarah se hum jeevan ko dekhenge, to hum bahut playful ho jayenge. You know, jaise hum play karte the, to usme kitna maza aata tha. Jeevan mein kyun nahi wo maza aa
1: raha? Bilkul, hum theater ki practice kar rahe hote hain, kitne kitne ghanton hum baith paate hain. क्योंकि जब भी हम किसी भी क्रिएटिव चीज में होते हैं,
0: वेरी
1: टाइम रुक जाता है.
0: एब्सोल्युटली, इट्स वेरी एंजॉयबल. तो वो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव को जीवन की यात्रा में ले आओ. दिस इज ऑल अ ड्रामा, एवरीवन इज एन एक्टर, वी आर ओनली प्लेइंग रोल्स. रोल्स में इतने ना फंस जाएं क्योंकि एक सेकेंड एंड ये रोल खत्म हो जाएगा. एक मिनट लगेगा एंड द रोल कैन फिनिश. उस रोल में इतने नहीं अटैच्ड हो जाओ कि एक्टर ही भूल जाए, तो वो एंजॉय नहीं करेगा. तो रोल प्ले करेंगे क्रिएटिवली, बहुत प्लेफुल हो जाएंगे. प्लेफुल होंगे ना, तो वो जो आनंद का अनुभव हम करना चाहते हैं हर स्टेप पे, it will become very easy. And creativity ki jo basic energy hoti hai wo hai love, pyar. So when I'm creative continuously, love as my quality will just flow naturally. You know, aap kisi bhi artist ko dekho, love ki energy hai to unka jo wo art hai wo kitne उस तरह के रूप से निकल कर आता है. तो मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप. सो व्हेन आई एम यूजिंग माय क्रिएटिविटी, आई विल नॉट हैव टू फोर्सफुली बी यू नो क्रिएट लव. प्यार
1: फ्लो,
0: मेरा फ्लो करेगा,
1: सारी हैप्पीनेस फ्लो करने लगती है जब भी हम किसी भी क्रिएटिव एस्पेक्ट में होते हैं. जब राइटर लिख रहा होता है, जब पोएट पोएम लिख रहा होता है, वो बिल्कुल कहते हैं कि वो ब्रह्मानंद में है, वो कहते हैं खुद. और जब वो पेंटर कुछ भी क्रिएट कर रहा होता है, तो हमारे पास तो क्रिएट करने को हर पल है.
0: इट्स लाइक अ कैनवस. हाँ, उस पे कुछ भी क्रिएट
1: जीवन में है. तो अब में से, हम में से हर कोई जो कह रहा था कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ पेंटर, बट I am a human being, you know, who can actually create each moment.
0: And then it will become a lot of fun. Lekin isko karke dekhna hai. Let's not just keep it here. We will have to experiment and then see if the result works for us.
1: Wonderful. Thank you so much, Sachinani. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: कोई सवाल, कोई बात, कोई सजेशन अगर आपके पास है, आपके बहुत से सजेशन हम तक आते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो आपका हम एक खुला निमंत्रण देते हैं. ये मंच आपका है, इस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999334555 0 9873 666 0 9879974555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. रोज को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट जो हम आपसे कह रहे हैं, उसका अनुभव जरूर ले. आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशिया बाटो।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता,

0: ऊंचे ऊंचे टीले होते तुलसी के,
1: और घास फालूदा होती दीदी तो क्या मजा आता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

सोचो, अरे सोच के देखो, खेत में उगते टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो कॉफी।

0: दीदी ऐसा क्यों नहीं होता है? जो होता है वो क्यों होता है?
1: कारण फिर वही कायदा
2: कायदा कायदा आखिर कायदा।
3: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित।
4: नमस्कार एंड अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्माकुमारी। खुद को पहचानने की इस जद्दोजहद में कई मुकाम हमने तय किए हैं। एक बात जो सामने आई है वो ये कि जिस तरह की जिंदगी आज के इस भागते दौड़ते युग में हम जी रहे हैं उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां हमने खुद ही जनरेट कर ली हैं। सॉल्यूशंस भी हमें खुद ही तलाशने पड़ेंगे। ऐसे में एक बीमारी जिससे हम में से हर एक को दो चार होना पड़ता है कभी न कभी, वो है डिप्रेशन। क्या है एग्जैक्टली डिप्रेशन, ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं और ये भी जान गए हैं कि डिप्रेशन को दूर करना हमारे अपने ही बस में भी है, लेकिन कई बार हमें प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है। किस तरह के डिप्रेशन आ सकते हैं हमारी जिंदगी में और कौन सा वो वक्त होता है, कौन सा वो मुकाम होता है जब हमें एक साइकैट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम।
5: और
4: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्माकुमारी सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
6: ओम शांति।
4: ओम शांति सिस्टर शिवानी, आज पहले आपसे शुरू करते हैं कि डिप्रेशन के हर एस्पेक्ट को हमने जाना है अच्छी तरह से कि डिप्रेशन क्या है, जिंदगी के किस फेज में हमें समझ में आ जाता है कि डिप्रेशन है। यहां पे जब थोड़ी थोड़ी देर खुशी, थोड़ी थोड़ी देर गम होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। जो जर्नी हम इंटरनल जर्नी की बात करते आ रहे हैं पूरी इस श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्माकुमारीज में, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये आता है कि खुद के बारे में अवेयर होके हम ये जान लें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हमें परेशान करते हैं और हमें उनसे दूर होना है। जो डिप्रेशन है, जो कभी कभी गम तक हम पहुंचते हैं, कुछ देर का गम हमें आता है, उसमें क्या ऐसी बातें खुद से करनी है हमें, जो खुद स्व काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने आप से बात करने की बात से?

0: तो ये जो सारी पावर्स हैं ये हम फील करते हैं कि हमारे अंदर नहीं है और वो खालीपन आना शुरू कर देते हैं। राजयोग जब हम करना शुरू करते हैं तो ये पावर्स एक नेचुरल रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी पावर्स हमारे अंदर हैं। यू नो दे डोंट हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड। सहन शक्ति है, सिर्फ कभी कभी वो हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे उसको यूज करते जाएंगे वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति मेरी मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता।
1: लेकिन वही आपने कहा कि सेल्फ काउंसलिंग जो
0: हाँ, तो जैसे ही अगर सपोज आपसे मेरी कोई बात हुई और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अब मेरी वो गम वाले फेज में मैं चली गई क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरी जो हमने कहा कि जो मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है उसको हर्ट हुआ। देखो हर्ट हम कब होते हैं, मैंने अपने बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है, आपने कुछ ऐसे कह दिया जो वो इमेज मेरी बनाई हुई इमेज के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए आपके बोल मुझे तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अब सेल्फ काउंसलिंग यही होगी कि सबसे पहले तो मेरी मन की स्थिति का मास्टर मैं खुद हूं। अगर मैंने अपनी कोई इमेज बनाई है तो अच्छी इमेज अगर बनाई है तो सबसे बड़ी पावर तो यह है कि नोबडी कैन कंट्रोल मी। दूसरा, अपने आप से ये बात करना शुरू करें कि असलियत क्या है, जो मैंने सोचा या जो आप कह रहे हैं, यू नो। एंड सेकेंड, ट्राई एंड टॉक टू माई सेल्फ के ओके दिस इज वॉट यू फील, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर नॉट, ईदर वेज लेट मी चेक माई सेल्फ। अगर आप सही हैं तो मैं अपने आप को उस अनुसार चेंज कर लूं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने जो कहा है
1: उसका कोई मायने नहीं
0: है। मायने नहीं।
1: और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही भी हैं तो आप अपने आप, मैं अपने आप को मार नहीं दूंगा। हाँ, कि मैं चेंज कर सकता हूं।
0: बिल्कुल, तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम हमारे को प्रॉब्लम उस बात से नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा,
1: मेरी इमेज जो मैंने बनाई हुई थी
0: उससे वो, तो वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा, और वो चीज हम बार बार अपने आप को फिर कहते रहते हैं, तो ये फिर हम उस टाइम परेशानी के पीरियड में गुजर रहे हैं, तो उस टाइम कोई और मदद नहीं कर सकेगा। आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ, उनकी जो राय थी वो उन्होंने कही, अब मुझे उसको अपने इमेज के साथ
1: यहां ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब हम इस एस्पेक्ट पे हैं कि जब मैं उस डिप्रेशन के फेस में जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए भी, क्या ये सेल्फ काउंसलिंग डज इट रियली हेल्प?
0: इट रियली हेल्प।
1: क्या हम बात कर सकते हैं उस फेज में, होते हैं कि हम बात कर पाए?
0: हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ही पता है कि मुझे कौन सी बात दर्द कर रही है।
2: शिवानी बेन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, विच इज अदरवाइज सेड, सभी को याद रखनी चाहिए बात, कहते नो बडी कैन मेक यू डिप्रेस्ड विदाउट योर परमिशन।
1: We gave him or her the permission.
2: So don't give permission to anybody.
1: बिल्कुल।
0: So if I have the power, why do I give that power away to somebody else?
2: तो उन्होंने बात की ना सारे पावर्स की, उसमें सबसे बड़ा है पावर ऑफ साइलेंस। यू शुड लर्न टू गो इन साइलेंस। साइलेंस में गए तो ऑटोमेटिक परखने की शक्ति आएगी,
1: खुद से बात करने का वक्त,
2: सहन करने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी।
1: तो अब डॉक्टर साहब, हम उस बात पर आते हैं कि ये तो बात है कि जब मैं उस फेज में आ गया कि मैं उतनी देर के लिए तकलीफ में हूं, दुख में हूं, खुद से काउंसलिंग, खुद से बातचीत करके कहीं ना कहीं उस एहसास को मैं हटा सकता हूं। अब बात करते हैं जो इससे परे जा चुके हैं, यू नो, हम थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं कि डिप्रेशन जो है वो सीप इन कर गया है। आपने पिछली बार हमने बताया था कई तरह के होते हैं डिप्रेशन। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि क्या, कौन कौन सी वो तरीके, कौन कौन से वो डिप्रेशन कहे जाते हैं जिनके कारण शायद अलग अलग होते होंगे और उनके सिम्टम्स शायद अलग अलग होते हों, तो किस तरह के डिप्रेशन?
2: कई प्रकार से डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं। एक तो जिसको कहा गया रिएक्टिव डिप्रेशन, मतलब कोई ना कोई परिस्थिति आती है उसके रिएक्शन में आप डिप्रेस्ड होते हैं, कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेस्ड हुए, किसका देहांत हो गया तो आप
1: डेथ इज अ मेजर
2: थिंग। दूसरा एक है जिसको कहा एंडोजिनस डिप्रेशन। एंडोजिनस डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा ही डीप होता है, जो केमिकल्स के कारण है, कि कोई बाह्य परिस्थिति ऐसी नहीं परंतु फिर भी अचानक व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, दैट इज एंडोजिनस डिप्रेशन। और एक है प्रकार जिसको कहा साइकोटिक डिप्रेशन, विच इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। इसमें व्यक्ति पागल जैसी हरकतें भी कर सकते हैं, वो डिप्रेस्ड है लेकिन साथ साथ में साइकोसिस भी है उसे।
1: अच्छा, तो सारे जो डिप्रेशन हैं वो साइकेट्रिक नहीं होते हैं?
2: नहीं, साइकेट्रिक होंगे लेकिन साइकोसिस जिसको कहा, जैसे साइकेट्री में दो प्रकार की बीमारियां, एक तो न्यूरोसिस और दूसरी है साइकोसिस।
1: ओके,
2: न्यूरोसिस ऐसी

0: जो माइल्ड फॉर्म ऑफ बीमारी भी कहेंगे, व्यक्ति खुद रियलाइज करता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकोसिस ऐसी बीमारियां हैं जहां पेशेंट स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है,
1: एहसास ही नहीं होता।
0: हाँ, वो तो कहेगा आप सब पागल है, तुम ट्रीटमेंट कराओ। इवन डॉक्टर के पास भी जाके पूछेंगे ना क्या तकलीफ है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, इनको प्रॉब्लम है ना, उनका इलाज करो आप। तो जो जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन है, साइकोटिक डिप्रेशन,
1: जो कि वायलेंट भी हो सकता है, हमने पिछली बार बात की थी, या फिर सुसाइडिकल भी जा सकते हैं।
0: सुसाइडल तो रिएक्टिव डिप्रेशन में भी पॉसिबल है, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में पागल जैसी हरकतें करेगा।
1: इन तीन को आप हमने डिफाइन किया, आपने बताया हमें कि किस तरह के जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो डिप्रेशन है। एक मैं यहां से बात आपसे, एक्चुअली हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सिस्टर शिवानी, आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि आज जब भी हम किसी मानसिक परेशानी की बात करते हैं, मानसिक बीमारी की बात करते हैं, इनफैक्ट आजकल तो इतनी ज्यादा उसके ऊपर बातचीत की जाती है, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, पहली चीज हर बीमारी का नाम डिप्रेशन दे दिया जाता है। व्हाई? आई एम लाइक, क्या हर जो मानसिक परेशानी है वो डिप्रेशन से उपजी है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमनेस्ट है इसके लिए डिप्रेशन का, बिकॉज डिप्रेशन इज सो कॉमन, और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि फोबिया आज बहुत बढ़ रहा है, जिससे कई न कई चीजों का लोगों को डर लगता है, पानी का डर लगता है, घर से बाहर जाने का डर लगता है, फोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे और एक बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सन, एक चीज व्यक्ति बार बार करता है कि भी नहीं, 100 बार हाथ धुलाई करेगा,
1: वो अपना वो देखेंगे कि ताला लगाया कि नहीं, बार बार देखते हैं वो।
0: कई बार कुछ रिचुअल्स भी होते, डॉक्टर मेरे पास आए थे कि भी चौराहे पे और ऐसे स्पेसिफिक उसकी विधि, तो चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन है, वो आगे बढ़ेंगे नहीं। कहते क्लिनिक में जाने को मुझे 3 घंटे लग जाते, एक बार एक ऑब्सेशन बुद्धि में आ गया फिर मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसी एंग्जाइटी एक बहुत बड़ी और बीमारी है जो डिप्रेशन से बिल्कुल भिन्न है, उसके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और जो है वो है साइकोटिक बीमारियां, कि जिसमें सिजोफ्रेनिया हो गया, ऐसे और एक है मैनिक डिप्रेशन।
1: तो ये इट मीन्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिप्रेशन,
0: दे आर नॉट पार्ट ऑफ
1: डिप्रेशन, कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर होल ट्रीटमेंट या पूरा प्रोसेस, बट दे आर नॉट डिप्रेशन।
0: या तो ऐसा कहेंगे कि भी और बीमारियों के साथ साथ भी डिप्रेशन हो सकता है, परंतु ये सब डिफरेंट एंटिटीज है जिनका हम इलाज, जैसे मैनिक डिप्रेशन कहा, वो अलग प्रकार की बीमारी है, जहां कुछ समय तो व्यक्ति एक्साइटमेंट में जाता है, 1 दिन 5 दिन 1 मास, और फिर कुछ समय वो डिप्रेशन में जाएगा, ये साइकिल उसका चलता रहेगा। उस समय बहुत खर्चा करेगा, बहुत बातें करेगा, गुस्सा भी कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, फिर कभी ना कभी उसे डिप्रेशन भी आता है, थोड़ा समय वो उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, तब ठीक से इलाज हो सकता है।
1: तो यहाँ तो अभी हम 3 तरह के जो डिप्रेशन की आपने बात की, रिएक्टिव डिप्रेशन और आपने
0: एंडोजेनस
1: डिप्रेशन,
0: साइकोटिक डिप्रेशन।
1: एंडोजेनस डिप्रेशन में क्या था? रिएक्टिव तो ये था कि किसी रिएक्शन कर रहे हैं।
0: एंडोजेनस डिप्रेशन में केमिकल का इंबैलेंस है, जीन्स के कारण हो सकता है, और भी कोई कारण पॉसिबल है कि बाहरी कोई परिस्थिति नहीं। व्यक्ति भी कहता है कि मुझे कोई ऐसे विचार भी नहीं आए, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैं डिप्रेस्ड हो गया। वहाँ संभव है कि उसे वह एंडोजिनस डिप्रेशन हो।
1: एंड देन थर्ड इज
0: साइकोटिक डिप्रेशन,
1: साइकोटिक डिप्रेशन
0: जिसमें पागलपन भी है डिप्रेशन,
1: और मेजर कहीं ना कहीं साइकेट्रिक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। कैन वी हेल्प दीज काइंड ऑफ, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट रियल 3 डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन जिनमें कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस भी हैं, क्या हम सेल्फ काउंसलिंग है पूरा प्रोसेस?
2: दोनों एस्पेक्ट साथ साथ चलेंगे ना, मेडिकेशन, साइकोथेरेपी जो कर रहे हैं, एंड मेडिटेशन
1: खुद अपने आप।
0: तो ऐसा कहेंगे फर्स्ट टू है, वहां सेल्फ काउंसिलिंग कैन हेल्प, रिएक्टिव डिप्रेशन में भी हो, एंडोजिनस डिप्रेशन में भी होगा, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में नहीं होगा। इवन मैं तो कहता हूँ साइकोटिक डिप्रेशन में मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए, भले उनको हेल्प होती है, ऐसी भी रिसर्च स्टडीज हुई है कि साइकोटिक डिप्रेशन में भी मेडिटेशन मदद करता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं सिखाइए। क्यों? क्योंकि समझो कि आप कोई ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पे गए, आपको साइकोटिक डिप्रेशन है, तो बहनों को तो पता नहीं है पूरा क्या है, तो इसलिए वो तो मेडिटेशन ही सिखाएंगे, कभी ये बढ़ भी सकता है। इसमें ये भी होता है कि वो जो डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस है, वह जो व्यक्ति सिखा रहा है उसके प्रति हो जाए, कि नहीं यही मुझे परेशान कर रहा है, ब्रह्मा कुमारीज वाले मेरे पीछे लगे हैं। ऐसे भी लोग तो सच मान लेते हैं कि भी सचमुच ऐसा हुआ होगा, बट लेकिन उसका वह डिल्यूजन है। ये भी हो सकता है कि मैं कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो इसके कारण ये जो इस प्रकार का साइकोटिक डिप्रेशन, उसमें मेडिटेशन नहीं।

0: आना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात की थी जो मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, यू नो, जो लक्षण दिखने लगते हैं, तो कुछ फिजिकल लक्षण भी होते हैं जब डिप्रेशन हो रहा होता है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये जानना चाहिए सचमुच। ये तकलीफ भी हो रही है क्योंकि फैमिली फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं उसमें भी 30-40% को डिप्रेशन है। इवन एमडी फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन है। स्टडी भी हुई है, प्रॉपर कहीं टेस्ट आती है साइकोलॉजी में, जैसे रोशाक टेस्ट है, 16PF की, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसके द्वारा हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट होती है ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल टूल्स है। वह जो फिजिशियन के पास जा रहे थे लोग, उन लोगों को ये साइकोलॉजिकल टूल्स दिए गए और पता चला कि बड़ी संख्या में 25-30% पेशेंट्स हु आर विजिटिंग अ एमडी फिजिशियन आर एक्चुअली डिप्रेस्ड।
1: ओहो, तो मतलब ये फिजिकल एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, दे कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन,
0: दे आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। नहीं, वो डिप्रेशन का एक पार्ट है।
1: ओके,
0: उन्हें वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कोई तकलीफ है, लेकिन साथ साथ में डिप्रेशन भी है।
1: तो अगर
0: जो फिजिशियन को समझ में नहीं आता है,
1: डिप्रेशन दूर कर पाएंगे तो क्या वो सिम्टम्स
0: भी ठीक हो जाए? हाँ, अगर डिप्रेशन आपने दूर कर दिया तो वह जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी रिलीफ कर देंगे।
1: हाँ, तो फिर सबसे पहली चीज यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन की डिप्रेशन है।
2: नहीं, बीच में कोई अगर के आया था कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों को
1: पेट में दर्द
2: होने लगा है और उसमें अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारे डायग्नोस भी कराए, लेकिन कुछ फिजिकल एलिमेंट ही नहीं निकलते, लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं ठीक हो रहा, तो देन इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। लेकिन हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पर इतना ध्यान देते हैं ना, एक्सटर्नल, तो इंटरनल एस्पेक्ट पर न ध्यान देने के कारण उसको जड़ से उस प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पाते।
0: ना, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज आर इंटरलिंक। जैसे ना हाइपोथायरॉयडिज्म एक जिसमें थायराइड का लेवल कम है, इट कैन बी लिंक विद डिप्रेशन, इधर वे इज पॉसिबल।
1: डिप्रेशन कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म,
0: हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो कैन कॉज डिप्रेसिव सिम्टम्स,
1: बिकॉज इट विल बी सेकंड वन जो केमिकल चेंज हो रहा है।
0: हाँ, केमिकल, ये इवन हाइपोथायरॉयड के सिम्टम्स भी ऐसे ही है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ कम करने का नहीं होगा मन, इवन रिफ्लेक्सिस आर वेरी स्लो, तो वो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हो सकती।
1: और आपने कहा कि जो पहले दो तरह के, जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन और जो दूसरी डिप्रेशन की आपने बात की जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम सेल्फ काउंसलिंग से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एम जब हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, जब भी इस कार्यक्रम में भी बात कर रहे हैं, कि मकसद हमारा यही है कि हम सोल्यूशंस जरूर तलाशें। और सोल्यूशंस अगर हम खुद की पहचान के दौरान ही तलाश लें, जो सफर पे हम हैं, तो क्या है वो सोल्यूशंस
0: जो सेल्फ काउंसिलिंग के सोल्यूशन है? एक तो कि भी सेल्फ काउंसिलिंग से, या तो कहेंगे कि मेडिटेशन से, आप अपने आप को सही रूप से पहचान पाते, अपने सिम्टम्स को जो है, तो अधिकतर व्यक्ति अपने सिम्टम्स को ही पहचान नहीं पाता है। और अगर आप अपने सिम्टम्स को ठीक से पहचानने लगे तो थोड़ा भी डिप्रेशन शुरू होगा पता चल जाएगा, और फिर उसके लिए कोई कदम उठाना भी संभव है। आमतौर पर जब काफी डिप्रेशन बढ़ जाए तभी व्यक्ति को पता चलता है।
1: कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रह पाना, सिस्टर शिवानी, कि कुछ देर के लिए तो मैं खुद से बातचीत करके अपने आप को उस स्टेट से बाहर ला सकती हूं, लेकिन कई बार फिर ये लगने लग जाता है कि क्या मैं झूठ तो, मतलब मैं क्या जिंदगी जी रही हूं? ये बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल अब मन में आता है जब वेन यू बीन टॉकिंग अबाउट कि अपने आप से बात की जाए, सेल्फ काउंसलिंग की बात की जाए। कई बार क्योंकि सब चीजें बेमानी लग रही होती हैं तो खुद से बात करना भी बेमानी लगता है कि क्या कर रही हूं मैं, क्या चीज है। लेकिन कितनी देर तक वो उस स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि हर लम्हा हर क्षण उस स्टेट में रह पाना, जैसे हमने पहले बात की थी, दैट इज द यू नो द बेस्ट, लेकिन वो नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा, अभी अभी कंडीशनिंग हो सकती है लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं अभी आज के इस वक्त में नहीं है। तो कैसे हम अपने आप को हर पल समझा सकते हैं?
2: हर पल समझाना नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ये सिर्फ एक शुरू में थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है। जैसे आज नेगेटिव सोचना या परेशान रहना ये बहुत नेचुरल हो गया है, उसी तरह खुश रहना बहुत नेचुरल होगा। इट्स नॉट दैट लाइफ लॉन्ग आप ये करते रहेंगे कि बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा। कुछ एक दिन के लिए या कुछ एक मास के लिए कहें, ये एक जर्नी पे आप चलते हैं, जहां परिस्थिति आती है आप परेशान होते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को उससे निकालते हैं, 2, 4, 8, 10 बार आप जब इस तरह से करते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी।

0: आप अपसेट होंगे, तुरंत आप कहेंगे नो इट्स इन माई कंट्रोल, चलो 5 मिनट्स एंड बैक. सो द टाइम ड्यूरेशन की हम कितनी देर वो डाउन,
1: 4 घंटे के बजाय हम
0: इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. पहले वो 4 घंटे था, अब वो थोड़ा और कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज. कुछ बात आई, आप अपसेट हुए, क्विक आप वापस आ जाएंगे एंड धीरे धीरे स्टेज आएगी कि आप अपसेट नहीं होंगे.
2: राज्यों में जो मेरा अपना अनुभव है कि इसमें स्पेशल बहुत बैठने की आवश्यकता नहीं है. कई बार और जो टेक्निक्स होती है जिसमें आपको स्पेशली बैठना पड़ता है, 20 मिनट ध्यान किया फिर शांत लगने लगा. राज्यों की विधि ऐसी है कि आप चलते फिरते भी कर सकते. वैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूं परंतु भी मैंने ऐसे इंटरव्यू तो ढेर सारे दिए, नॉलेज इज देयर, मुझे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. तो जब आपसे बात कर रहा हूं तभी मैं ये अवेयरनेस ला सकता हूं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम पीसफुल और मैं आपको अपने विचार बता रहा हूं. तो देन इवन व्हाइल टॉकिंग आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेज. मैं तो यहां तक कहता हूं ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं आप मेडिटेटिव स्टेज में हो सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं वो स्टेज आपकी बन सकती है. तो शिवानी बेन ने बिल्कुल राइट कहा कि वो जो रूट जब स्टार्ट हो रहा है देयर इटसेल्फ यू कैन कट इट ऑफ.
1: तो ये हमने पहले भी बात की थी कि ये जो पूरा अवेयरनेस है ये हम आज इतनी देर बाद आकर हम जानने की कोशिश करते हैं. द जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम एट अ वेरी यंग स्टेज यू नो, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्वेश्चनिंग यू नो नॉट रियलाइजिंग. अगर वो 5वीं का बच्चा या 6वीं का बच्चा भी काउंसलर के पास जा रहा है, अगर ये अवेयरनेस उसके पास ही आ जाए वहां से, तो ये कितना जरूरी है, कहा कैसे किया जा सकता है.
0: जितना आजकल जैसे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, लेकिन काउंसलर्स भी यही ध्यान रखें कि वो उस इंडिविजुअल को, उस बच्चे को इनर पर लेकर जाएं, यू नो, वो भी कहीं सोल्यूशन आउटर ही ना देना शुरू कर दे कि ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं आप इस तरह से बिहेव करो. नॉर्मली हम जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं वो बिहेवियरल लेवल पर बहुत ज्यादा होता है. आप इस तरह नहीं, आप अपने व्यवहार को परिवर्तन करो, सोच को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहेवियरल चेंज बहुत टेम्पररी होता है. फिर कोई और थोड़ी बड़ी परिस्थिति आ गई, अगेन द बिहेवियर विल चेंज. तो बिहेवियर विल कीप चेंजिंग, वो फ्लक्चुएशन से गुजरता ही जाएगा. लेकिन अगर एक परमानेंट बिहेवियर में चेंज लाना है तो द सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी द थॉट लेवल चेंज, जिससे एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा. फिर कोई भी बात आपको उस तरह के बिहेवियर पर लेकर नहीं जाएगी. सो द काउंसलर हैज टू टेक केयर कि यू आर चेंजिंग द एंटायर वे ऑफ थिंकिंग of the child, not just the behavior.
1: And that is what meditation is all about, actually.
2: That's
1: all.
2: I think still, like the BA to Academy 5, main to samajhta hu parents are best counselor. Aur bachcha 2 saal ka hai na tab hi start ho. It's not actual counseling. Kaha gaya hai bachchon ko dekha hai ki bhi bachche hai na teaching se nahi seekhte. They don't do what you say. They do what you do. एक बार मैं भी अपनी एनालिसिस कर रहा था कि ऐसे स्पिरिचुअल कैसे बने, नो व्हाट हैपेंड इन लाइफ, लाइक माय पेरेंट्स वर नॉट सो स्पिरिचुअल, फिर भी ये कैसे बात आई. तो जब सोचते तो मुझे पता चला कि भी जब हम छोटे थे तो मेरे नाना, हम गांव जाते थे, गुजरात में एक छोटा सा गांव है, वैकेशन में 2-2.5 मास जाते थे और मेरे जो नाना थे वो 2-3 घंटे तक कुछ पूजा पाठ अपना करते थे. हम लोग भी साथ में बैठ करके एवरीथिंग वी यूज टू डू. And I thought that must be the seed.
1: Somewhere deep within
2: the heart. वो seed था सचमुच की जो आगे चल करके वो सचमुच फुल ब्लोन फेज में आया. तो पेरेंट्स को भी यही करना है.
1: बिल्कुल,
2: पेरेंट्स गलती ये करते हैं. हमारे पास भी कहते हैं कि बच्चों को ले जाओ सेंटर पे, हमको नहीं आना है.
0: And it won't have its effect also.
2: Well.
0: Because then you are creating a wrong thought pattern. तो अगर आप बच्चों को right thought pattern create, you know, सिखा भी रहे हैं, unless आप खुद practice कर रहे हैं, वो जो संस्कार है वो चेंज नहीं होंगे.
1: Unless you realize it, वो बच्चा तो फिर अपनी सही बात बोले लग जाएगा.
0: एक्चुअली बहुत ज्यादा बच्चे का थॉट पैटर्न हम ही बनाते हैं. यू नो, इवन ये कहना वहां मत जाना वहां भूत है, ये फियर क्रिएट करना, ये हमने ही तो क्रिएट किया. बच्चा चल रहा है इतना छोटा सा, उसको टेबल लग गई. अब बच्चे को समझाने की बजाय कि आपकी गलती थी, हम टेबल को मार देते. दिस इज ब्लेम कल्चर. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर टॉट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज द टेबल्स फॉल्ट. वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन ये सारे थॉट पैटर्न्स हम छोटे से उनके अंदर डाल रहे हैं. इंस्टेड यू नो राइट सोर्स, क्योंकि ईजी वे आउट, बजाय को समझाना कि बाहर अंधेरा है या क्या, नहीं बाहर भूत है बाहर मत जाना. तो ईजी वे आउट विल नॉट वर्क.
1: भूत आ जाएगा, यू नो सो जाओ, इस तरह से सुलाने के लिए.
0: तो ये
1: फियर, ये इस तरह से, यस डेफिनेटली,
0: ये सारी छोटी

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाशवाणी सार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर आप सभी को आज के दिन

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर अवसर इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष अमृत पाल कौर जी उपस्थित हैं और करियर इन साइकोलॉजी के बारे में बातें करने वाले हैं। और पिछली बार आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया था करियर इन ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में, एचआर में किस तरह से हम अपना करियर कर सकते हैं, और अब हम लोग बात करने वाले हैं करियर इन साइकोलॉजी में। तो अमृत पाल कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: थैंक यू भाई जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी जी जी, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए। जी
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमृत पाल कौर है और मैं दिल्ली से हूँ। पिछले 13 साल से मैं एज एन एचआर फील्ड में काम कर रही हूँ, और अभी मेरा रोल एचआर मैनेजर का है। और स्पेसिफिकली हम लोग हायरिंग में काम करते हैं, हायरिंग ट्रेनिंग, और कैसे लोगों को हम लेकर आते हैं और किस तरह से उनको कंपनी के लिए प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, दोनों ही चीजों में साथ साथ काम करते हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, साइकोलॉजी और साइकेट्री इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो साइकोलॉजी और साइकेट्री दो अलग अलग चीजें हैं, और इन दोनों में जाने के लिए अलग अलग पाथ होते हैं। साइकोलॉजी जो है ये ज्यादातर बिहेवियर के ऊपर आता है, चाहे वो सोशल बिहेवियर है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट बिहेवियर है, मतलब अलग अलग

थिंग्स होती हैं इसकी. तो साइकोलॉजी बेसिकली डॉक्टर नहीं होते, ये लोग आपको थेरेपीज देते हैं और या फिर इसको हम कॉर्पोरेट में जैसे काम होता है, ऑफिस होते हैं और एडवर्टाइजिंग एरियाज होते हैं, इन सभी जगह पर या मार्केटिंग होती है, इन सभी जगह पर बिहेवियर साइकोलॉजी आती है. इसकी काफी सारी फील्ड्स हैं जिसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे. और वेयर एज जो साइकेट्री है, साइकेट्री एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि हम डॉक्टरी, जिसको जैसे हम एमबीबीएस करते हैं, तो एमबीबीएस नॉर्मल एमबीबीएस करने के बाद इसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन में साइकेट्री को स्पेशलाइज करते हैं, जिसमें एमडी होती है, पीएचडी होती है. और सबकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ही सिर्फ आपको मेडिसिन लिखकर दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको कभी भी कोई मेडिसिन नहीं देगा, क्योंकि वो एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि वो ऑथराइज डॉक्टर्स नहीं है. तो साइकोलॉजी हमेशा हमारी बिहेवियर्स के ऊपर आती है, वो किसी भी फील्ड का बिहेवियर हो सकता है, जबकि साइकेट्री जो है प्रॉपर आपको एमबीबीएस करके डॉक्टरी करनी होती है और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, जहां पे अगर हमारे कोई जरूरत होती है तो हम वहां पे मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं. तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है साइकोलॉजी और साइकेट्री में. और अभी आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में. तो साइकोलॉजी इस फील्ड में बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे सोशल साइकोलॉजी, बिहेवियर साइंस, और इवन आज की डेट में मार्केटिंग में एनजीओज वगैरह जो होते हैं वो लोग भी, कॉर्पोरेट में, हर जगह साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है. अब साइकोलॉजी का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि हम सब जो इंसान हैं, बिहेवियर हमारा होता है, एक ही सिचुएशन में हर व्यक्ति का अलग अलग बिहेवियर होता है. कभी किसी का गुस्सा हो सकता है, कभी किसी का प्यार हो सकता है, कभी किसी को किसी तरह के भी नेगेटिव इमोशंस या पॉजिटिव इमोशंस. तो बेसिकली हमारी जो बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारे खरीदने की बिहेवियर है, चाहे हमारा स्पेंड करने का बिहेवियर है, चाहे हमारे जो मेंटल थॉट्स होती हैं उनके ऊपर है, तो इन सबसे रिलेटेड साइकोलॉजी में डील किया जाता है. और साइकोलॉजी की जो सब फील्ड होती हैं, जैसे हमने सोशल साइकोलॉजी की बात करी है, तो इसमें जितने एनजीओज होते हैं, जितने हमारी मार्केटिंग डिविजन्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग डिविजन्स होते हैं, ये सब सोशल साइकोलॉजी के अंडर आते हैं, जहां पर सोशल बिहेवियर इंसान का क्या होता है उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें अपना फर्दर काम करते हैं. इसी के साथ कॉर्पोरेट साइकोलॉजी आती है. कॉर्पोरेट साइकोलॉजी में ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, क्योंकि जब हम ह्यूमन से बात काम करते हैं तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं, और हर इंडस्ट्री का अपना एक बिहेवियर होता है. और इसमें जैसे हायरिंग होती है कंपनी में, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसे आपकी अंदरूनी जो एक्चुअल में जिसको बोलना चाहिए स्पेशलाइजेशन, कुछ लोगों में कुदरती होती है, कुछ कुछ चीजों में, कोई लीडरशिप रोल के लिए बना है, कोई सिखाने के लिए बना है, कोई कैसे, वो आपके अंदर की चीजें होती हैं जिससे हम लोगों को समझ आता है इन टेस्ट के जरिए, या एक स्पेसिफिक फील्ड में जब हम हायरिंग करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है कि ये इंसान इस पर्टिकुलर फील्ड में फिट होगा या नहीं. और इसके बाद जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जो कि साइकोथेरेपी जिसको बोलते हैं, इसमें मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब चीजें आती हैं. ये लोग हेल्प करते हैं, जैसे कई लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, कई बच्चों में ग्रोथ के इश्यूज होते हैं, कई बुजुर्ग लोगों में या बड़े लोगों में, इवन आज की डेट में जैसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होती है, अलग अलग सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए, तो ये सब बिहेवियर के अंदर

0: करते हैं और इनके साथ वो डील करते हैं। अब जैसे कॉर्पोरेट साइकोलॉजी का हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि ह्यूमन रिसोर्स, एडवर्टाइजिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब आते हैं। इवन एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आज की डेट में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, जहां पे एजुकेशन में कि कौन सी स्ट्रीम में बच्चे जाएं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेरेंट्स को ज्यादातर यही लगता है कि हमारे बच्चे या साइंस ले लें, ज्यादा नहीं तो फिर कॉमर्स ले लें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड हैं जहां पे आज की डेट में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन सी फील्ड में जाएं ताकि आगे बढ़ सकें।
1: जी जी, अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को और जो श्रोता मित्र है उन सभी को अच्छा लग रहा है। साइकेट्री और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है ये आपने बताया और निश्चित तौर पे लोग ऐसी छोटी सी जो बारीकियां हैं इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट जरूर होते हैं, वो डॉक्टर नहीं होते, वो मेडिसिन नहीं लिखते, लेकिन काउंसलिंग कर सकते हैं और साइकेट्री के पास आप जाते हैं तो वो लोग मेडिसिन भी रेकमेंड करते हैं कुछ ऐसे, ताकि आप जो है अपने डेली रूटीन में उन चीजों का इस्तेमाल करके जीवन को अच्छा बना सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और विस्तार से बात करेंगे कि साइकोलॉजी के साथ करियर करना हो तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अमृतपाल कौर जी से बातचीत हो रही है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। करियर इन साइकोलॉजी पे बातें हो रही है, तो आइए अमृतपाल जी, मैं चाहूंगा कि अब साइकोलॉजी में हमें करियर करने के लिए किन किन बातों पे ध्यान रखना है और किस किस तरह से हमारी पढ़ाई हो जानी चाहिए। आफ्टर टेंथ हमें किन चीजों पे या किन स्ट्रीम्स के साथ जुड़कर हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इसमें। जी
1: जी बिल्कुल। जैसे कि हमने पहले भी बात करी है इस बारे में कि साइकोलॉजी और साइकेट्री में फर्क होता है, तो साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता मैथ्स में स्पेसिफिकली, वो लोग अगर अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहते हैं जहां पे एक सोशल स्टेटस होता है, जहां पे आप इनकम भी आपकी अच्छी हो सकती है, तो हम साइकोलॉजी फील्ड को 10th पास करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो 11th 12th में हम साइकोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट 11th 12th में चूज कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल्स साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी के लिए एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि ये माइंड रीडिंग की बात है कि हम किसी का मन पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड है और इसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स होती हैं जिसमें हम आगे बढ़ के स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, साइकोलॉजी आप आर्ट्स लेकर, आर्ट्स में साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट लेकर आप साइकोलॉजी 11th 12th से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आप दूसरे अपने सब्जेक्ट जैसे सोशल साइकोलॉजी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक कॉम्बिनेशन हर स्कूल का अलग अलग होता है, वो आप 11th 12th से स्टार्ट

कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है बैचलर्स इन साइकोलॉजी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है और हमारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जहां आप साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हैं एट द ग्रेजुएशन लेवल। इसके बाद आती है मास्टर्स, इसके बाद आती है पीएचडी। तो साइकोलॉजी में ही आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको जब बैचलर्स की जाती है तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए वो आपको एक इंटर्नशिप की ऑफर देते हैं कि आप किसी भी साइकोलॉजी हॉस्पिटल में जाके, जैसे जहां पे मेंटल डिसऑर्डर्स, या जैसे विमेंस एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे लोग अपने मेंटल प्रॉब्लम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डाइवोर्स हो रहा है, तो जब डाइवोर्स हो रहा है तो दोनों ही पति पत्नी बहुत सारी मेंटल प्रेशर्स में जाते हैं, तो वहां पे विमेंस जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे वो आपको थेरेपी देते हैं कि आप अपनी लाइफ के इस जो मेजर चैलेंज आपको आ रही है उस प्रेशर को किस तरह से डील करें, क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन में जैसे 11-12 में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वुमेन बहुत सारी चीजों में मेंटली सपोर्ट करता है। तो ये ऐसी जगह पे जाकर आपको फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। ये है स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद। लेकिन अगर आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ना हो, ये थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब चीजों में डील करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख नहीं सुन पाते, क्योंकि वो हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हर चीज में अगर आप क्योंकि अगर आपके पास दिन में 50 लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं या उनकी अपनी इमोशंस इतनी हावी हो जाती हैं कि वो इन चीजों से डील नहीं कर पाते, नेगेटिव चीजों से। तो ऐसे बच्चे बैचलर्स करके उसके बाद एचआर फील्ड में आ सकते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी, ये भी एक एरिया है जहां पे आप आ सकते हैं। अगर किसी का मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एरिया में इंटरेस्ट हो तो वो उस तरह भी जा सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि खाने पीने की चीजों में स्पेसिफिकली अगर हम एडवर्टाइजिंग देखें तो येलो कलर, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट रेड, इस तरह के, तो ये कलर साइकोलॉजी को यूज करके वो एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, एडवर्टाइजर्स बनाते हैं, जिसमें बच्चों को अट्रैक्शन हो, जिसमें उनकी चीजें अच्छे से दिखे। तो हर फील्ड में आज की डेट में साइकोलॉजी यूज हो रही है। आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, काफी सारे कोर्सेज हैं जो बैचलर्स के बाद आप साथ साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं, तो साइकोलॉजी करने के बाद आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, या कॉर्पोरेट साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं मास्टर्स करके या कोर्सेज करके। तो दोनों ही तरह से ये चीजें आपके काम आ सकती हैं। इसमें काफी सारी मैं कहूंगी कि फील्ड्स खुल जाती हैं किसी को सोशल सेक्टर में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ लोग, जैसे वो सोशल सर्विस करना चाहते हैं या एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं, तो वहां पे भी बिहेवियर साइकोलॉजी बहुत काम आती है। तो ये है अलग अलग फील्ड्स जिसमें वो जा सकते हैं। तो बेसिकली 11-12 से ही वो अपने आप को इस फील्ड में डाल सकते हैं। अब इसमें आगे इसको स्पेशलाइजेशन करना है, कुछ लोग स्पेसिफिकली सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट में जाना चाहते हैं, और ये टेस्ट बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं जिसमें आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये अलग अलग फील्ड्स में यूज होते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है कि कैसे आप किस तरह के क्वेश्चन कौन सी सिचुएशन में पूछेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। ये भी एक फील्ड है जिसमें आप जाकर स्पेसिफिकली अपने आप को साइकोमेट्रिक टेस्ट में लेकर जा सकते हैं, ये स्पेशलाइजेशन हो सकती है। एचआर में कॉर्पोरेट साइकोलॉजी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो कॉर्पोरेट में भी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के बिहेवियर चाहिए होते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है तो उसका बिहेवियर एक अलग होगा, लेकिन अगर कोई साइंटिफिक फील्ड में है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। जैसे आजकल

0: काफी सारी ये दवाइयां बनाने वाली कंपनीज होती हैं, तो उस फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। आज की डेट में तो एआई बहुत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आ गई है, तो इन सब फील्ड्स में आज की डेट में साइकोलॉजी बहुत यूज होती है। और इसमें अगर हम इसको आगे फर्दर थोड़ा सा और अगर समझना चाहते हैं तो इसकी बहुत सारी सब फील्ड्स भी होती हैं। इवन बायोसाइकोलॉजी नाम की भी एक फील्ड होती है जिसमें बायोलॉजिकल बिहेवियर्स यूज होते हैं। जैसे हम इसको कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो प्लांट्स की साइकोलॉजी में भी डील करती हैं, किसी को अगर इस फील्ड में शौक हो तो वहां भी वो अपना करियर बना सकते हैं। तो इसमें आपको पहले 11, 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा कि मेरा असल में किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो आप उन फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकती हैं 11, 12th और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, और उसके बाद मास्टर्स में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया कि कैसे हम लोग जो है साइकोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा जो है आजकल जो है हर विषय को लेकर जो है काफी अच्छा काम हो रहा है। तो विस्तार से आपने बताया कि इसमें प्लांट साइकोलॉजी के बारे में भी आपने बताया, हो सकता है कि ये भी एक अच्छा विषय हो कि आजकल जो है इंडोर और आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं जो घर के अंदर पौधे लगाए जाते हैं, तो क्योंकि एसी रूम होता है तो ऑफिस वगैरह एसी में होते हैं तो वहां पर बंद कमरे होते हैं तो प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो अंदर भी प्लांट्स लगाते हैं, तो अलग अलग प्लांट्स की अपनी खूबसूरती होती है, कई लोग अंदर में अच्छे से ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन अच्छा देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो समझने के लिए या समझाने के लिए तो इस तरह के जो है बायोसाइकोलॉजिस्ट भी जरूरत होती है, और बहुत सारी जगह पे जो है एचआर में भी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे आप खुद वहां पर काम कर रही हैं, और निश्चित तौर पे ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग मास्टरी करके बहुत जगह पे अलग अलग जो काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर भी आप अपना जो है करियर बना सकते हैं, ये आपने बताया। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम साइकोलॉजी में जिन लोगों ने अच्छा नाम किया है इस सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को और अपना नाम भी किया है, ऐसे लोगों की कुछ ऐतिहासिक चीजें हम लोग आफ्टर ब्रेक सुनेंगे अमृतपाल जी से। आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

मैं हूं अनंत संभाजी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। अमृतपाल कौर जी हमारे साथ है और उनसे बातें हो रही है। करियर इन साइकोलॉजी की बातें चल रही हैं, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें हो सकती है और कैसे आप इसमें अपना स्ट्रीम पूरा करके आप इस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकते हैं, तो स्पेशल सेंटर्स भी होते हैं जो इस विषय को लेकर आपको पढ़ाते भी हैं, और कुछ जगह पे आप जो है अपने मेन स्ट्रीम के साथ इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जिस जगह पे हो, जहां पर भी हो, वहां पर किस तरह की अवेलेबिलिटी है और आपके बजट के अनुसार वो चीजें आपको अलाउ करते हैं। तो दोनों चीजें हैं, आप इसमें अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो बजट की बात नहीं आती, पढ़ने की बात आती है। आप पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के आप अपने करियर को फ्रेम आउट अच्छा कर सकते हैं। तो अमृतपाल कौर जी, फिर से एक बार आपका स्वागत है कार्यक्रम के इस आखिरी मोड़ पर पहुंचे हैं, जहां पर मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है साइकोलॉजी में और अपना करियर के साथ साथ नाम किया है, यूनिक अपना जो पहचान है बनाई है, ऐसे लोगों के कुछ ऐतिहासिक चीजें हमारे साथ शेयर कीजिए। जी
1: जी जरूर। साइकोलॉजी तो वैसे बहुत

यहाँ से ह्यूमन साइकोलॉजी का जो आज का लेटेस्ट वर्जन है उसी की आगे बहुत सारी थ्योरीज को लेकर सिगमंड फ्रॉयड ने इस फील्ड में बहुत सारी अपनी रिसर्च करी थी, रिसर्च पेपर्स दिए थे और इनका मेजर जो शौक था वो ह्यूमन बिहेवियर कि वो किस तरह से अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस मेमोरीज जो होती हैं वो हमारे आज के संदर्भ में, मतलब हमारी जो पुरानी जैसे हमारे सोल लेवल पे जो मेमोरीज होती हैं वो किस तरह से हमारी काम करती हैं आज के संदर्भ में, यानी कि आज की जो मेरी लाइफ है, जो मेरी पुरानी थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से अचानक से उभर कर सामने आती है। क्योंकि हर बच्चा या हर व्यक्ति एक सिचुएशन, सेम ही सिचुएशन हो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है तो एक व्यक्ति आएगा, वो देखेगा, फोटो खींचेगा, चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा वहां खड़ा रहेगा, दो चार से पूछेगा और चला जाएगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति आएगा वो उस व्यक्ति के मुंह में पानी डालेगा और उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। सिचुएशन तो सेम है लेकिन आपका जो बिहेवियर है सेम सिचुएशन के लिए वो एक डिफरेंट बिहेवियर या एक डिफरेंट आपका स्टिमुली या उस सिचुएशन का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होगा। तो इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में फ्रॉयड ने इस चीज को स्टडी किया और उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है। और अगर हम फ्रॉयड की ही साइकोलॉजी, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन सिगमंड फ्रॉयड, कन्फ्यूशियस, ये सब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पे, प्लूटो, अलग अलग लेवल पे इन लोगों ने इसकी रिसर्च करी है। जो फ्रॉयड की साइकोलॉजी है या प्लूटो भी कह सकते हैं और कन्फ्यूशियस वगैरह, जितने भी ये बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों का जो प्री कंसेप्ट था साइकोलॉजी में, ये एनालिसिस करते थे सबकॉन्शियस माइंड का। कुछ चीजों में हमारी फिक्सेशन हो जाती है, कई बार किसी सिचुएशन में हम अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं, या जैसे हमें ड्रीम्स आती हैं, हमें स्वप्न आते हैं, उन स्वप्न का क्या मीनिंग होता है, कौन सी सिचुएशन में हमारा क्या मीनिंग होगा, हमने ड्रीम में देखा कि बारिश में हम घूम रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा, हम उड़ रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों में फ्रॉयड की बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है कि वो किस तरह से हर एक चीज को एनालाइज करके और इनका क्या मीनिंग होगा वो उसने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं। इवन उसने मेल और फीमेल, यानी कि मर्द और औरत, इन दोनों की भी साइकोलॉजी में डिफ्रेंशिएट किया है कि सेम सिचुएशन में एक पुरुष क्या सोचेगा और एक औरत क्या सोचेगी, और एक पुरुष क्या करेगा और एक औरत क्या करेगी। तो इसमें उन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी, उनका किस तरह से जैसे कई बच्चे अब्यूज में अब्यूज फील करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता है, यानी कि उनको, कुछ बच्चों को परेशान किया जाता है, तो एक बच्चा बिल्कुल दब्बू होकर साइड पे बैठ जाएगा, एक बच्चा सामने से लड़कर सामने आएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशन में एक ही, मतलब सिचुएशन में बच्चों के अलग अलग जो बिहेवियर होते हैं, कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती हैं और कैसे, जैसे एक ही बच्चा अगर दब्बू है तो उसको हम किस तरह से उसमें से निकाल सकते हैं, ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर उन्होंने इसकी बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करी है। और अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो काफी उन्होंने धर्म को लेकर काफी सारी चीजें करी हैं, जिसका हम मेरे हिसाब से इसको हम, क्योंकि बच्चों का हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो शायद हमें इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली जितनी भी हमारी ये एनालिसिस होता है, बिहेवियर एनालिसिस, हमारा डिफेंस एनालिसिस, कैसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, इन सब चीजों में अगर कोई सचमुच में इस साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहता है तो फ्रॉयड की थ्योरीज को पढ़ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ही वो 11th 12th में अगर लेना चाहते हैं, आपके पास 10th की छुट्टियां आती हैं 10th के एग्जाम्स के बाद, तो आप इसको पढ़ें, इसके बारे में जानें, इसको समझें और फिर अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट

0: कहाँ बनता है, तो वहां से एक आपको लाइन समझ आ सकती है कि हमें इस फील्ड में जाना भी है या नहीं जाना, हम इसको कर सकेंगे, हमें इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो साइकोलॉजी जैसी कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड आगे खुल जाती हैं। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट सिर्फ बैचलर्स लेवल पे नहीं, मास्टर्स लेवल पे और पीएचडी लेवल पर भी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ का सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है, जहां आपको अच्छे से समझ आ सकती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अमृतपाल कौर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा है। एक बात जाते जाते मैं चाहूंगा कि इसमें कितना टाइम लगता है करियर में अच्छे से फ्रेम आउट होने में, क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल में आप फील्ड में जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को सेट करने में, तो इसी तरह यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इनको, अगर आप कोई बंदा साइकोलॉजिस्ट बन के अगर काम करना चाहे तो कितना टाइम लग सकता है सेट होने में?
0: जी, सो जैसे हमने डिस्कस किया कि 11 ट्वेल्थ में आप साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद 3 साल आपके ग्रेजुएशन के हैं, तो अगर आप साथ साथ इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में बल्कि किसी भी फील्ड में, फाइनल ईयर में ही अलाउड होता है कि आप साथ साथ इंटर्नशिप करें, चाहे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहें, चाहे आप कॉर्पोरेट साइकोलॉजी या इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें, तो आप इंटर्नशिप अगर करते हैं फाइनल ईयर में 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी ड्यूरेशन होती है, तो उसके बाद आपको एज अ फ्रेशर बहुत सारी कंपनी हायर कर लेती हैं। तो ये स्टार्टिंग का फेज है, तो पहले 2 साल आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप फर्दर आगे कोई स्टडी नहीं करते हैं तो कम से कम 2 साल का आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, जहां पे स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 20-25-30 हजार ही होती है। लेकिन एक बार आप अपने आप को इस फील्ड में सेट कर लेते हैं तो फिर जब वो जो आपके पास हैंड्स ऑन नॉलेज आ जाती है, वहां से 2 साल जो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें बुक्स में सिखाई जाती हैं, कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, तो वो 2 साल के बाद आपका एक्चुअल करियर ग्रो करना शुरू करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, ये सिर्फ इस फील्ड के लिए नहीं है, हर फील्ड के लिए है, कि जब आप पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी ढूंढते हैं तो पहले दिन ये मत सोचिए कि मेरी 1 लाख रुपया महीना सैलरी हो जाएगी। शुरुआत के 2 साल जो हैं वो किसी भी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ आप सीखने की नीयत से जाइए, आप सीखिए, 2 साल जब आप सीखेंगे, आप सर्टिफिकेशन लीजिए, आप पढ़िए, आप आगे हैंड्स ऑन काम कीजिए और सीखिए, उसके बाद आपका करियर सही ढंग से ग्रो करता है।
1: चलिए अमृतपाल कौर जी, बात ही अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि कई बार हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि भाई अपना काम हो गया, अब हमें एक अच्छी नौकरी फटाफट मिल जाए और अच्छा पैकेज मिल जाए, तो अच्छे पैकेज में पैकेज के चक्कर में काफी लोग जो है टाइम वेस्ट कर लेते हैं और फिर उस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें हो जाती, तो ऐसे वहां करके आप एक्सपीरियंस के लिए जरूर शुरुआत में कम में भी आप जो है छोटी सी छोटी जो पोजीशन है उसमें भी आप अगर करेंगे और फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपका काम देखकर जो है अपने आप ही आपको इम्पोर्टेंस मिलने लगेगा और लोग भी सामने से आपको ऑफर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, पूरी जानकारी आपने दी साइकोलॉजी के बारे में, करियर कैसे कर सकते हैं, अमृतपाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: थिरकतो. त्याचसोबत
1: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
2: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन. खुश रहो, खुशियां बांटो.
4: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं. यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है. तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है. विषय है भाग्य की कलम आपके हाथ में. अक्सर हम अपने जीवन में यह कहते सुनाई देते हैं, मेरे भाग्य में ही नहीं था, किस्मत खराब है या जो लिखा है वही होगा. लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन केवल भाग्य के भरोसे चलता है? क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या फिर अपने जीवन के लेखक भी हैं? श्रोताओं, यदि ईमानदारी से उत्तर खोजें तो पाएंगे कि भाग्य की कलम वास्तव में हमारे हाथ में ही होती है. हमारा सोचने का तरीका, हमारे निर्णय और हमारा परिश्रम, यही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं. हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते, अर्थात हमारा अधिकार कर्म पर है. कर्म ही वह सही है जिससे हम अपने भाग्य के पन्नों पर शब्द लिखते हैं. जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहता है, वही अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है. इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है. एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब ने कठिन परिस्थितियों को कभी अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया. उन्होंने परिश्रम, अनुशासन और सपनों की शक्ति से न केवल अपना भविष्य बदला बल्कि पूरे देश को दिशा दी. यदि वे मान लेते कि गरीबी उनका भाग्य है तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? प्रिय श्रोताओं, जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, परंतु असफलता को भाग्य का दोष देना अपने भीतर झांकने से बचने का आसान तरीका है. असफलताएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं. हर ठोकर हमें यह बताने आती है कि रास्ता बदलो, प्रयास बढ़ाओ, हिम्मत मत हारो. नकारात्मक सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है. जब हम बार बार अपने भाग्य को कोसते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है. हम कोशिश करना छोड़ देते हैं. लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बदलाव की शुरुआत मुझसे ही होगी, उसी दिन भाग्य भी हमारा साथ देने लगता है. साथ ही सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना आवश्यक है. कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं और परिणाम आने पर कहते हैं किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में वह हमारे निर्णयों का फल होता है. यदि हम सोच समझकर विवेक के साथ कदम बढ़ाएं तो सफलता के अवसर अपने आप बनने लगते हैं. श्रोताओं, जीवन एक खुली किताब की तरह है. हर नया दिन एक खाली पन्ना है. यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पन्ने पर शिकायतों की कहानी लिखते हैं या संघर्ष और सफलता की प्रेरक गाथा. भाग्य कोई बंद तिजोरी नहीं है जिसकी चाबी किसी और के पास हो. वह एक कलम है और वह कलम हमारे हाथ में है. अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाग्य का इंतजार मत कीजिए, भाग्य का निर्माण कीजिए. मेहनत, सकारात्मक सोच और सही दिशा, यही वह ताकत है जो आपके आज को बेहतर और आपके कल को उज्ज्वल

0: करा सकती है। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं, खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है, सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: モニカ
1: वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ है. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू.
1: आप बात कर रही थी लास्ट टाइम अबाउट द क्वालिटीज ऑफ सोल. तो सारी क्वालिटीज का इफेक्ट हमारी बातचीत में, घर के माहौल में,
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अंदर फीलिंग में. इवन इफ यू जस्ट टेक द वन लाइन, आई एम अ प्योर सोल, जस्ट क्रिएट दिस थॉट, अंदर कैसा फील होगा? क्योंकि जब हमें अपने अंदर आई एम अ प्योर सोल ये याद रहेगा, तो दूसरों के अंदर भी प्योरिटी दिखाई देगी. लेकिन आई एम एन एंग्री सोल, तो अंदर ये फीलिंग कैसे आएगी? फिर बोल, फिर व्यवहार, फिर कर्म, फिर दूसरे के प्रति नजरिया, वो तो फिर सेकेंड स्टेजेस है. जस्ट हाउ डू वी फील इन साइड इफ दिस कॉन्शियसनेस स्विचेस फ्रॉम ईगो टू सोल कॉन्शियसनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे हमने ये सेवन क्वालिटीज देखी, प्योरिटी, पावर, पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, दिस सेवन क्वालिटीज. इसीलिए कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है. ये सात गुण आत्मा के अपने गुण हैं. जैसे ये शरीर पांच तत्वों का बना है, जैसे ही वो फाइव एलिमेंट्स में कुछ भी अनबैलेंस्ड होगा, शरीर बीमार होने लगेगा.
1: आयुर्वेद हो, प्राणिक हीलर हो, या मतलब नेचुरोपैथी हो,
2: तो वो क्या कहेंगे?
1: बोलते हैं ना आपकी या तो वायु बढ़ गई, या हीट बढ़ गया, या पित्त बढ़ गया है.
2: एंड विच मीन्स सिर्फ ऊपर से दवाई खा ली तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी. वो फाइव एलिमेंट्स को क्या करना है? बैलेंस करना है. इसी तरह से ऊपर से कुछ अच्छा खा लिया, टीवी देख लिया, किसी से बात कर ली, तो सुख नहीं मिलने वाला है. वो सेवन क्वालिटीज को बैलेंस करना है. जब तक वो अंदर सेवन क्वालिटीज नहीं, वो जो फीलिंग जिसको हम ढूंढ रहे हैं, हम सीख कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट. तो ये अब सेवन क्वालिटीज को हमने पकड़ना है, और आज से अपनी वोकैबुलरी को चेक करना है कि कहीं भी अभी भी गलती से भी इन सातों को बाहर नहीं ढूंढना है. शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, बाहर नहीं ढूंढना है. पुराना संस्कार है बाहर ढूंढने का, तो इसलिए जाएगा मैं यहां इसमें, वो सब करना है जो बाहर कर रहे हैं, लेकिन इन सातों को उसमें ढूंढना नहीं है.
1: शहर का या गांव का एक राजा है और वो भीख मांगने चला गया, मुझे दो रुपए दो,
2: वो नहीं होगा. उससे जीवन क्या हो रही है? जो हमें चाहिए हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं. बाहर वो है नहीं, वो अंदर बैठा है. ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहा, तो गुस्सा क्या हो रहा है? और बढ़ता जा रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा. वी लुकिंग फॉर इट आउटसाइड, बिकॉज मे बी लुकिंग फॉर इट आउटसाइड इज इजियर फॉर अस. अंदर क्रिएट करना, एक्सपीरियंस करना हमें डिफिकल्ट लग रहा है.
1: मालूम भी नहीं था,
2: लेकिन अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा. एंड वो अनुभव जो है, इसी अनुभव को कहते हैं अति इंद्रिय सुख. ये सेवन क्वालिटीज को जो आत्मा अपने अंदर बढ़ाती जाएगी, सातों क्वालिटीज को, वो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी. वो आत्मा को हम कहेंगे डिवाइन बीइंग.
1: डिवाइन बीइंग,
2: इसके अंदर वो सेवन क्वालिटीज इमर्ज्ड है. ये आत्मा जहां आपको दिखेगा कोई भी ऐसा, तो आप कहेंगे दिव्य आत्मा है, क्योंकि उसकी वो अंदर की डिविनिटी उसके चेहरे पे दिखाई देगी. चेहरा दिखेगा कि चेहरा बदल गया है. फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. तो जैसे जैसे माइंड बदलेगा, चेहरा बदलेगा.
1: बोलते हैं ना किसी को देख के, कितना डिवाइन सोल है.
2: तो वो दिखता
1: चेहरे पे, कितनी डिविनिटी है,
2: वो दिखता है.
1: तो यही है बीइंग डिवाइन.
2: आई द बीइंग आई एम डिवाइन, ये हमारी ओरिजिनलिटी है. सातों को भी अगर एक एक करके हम न लें, रोज अगर हम सिर्फ ये एक लाइन लें, आई एम अ डिवाइन बीइंग, तो ऑटोमेटिकली, जैसे पहले दिन आपने कहा डिवाइन बीइंग बोलते ही अच्छा लग रहा है,
1: हाँ
2: तो सोचेंगे, फील करेंगे, उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करेंगे कि दिव्य आत्मा, आज तक हम दिव्यता को देवी देवताओं के चित्रों में देखते थे, मंदिरों में जाकर मूर्तियों में देखते थे, संत महात्माओं में ढूंढते थे, वो दिव्यता तो हर आत्मा की ओरिजिनलिटी है।
1: पर डिवाइन फीलिंग जो बचपन से एक हल्की सी एक्सपीरियंस्ड है, जैसे पिकनिक पे गए और सनसेट देखा या सुबह उठ के सनराइज देखा, तो एक डिवाइन सी फीलिंग आती है, मतलब एक फीलिंग आती है, तो मालूम नहीं था इसको क्या बोलते और कैसे आती है।
2: डिवाइन शब्द हमने सुना है, वी हैव हर्ड द वर्ड, वी यूज द वर्ड, we have still to experience the word.
1: Yeah.
2: जो हमने sunset में, sunrise में, seashore पे, प्रकृति, जब प्रकृति सतोप्रधान मिलती है हमें, मतलब प्रकृति भी उस समय बहुत pure vibrations है, तो कुछ क्षणों के लिए हमारे मन के जो turbulence है, क्योंकि वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ता है, तो मन की जो turbulence है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, तो कुछ क्षणों के लिए हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो इमर्ज होती है, कुछ क्षणों के लिए।
1: सुर के साथ सुर मिलता है जैसे,

0: जो सेकंड स्टेज है वो है आत्मा परमात्मा को पहचाने और आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हो, वो राजयोग है। अब आत्मा जब अपने आप को पहचान कर अपने संस्कारों को इमर्ज करती है, वी कैन डू दैट, हम कर रहे हैं अभी, ये हुआ, लेकिन बैटरी के चार्ज होने की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, धीरे धीरे चार्ज होगी। लेकिन आत्मा अगर परमात्मा से कनेक्ट हो जाए तो बैटरी अगर पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए तो फिर उसके चार्ज होने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो वो जब चार्जिंग होने लगती है तो डिविनिटी बहुत फास्ट अपने अंदर एक्सपीरियंस होती है। तो वो है सेकंड स्टेज राजयोग, के आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो। अब जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगी तो परमात्मा की पावर्स, परमात्मा का प्यार, परमात्मा का ज्ञान आत्मा में भरता जाएगा। अब आत्मा की डिविनिटी नेचुरल फ्लो करने लगेगी। तो ये है जो हम रोज सुबह मेडिटेशन में करेंगे, कि मेडिटेशन में हमने क्या करना है, थॉट, टेक अ थॉट, फील इट, उसको अनुभव करें, उसको विजुअलाइज करें, और फिर जब मेडिटेशन से उठें तो उसको कर्म में लेकर आएं।
1: मतलब थॉट कौन सी ले?
0: सपोज आई एम अ डिवाइन बींग, ये एक थॉट है।
1: आई एम अ डिवाइन बींग थॉट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको मैं पहचानता नहीं। आई एम अ पीसफुल और आई एम अ पीस लेते हैं,
0: ठीक है, आई एम अ पीसफुल बींग, पीस ले लेते हैं। अब आई एम अ पीसफुल बींग एक थॉट हमने लिया और हमने कहा हम इस थॉट के साथ 5-7 मिनट अभी बैठेंगे। जैसे हम दूसरी कोई प्रॉब्लम की थॉट्स के साथ बैठते हैं ना, कोई मन हमारा परेशान है किसी बात को लेकर, ऑफिस में कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, हम बैठ जाते हैं, कितनी देर बीत जाती है?
1: बहुत देर, पता भी नहीं चलता।
0: तो 10-15 मिनट तो हम ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो 10-15 मिनट हम अंदर क्या कर रहे हैं, हम वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, मन करता है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है, हमेशा दिखाई देगा, जैसे उसने कहा था, हम कहते हैं उसने ऐसे बोला था, ऐसे हमारे को दिखाई दे रहा होता है सामने। किसको दिखाई दे रहा होता है? इसको दिखाई दे रहा होता है, इसीलिए इसको तीसरा नेत्र कहते हैं, बिकॉज इंटेलेक्ट मीन्स विजुअलाइजेशन पावर ऑल्सो। तो जैसे जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं, उसने फोन किया, फिर ये बोला, फिर ऐसे किया, फिर वैसे हुआ, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है। जब माइंड थॉट क्रिएट कर रहा है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है, धीरे धीरे हम वो फील करना शुरू कर देते हैं। थोड़े साल पहले कोई बात हुई थी, हम उदास हुए थे, हमें रोना आया था उस दिन, हम आज उसको सोच के फिर से रो सकते हैं। दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स आप उस समय पूरी तरह से उस मोमेंट पर कॉन्सेंट्रेटेड थे, आपने सोचा भी उसके बारे में, मन ने सोचा उसके बारे में, बुद्धि ने विजुअलाइज किया, और वो सारा अनुभव वैसे का वैसे क्रिएट हो गया, और इतना तक क्रिएट हो गया कि आंखों से आंसू भी आ गए। नाउ दिस सेम थिंग कैन वी डू इट विद अ प्योर थॉट ऑल्सो,
1: व्हाई नॉट,
0: है ना। अब सेम हमें बैठना है 5 मिनट। अब हमारी ये थॉट है, आई एम अ पीसफुल बींग, ये थॉट लेनी है ना, आई एम अ पीसफुल बींग। जैसे ही हम बैठेंगे, हो सकता है कि ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड कुछ और बातें आ जाएंगे। जब हम बैठते हैं, अपने मन को प्रिपेयर करना है कि अभी हम किस लिए बैठे हैं, हम इस चीज पर सोचने के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हम बैठेंगे, शुरू भी करेंगे, हो सकता है कि कोई और थॉट आए,
1: ओवरपावर कर देती है, कुछ और बात
0: ध्यान में आ जाती है। हमें उस समय उठना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस थॉट के प्रभाव में आकर उधर बह नहीं जाना है,
1: फिर हटाना है,
0: फिर मन को इधर लेकर आना है, फिर वो बात को याद आएगी, फिर उसको फुल स्टॉप करना है, फिर उस मन को इधर लेकर आना है। क्योंकि हम अपने मन का जैसे चैनल बदल रहे हैं, ग्रूव बना हुआ है, ये हुआ, अब हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं, आई एम अ पीसफुल बींग। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम बैठेंगे, वो माइंड वापस उस पुराने वाले ग्रुप पे जाने लगेगा।

0: हमें उसको ध्यान से धीरे से इस ग्रूव पर लाना है. सो इनिशियली इट विल रिक्वायर लिटिल पेशेंस, थोड़ी सी धैर्यता, गिव अप नहीं करना उस टाइम पे. कई बार क्या होता है, कुछ पहले हमारे से नहीं होता, हम नहीं कर सकते. हम कर सकते हैं, हर एक कर सकता है. सिर्फ ये है किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है उसको कर पाने में, लेकिन हम हर एक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी सिट विद दैट कॉन्सेंट्रेशन कि मुझे ये करना है. आई एम अ पीसफुल बीइंग. अब इसको विजुअलाइज करें, इस कैरेक्टर को विजुअलाइज करें.
1: किस कैरेक्टर को?
0: आई एम अ पीसफुल बीइंग. थॉट क्रिएट किया, आई एम अ पीसफुल बीइंग. आत्मा को देखा, यहां पर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट. आई एम अ पीसफुल बीइंग. फील करते हैं कि पीस की वाइब्रेशन निकलकर चारों तरफ फैल रही है. बिकॉज एनर्जी विच वी क्रिएट हियर, इट विल वाइब्रेट ओवर हियर एवरीवेयर. ये चारों तरफ फैलेगी. आई एम अ पीसफुल बीइंग, ये थॉट यहाँ क्रिएट हो रही है, मेरे पूरे शरीर में फैल रही है. एवरी थॉट has an effect on every cell of the body.
1: मैंने एक बार ट्राई किया था पीस का, आपका वो सुन के, तो उसके बाद मेडिटेशन के बाद ना मुझे तो बोलने का मन नहीं कर रहा था. और बोल रहा भी था तो इतना सॉफ्टली, तो ऊंची आवाज में बोलने का मन नहीं कर रहा था, इतना पीसफुल लगने लग गया था. लेकिन थोड़ी देर के लिए.
0: हाँ, थोड़ी देर के लिए होने वाला है, थोड़ी देर के लिए होने वाला है, क्योंकि दूसरा ग्रूव तो अनेक जन्मों का है, अनेक जन्मों का है ना. और ये कितनी देर बनाया है अभी, 5 मिनट. लेकिन 5 मिनट का असर देखो कितना असर पड़ा था. 5 मिनट का
1: बहुत असर,
0: बहुत असर पड़ा. धीरे से बोलना शुरू किया,
1: बात करने का मन भी नहीं कर रहा,
0: बात करने का मन नहीं कर रहा कुछ क्षणों के लिए. उसका भी मीनिंग क्या है, आत्मा को इंद्रियों के सुख की जरूरत नहीं पड़ रही, आत्मा अंदर.
1: ना न्यूज़पेपर पढ़ने का मन किया,
0: वो नहीं कर रहा.
1: मैंने साइड किया और बस इतना शांत, और किसी की आवाज भी ऊंची सुनी तो मैं थोड़ा धीरे करो थोड़ा. तो आई वांटेड टू रिमेन इन दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उसमें इसलिए मैं इतनी मेरी आवाज भी कम हो गई थी.
0: वी वॉन्ट टू रिमेन इन दैट एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो हम कर सकते हैं, आज हमने 5 मिनट किया, कल हम उसको 10 मिनट करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, सुबह करके उसको हर एक घंटे के बाद 1-2 मिनट के लिए करेंगे.
1: अच्छा, सुबह लंबा करके.
0: हाँ, सुबह अच्छे से, क्योंकि सुबह टाइम होता है, तो सुबह करके फिर हर एक 2 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए करेंगे.
1: अलाम, अलाम, अलाम.
0: सपोज हम कार में जा रहे हैं कहीं, एंड मे बी देयर इज अ ट्रैफिक जैम और वी आर स्टक, बट इफ वी आर ड्राइविंग. अगर हम पीछे बैठे हैं तो आराम से कितनी भी देर कर सकते हैं. लेकिन अगर हम ड्राइव भी कर रहे हैं, हम एक ट्रैफिक सिग्नल पे हैं या हम एक ट्रैफिक जैम में अटके हैं, वी हैव 30 सेकेंड्स, वी हैव 1 मिनट.
1: व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ, आई मीन स्पेंडिंग दैट लिटिल टाइम.
0: इट्स बिकॉज
1: ये ग्रंबल करके, चिड़चिड़ करके, सामने वाला हटता नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट को समझ में आती नहीं, इतनी तकलीफ है, इतने लोग हैं,
0: उस कॉन्शियसनेस में आत्मा की एनर्जी घटती है. अब उस 1 मिनट का अगर सदुपयोग कर लिया, उसमें ऐसी थॉट क्रिएट कर ली, तो आत्मा की एनर्जी बढ़ती है. जस्ट 1 मिनट, इसको हम कहते हैं जस्ट अ मिनट, मतलब हर 59 मिनट्स के बाद 1 मिनट निकालें बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए. आजकल फोन के चार्जर सब लोग साथ लेके चलते हैं, हर जगह भी जाओ तो हर जगह चार्जर लटके हुए हैं, चाहे किसी दुकान में, एयरपोर्ट पे, रेस्टोरेंट में, चार्जर हर जगह लगे हुए हैं. तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर भी मिला 10 मिनट चार्जर के साथ. क्यों? क्योंकि फोन बहुत ज्यादा यूज होता है सारा दिन. अब हर बार 1-1 घंटे के लिए फोन को चार्जर पे नहीं लगा पाते, उतना टाइम ही नहीं है, फोन यूज करना है. तो बीच बीच में 5-10 मिनट करके चार्ज करते रहते हैं. तो वो 5-10 मिनट चार्ज करने से क्या हो जाता है, फोन चार्ज रहता है. अगर सिर्फ सुबह चार्ज किया और सारा दिन में बहुत यूज किया, चार्ज नहीं रहेगा पूरे दिन. तो सुबह मेडिटेट किया, पूरे दिन में अगर वापस उसको नहीं किया, थोड़ा सा वापस प्रभाव में आ जाएंगे. तो हर 1 घंटे के बाद 1

0: ये प्योरिटी की वाइब्रेशन उस आत्मा को टच होगी, वो आत्मा हमारे प्रति जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, उनकी इमोशनल स्थिति उस टाइम कितनी साइलेंट होगी, वो हमारा डायग्नोसिस सही करेंगे। क्योंकि वो स्ट्रेस की वाइब्रेशन उनकी क्या हो जाएगी, एकदम साइलेंट हो जाएगी,
1: मेरे भेजने से हो जाएगी।
0: हम भेजेंगे और वहां जाकर भी पहली थॉट क्रिएट करेंगे,
1: इंस्टेड ऑफ सेइंग कितनी देर बाहर बैठा दिया, कब से मैं बैठा हूँ, पता नहीं दूसरे पेशेंट को लेके बैठा है अंदर।
0: अब उसमें क्या होता है, अंदर वाले तो स्ट्रेस है ही डॉक्टर, क्योंकि वो एक के बाद एक लेट हो रहा है, ये हो रहा है, केओटिक स्थिति है। हम भी अंदर गए, हम भी केओटिक स्थिति में, केओटिक स्थिति का मन दूसरे केओटिक स्थिति के मन को हील कर रहा है। प्योर बींग मीटिंग अनदर प्योर बींग, एक मीटिंग में जा रहे हैं, एक क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, कितना कुछ है सारा दिन। ऐसे ही घुस जाते हैं हर सीन के अंदर, सब कुछ प्रिपेयर करते हैं सीन के लिए, यहां नहीं प्रिपेयर करते, आत्मा को अपनी सीट पर बिठाकर सीन के लिए नहीं चलते हैं। तो ये एक एक मिनट अगर हम निकालते जाएं बिफोर वी एंटर इनटू द सीन, आत्मा को अपनी सीट पर और अपनी राइट कॉन्शियसनेस पर बिठाकर चलें, तो उस सीन का फ्लेवर, उस सीन का एक्सपीरियंस और फिर यहां जो रिकॉर्डिंग होगी वी कम्प्लीटली डिफरेंट। ये हमें सिर्फ एक दिन करके देखना है कि हर घंटे के बाद एक मिनट, और कोई भी सीन टू सीन चेंज किया, किसी से मिले तो एक मिनट पॉज करके ही वाइब्रेशन क्रिएट करके देन एंटर इन टू द सीन।
1: जरूर करेंगे सिस्टर, थैंक यू सो मच। एक मेडिटेशन हो जाए थोड़ी,
0: सिट बैक कंफर्टेबल, बॉडी को रिलैक्स करें, एक एक अंग हल्का होता जा रहा है। मैं आत्मा अपने आप को आने वाले सीन के लिए तैयार कर रही हूं, अपने आप को देखें इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, विजुअलाइज करें एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। धीरे धीरे उसको देखने की कोशिश करें, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट जैसे एक बिंदी होती है, ये मैं आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल बींग, शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरी हर थॉट, हर बोल, हर कर्म शांति की शक्ति से भरा हुआ है, शांति ही मेरा स्वभाव है, शांति ही मेरा संस्कार है। विजुअलाइज करें ये एक ही थॉट की वाइब्रेशन एक लेजर बीम की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, एवरी सेल ऑफ माय बॉडी, every organ of my body is receiving the vibrations of peace. Kahin bhi koi dard, kahin bhi koi bimari, I'm sending it the vibrations of peace. These vibrations are healing vibrations. अब विजुअलाइज करें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड एनर्जी वाइब्रेटिंग इन टू द यूनिवर्स, मुझ आत्मा से किरणें निकलकर चारों तरफ फैल रही हैं, आई एम रेडिएटिंग पीस इन टू द यूनिवर्स। आज पूरा दिन हर सीन इसी कॉन्शियसनेस और इसी स्थिति में होगा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट दी अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM।

मैं हूँ आपकी अपनी आरजे नीतू। स्वागत है आपके पसंदीदा आध्यात्मिक कार्यक्रम आंतरिक दिव्यता का आह्वान में। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी परिस्थिति को बदलने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन वह फिर भी आपके अनुसार ना बदल पाई हो? क्या कभी किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके भीतर तक परेशान कर गया हो? और क्या कभी आपने स्वयं से पूछा हो, मैं इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सच तो यह है कि हमारे अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारे प्रतिरोध से पैदा होता है। जब हम किसी बात को बार बार मन में दोहराते हैं, जब हम लोगों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार बदलना चाहते हैं, जब हम हर स्थिति के पीछे क्यों और कैसे खोजते रहते हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जीवन को सहज बनाने की एक दिव्य शक्ति हमारे भीतर मौजूद है, वह है स्वीकार करने की शक्ति। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करेंगे, जो मन को स्थिर बनाती है, रिश्तों को मधुर बनाती है और आत्मा को संतोष का अनुभव कराती है। दोस्तों, जीवन को समझने की शुरुआत उसे स्वीकार करने से होती है। आइए सुनते हैं एक सुंदर भक्ति गीत और फिर लौटते हैं आज के विशेष विषय पर।

स्वागत है आपका दोस्तों। अक्सर लोग समझते हैं कि स्वीकार करना मतलब हार मान लेना, लेकिन वास्तव में स्वीकार करना हार नहीं बल्कि समझदारी है। स्वीकार करने का अर्थ है परिस्थिति को वैसा ही देखना जैसा वह इस समय है, उसके बारे में अनावश्यक चिंतन न करना, उसके प्रति नकारात्मक ऊर्जा न बनाना और अपने मन की स्थिरता बनाए रखना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है। यदि हम बार बार सोचते रहें कि वह ऐसा क्यों है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हमारा मन अशांत होता जाएगा। लेकिन यदि हम उसे वैसा स्वीकार कर लें जैसा वह वर्तमान में है, तो हमारी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगने लगेगी। याद रखिए, अस्वीकार मन को उलझाता है, स्वीकार मन को मुक्त करता है और मुक्त मन ही सही निर्णय ले पाता है। जब मन प्रतिरोध छोड़ देता है तब जीवन का बोझ भी हल्का लगने लगता है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत और फिर बढ़ते हैं आगे।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया और देवता परेशान हो गए, तब भगवान कार्तिकेय ने उसका वध किया। भगवान कार्तिकेय के व्यक्तित्व और दिव्य शक्ति के पीछे उनकी माता का प्रेम, पालन पोषण और संस्कारों का बड़ा योगदान था। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में धारण करती हैं, जो मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वीकार करना सिखाता है। एक माँ अपने बच्चे की अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करती है, उसे मार्ग दिखाती है, लेकिन उसके प्रति प्रेम कभी कम नहीं होने देती। दोस्तों, यही स्वीकार करने की शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब हम लोगों को उनकी

वर्तमान स्थिति में स्वीकार करते हैं, तभी हम उन्हें सही दिशा में सहयोग भी दे पाते हैं। ममता और स्वीकार का संगम ही जीवन को सुंदर बनाता है। आइए सुनते हैं माँ की महिमा से जुड़ा एक भक्ति गीत।

दोस्तों, जैसे जैसे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, हमारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं, और जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां स्वीकार अपने आप बढ़ जाता है। अक्सर हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमारी तरह सोचें, हमारी तरह व्यवहार करें और हमारी तरह निर्णय लें। लेकिन हर आत्मा का अपना संस्कार, अपना अनुभव और अपनी यात्रा होती है। जब हम ये समझ जाते हैं तो लोगों के प्रति शिकायतें कम होने लगती हैं, तुलना समाप्त होने लगती है और रिश्तों में सहजता आने लगती है। स्वीकार करना किसी की गलती को सही ठहराना नहीं है, यह केवल इतना है कि हम वास्तविकता को देख रहे हैं और मानसिक संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं। अपेक्षाएं जितनी कम होती हैं, मन उतना ही शांत होता है। आइए सुनते हैं एक सुंदर गरबा गीत।

दोस्तों, जब कोई चुनौती हमारे सामने आती है तब हम अक्सर समस्या के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब क्या होगा। इन प्रश्नों में हमारा बहुत सारा मानसिक समय और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन स्वीकार की शक्ति हमें नई दिशा देती है। वह कहती है, जो हो चुका है उसे स्वीकार करो और जो करना है उस पर ध्यान दो। जब मन शांत होता है तभी समाधान दिखाई देता है। जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय ले पाते हैं। और जब मन स्वीकार की स्थिति में होता है तभी जीवन में संतोष का अनुभव होता है। सच्चा संतोष बाहरी परिस्थिति से नहीं आता, वह भीतर की स्वीकृति से ही आता है। शांत मन ही सही समाधान का मार्ग दिखाता है। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक भक्ति गीत।

0: होता। आज हमने जाना कि स्वीकार करने की शक्ति जीवन की सबसे सुंदर आध्यात्मिक शक्तियों में से एक है। यह हमें परिस्थितियों के बीच स्थिर रहने की कला सिखाती है। यह हमें लोगों को समझने की दृष्टि देती है। यह हमें शिकायतों से समाधान की ओर ले जाती है और अंततः यह हमें आंतरिक संतोष का अनुभव कराती है। आज का आध्यात्मिक होमवर्क, अगले 24 घंटों तक एक अभ्यास कीजिए। जब भी कोई परिस्थिति आपकी अपेक्षा के अनुसार ना हो, अपने मन से केवल एक वाक्य कहिए, मैं इस परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ और समाधान पर ध्यान देता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको परेशान करे, स्वयं से कहिए, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और दिन में कई बार यह संकल्प दोहराइए, स्वीकार मेरी शक्ति है, मेरा मन शांत, स्थिर और संतुष्ट है। मुझे विश्वास है कि ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे नीतू। आप सुन रहे हैं आंतरिक दिव्यता का आह्वान, केवल रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: पड़ोसी, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, सैंडी, पंकज, वेदांत, दृष्टि, उन्नति, आदित्य प्रकाश, आदित्य।
2: आज तो हम सब ने जम के डिस्कशन की।
3: हाँ हाँ, पढ़ाई की क्लास कम और डिबेट की क्लास ज्यादा लग रही थी।
4: ये हमारे स्कूल में शाम को जो एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुई है ना, काफी फायदा है इससे।
5: एक तो हम सबको एक बार फिर से इकट्ठे होने का मौका मिलता है और टीचर के सामने सामने सारा होमवर्क भी हो जाता है।
6: अच्छा है ना, मुझे तो किसी भी काम में कोई अड़चन आए तो कभी की कभी पूछ लेता हूँ।
7: कई बार तो मिस हमें ही आपस में डिस्कशन करके परेशानी का हल ढूंढने को कह देती है।
3: इससे पता है, एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके पता चलते हैं।
2: कई बार तो खुद को ही हैरानी होती है कि हमने किसी बात को उस एंगल से देखा क्यों नहीं।
1: पल में ही सब प्रॉब्लम सोल्व जाती है। ये सिस्टम हर स्कूल में हो जाए तो अच्छा है।
2: पर आज तो मजा ही आ गया, कोई नए सर आए थे।
4: जैसे ही सर ने लेक्चर देना शुरू किया, मैंने डिस्कशन शुरू कर दी।
3: ओए, मैं क्या कहता हूँ, हर बार जब किसी बोरिंग टॉपिक से बचना हो तो डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए।
4: हाँ हाँ, टाइम कैसे बीता पता ही न चला। बात शुरू कैसे हुई थी याद है?
5: बात शुरू हुई थी भारत में व्यापार से, उन्नति से।
6: और पहुँची कहाँ?
8: भारत की विदेश नीति तक।
3: पर अब पता है ना किस दुविधा में पड़ गए हैं?
2: हाँ पता है।
6: सर ने कहा है एक ऐसा रोल प्ले करना है जिसमें हम क्लास में ही एक प्रकार की ग्रुप डिस्कशन करेंगे।
2: हाँ, पत्रकारों की तरह। हाँ, टॉपिक होगा भारत की विदेश नीति।
4: हाँ, उन्होंने कहा है कि दो टीमें बनेंगी और वो अपने अपने नजरिया रखेंगी।
3: चलो अभी टाइम है, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं।
5: पर कैसे, पहले नेट से जानकारी तो इकट्ठी करें।
6: वो तो कर ही लेंगे, मैं तो ये सोचने को कह रहा हूँ कि कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन मिलाकर एक प्रोग्राम के रूप में देंगे, मतलब डिस्कशन कैसे दिखाएंगे, कौन क्या

0: आम है यह साफ ताजे पानी में रह सकती है और अब इसकी संख्या भी बहुत कम हो गई है।
1: पर असली थैंक्स तो उन अंकल का है जिन्होंने अपना कंप्यूटर देकर तुम्हें क्लास में सब दिखाने का मौका दिया।
0: हाँ ये तो है, ये अंकल सबकी मदद करते, सब इनका बहुत आदर करते हैं।
2: और वो देखो दीदी भी आ रही है।
3: क्या बातें चल रही हैं?
0: पूछो मत दीदी।
1: दीदी हमें न कल एक रोल प्ले।
3: मैं बताती हूँ दीदी।
4: नहीं पता है हमारे सन ने हमें क्या काम दिया है।
2: पहले आज क्या दिखाया सबको। ओहो आगे क्यों आ रहे हो?
5: मैं आ रहा हूँ, तुम पहले आगे आए थे। दीदी देखो मैं बताता हूँ।
3: दीदी मैं।
6: ठहरो ठहरो, एक एक करके आओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो।
2: दीदी हमें अपनी शाम की एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमारे देश की विदेश नीति पर चर्चा करनी है, जरा मदद कर दो, इसमें क्या क्या आता है।
1: देखो मैं बताता हूँ, जितना मुझे पता है आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति तो इस बात पर केंद्रित है कि अपने सब पड़ोसियों से आपसी संबंध किस प्रकार सुधारे जाए, है ना दीदी?
4: अभी पता चल जाएगा, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है तुम्हें?
5: चलो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास आजकल ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए।
2: रेडियो,
3: टेलीविजन,
0: अखबारें और
7: दीदी।
1: और सबसे आगे इंटरनेट।
3: क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम लोग, विदेशी हमारे पड़ोसी ही तो होते हैं। देश के लेवल की बात करने से पहले ये तो बताओ कि तुम अपने घर के पास रहने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करते हो।
2: बहुत अच्छा,
5: अच्छा।
1: हाँ हम हमेशा उनकी मदद करते हैं।
2: मम्मी जब भी कुछ अच्छा बनाती हैं उनके घर जरूर भेजती हैं।
8: एक बार मेरा इम्तिहान था, अगले दिन लाइट ही चली गई, हमारा इन्वर्टर भी खराब था, तो हमारे पड़ोसियों ने मुझे अपने घर आकर पढ़ने को कहा था। सबने एक कमरे को मेरे लिए खाली कर दिया था, कुछ छोटी सी जगह में अपने घर के काम किए थे।
1: कितने अच्छे हैं वो।
8: हाँ मम्मी कहती है मुश्किल पड़ने पर रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो पड़ोसी ही काम आएंगे।
4: बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी मम्मी। एक बार जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी और पापा टूर पर थे, तो पास वाले अंकल आंटी ही मेरी मम्मी के साथ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे।
3: यानी हमारे पड़ोसी एक प्रकार से हमारा परिवार ही तो हुए।
8: बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि उनसे हमारा दोस्ती का नाता होता है जो सबसे मजेदार होता है।
1: उस दिन हमारे ब्लॉक के सब परिवार पिकनिक मनाने गए, बहुत मजा आया।
2: सबसे ज्यादा मजा तो तरह तरह के खाने खाने में आता है, सबका एक ही चीज को बनाने का तरीका फर्क होता है।
3: यानी अनेकता में एकता। हाँ हाँ पर ये तो एक्टिव तरीके हुए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के। अब ये बताओ हम और किन तरीकों से उनकी मदद कर सकते हैं।
2: मतलब
3: क्या ना करके उनकी मदद कर सकते हैं?
2: मैं बताऊँ, ज्यादा ऊंचा म्यूजिक ना बजाकर।
3: हाँ ये तो ठीक है, हो सकता है कोई पड़ोस में बीमार हो या किसी का इम्तिहान हो और उन्हें हमारे म्यूजिक से परेशानी हो।
5: एक और बात, इससे नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा।
3: और बताओ,
8: अपने घर के बाहर साफ सफाई रखकर।
3: अगर सब ऐसे ही सोचें तो मोहल्ले भी साफ हो जाएंगे और सब पड़ोसी भी खुश रहेंगे।
1: जो भी सार्वजनिक साधन है जैसे पार्क या बस स्टैंड या पीने के पानी का नल या लाइब्रेरी या और कोई सुविधा, सबको उसका ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, ये समझ कर कि औरों को भी उसका प्रयोग करना है।
4: दीदी बस अब पड़ोसियों की बहुत बातें हो गई, आप तो इधर आ जाओ बस, आज तो हम सब अच्छे फंसे हुए हैं।
5: हाँ घर के पास के पड़ोसियों की बात बाद में करेंगे, पहले देश के पड़ोसियों की बात बताओ, बहुत काम है। और हमारे पास है ये शाम भर का टाइम और ये कंप्यूटर लैपटॉप।
3: फिर क्या प्रॉब्लम है, चलो कोई भी काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कोई भी रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, शुरू कहाँ से होता है?
7: पहले कदम से।
3: तो चलो लेते हैं हम सब अपना पहला कदम। हाँ साथ के साथ नोट्स भी तैयार कर लेते हैं, फिर रोल फिक्स कर लेंगे बाद में।
1: काम इतना ज्यादा है कि कदम जैसे रुक से रहे हैं।
8: तो आओ मिलके गाना गाते हैं।

0: बिल्कुल सही, पर दीदी पहले आप ही शुरू करो ना, कुछ बताओ तो सही किस दिशा में चलें।
1: देखो, अच्छे संबंधों की बात की जाए तो एक सशक्त विदेशी नीति अब हमारे देश का ध्येय है।
2: मतलब गोल है?
1: हाँ, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश का ध्यान व्यापार पर अधिक केंद्रित होना चाहिए, बजाय राजनीतिक या भूमि संबंधित प्रस्तावों के।
2: तभी तो क्लास में टॉपिक व्यापार से विदेश पॉलिसी तक पहुंच गया।
1: हमारे प्रधानमंत्री की विदेश पॉलिसी के मुख्य बिंदु हैं पड़ोसियों से अच्छे संबंध, जानते हो क्यों?
0: जिससे सब देशों में शांति और अमन हो।
2: और ये शांति और अमन उनकी उन्नति के कार्यक्रम में भी सहायक होगी।
3: दीदी, पापा बता रहे थे सभी महत्वपूर्ण विश्व में नेताओं ने हमारे देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
1: हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, पर वो इसलिए क्योंकि भारत में उन्हें व्यापार की और अच्छे बाजारों की झलक दिखी है।
0: हाँ, वो तो है।
4: अमेरिका के जॉन कैरी ने तो भारत आने से पहले ही भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व की बात करते हुए हमारे प्रधानमंत्री के स्लोगन सबका साथ सबका विकास का प्रयोग किया।
5: और दूसरी तरफ अगर भारत और जापान के संबंध की बात की जाए तो ये हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं।
0: जापान की संस्कृति पर भारत में यानी बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।
6: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: buy East हो या West,
1: India is the best।
2: चलो चलो, बहुत सी जानकारी इकट्ठी करनी है और रोल बांटने हैं।
3: कल की तैयारी, अभी तो बहुत काम है। अब देखते हैं सर हमें क्या क्या कमेंट्स देते हैं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और हमेशा की तरह बाल संसार इस कार्यक्रम में हम लोग पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर आपको बताएं तो हम लोग पिछली बार विशेष बच्चों की मनोभावनाओं को कैसे समझा जाए इस पर बातें चल रही थी। आज भावनात्मक अभिव्यक्ति में सहसहमति की स्थिति कैसे बना रखें, बच्चों के स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना, इस विधि को समझने की कोशिश करेंगे आज। और हमारे आज के विशेष मेहमान जो हमें विशेष बाल मनोवैज्ञानिक है, बिहेवियरल साइंटिस्ट है, तो उनसे हम लोग बातें करते हैं और वो अपनी मनोस्थिति के साथ साथ बच्चों के बाल मन की बातें हमें सुना रहे हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय भाई जी।
0: जी कैसे हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी आप?
1: बहुत अच्छे से, बहुत आनंद में, ब्लेसिंग सब
0: जी। तो अभी हम लोग आज कोशिश करेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य भावनात्मक हेल्दी इमोशंस के विकास के लिए क्या करना है, किस तरह से इस पे काम करना है।
1: बहुत सामूहिक प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि इमोशंस को लेके पेरेंट्स कई बार काफी सतर्क भी होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको हमेशा ध्यान में रखा जाए और खासकर उस स्थिति में जब वो बहुत लॉजिकल होते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ में उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी इमोशंस हैं जो कहीं न कहीं हाइड हो जा रही हैं, तो वो भावनात्मक अभिव्यक्ति कई बार करने के पहले सोचते हैं कि जो मैं एक्सप्रेशन करने का प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे मेरे माता पिता कहीं आहत तो नहीं होंगे। माने वहां वो स्वयं के साथ साथ में अपने गार्जियंस का प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं या टीचर से कोई इमोशंस को शेयर करते हैं, तो ये सब बातों का वो ध्यान रखते हैं। लेकिन बड़ों को कई बार लगता है कि जो इमोशनल बैकग्राउंड है इनका वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि वो बालमन है। तो क्या हम बड़े उस स्थिति में स्वयं को स्थित रख पाते हैं कि वो जो मनोभाव उनका आ रहा है उसको हम केयर भी कर लें और भले ही उस पर जो हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया है वो त्वरित फॉर्म में नहीं हो, कुछ समय के बाद हो जाए, लेकिन मनोभावों को बहुत एकाग्रचित होकर अगर सुन लिया जाए तो बच्चों को एक मन में फीलिंग होती है कि हमें बड़ों ने सुना है, क्योंकि वो इस अभिव्यक्ति के पूर्व अपने माता पिता या शिक्षक गणों या अपने बड़ों का मूड भी देखते हैं। कई बार वो देखते हैं कि सुबह से शाम की दिनचर्या में माता पिता थके हुए हैं या ऑफिस के कार्यों में वो बिजी हैं, तो वो तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं और वो सोचते हैं कि जब वो बहुत शांति में हैं और मेरे से कहीं संवाद कर रहे हैं, भले ही वो होमवर्क के विषय में हो, आज की क्लास में जो कुछ भी हुआ उसका फीडबैक को ले रहे हों, तो उसी समय बच्चे बड़ी सहजता से अपने मनोभावों को शेयर करते हैं। और कई बार मैंने देखा कि वो मनोभाव छुपा लेते हैं और एक परिवार में मेरा जाना हुआ तो वहां पर उनके बच्चों के गार्जियन ने बताया कि हमारे बच्चे या मेरा बच्चा जो है वो डायरेक्ट मेरे से नहीं कहता है, तो वो उन्हीं के ड्राइंग रूम में एक जगह पर अपनी कुछ जो विशेष होती हैं, उनकी इच्छा होती है, डिजायर होती है, कई बार उनको कुछ स्थूल चीजें पढ़ाई लिखाई के संबंध में चाहिए होती हैं, लेटेस्ट गजट हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो अपनी अपेक्षाओं को धीरे से वॉल पे लिख देते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये देखिए मेरे बेटे ने ये लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट नहीं कहता है, या इसको जो भी हमारी परिस्थितियों का अंदाजा होगा उसके हिसाब से हम हर्ट नहीं हो, और ये भी लिख देता है कि जब भी समय मिले या परिस्थिति अनुकूल हो तो ये हमें हमारे मनोभावों को पूरा करने का प्रयास।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा, जैसे कि हम सभी लोग बातें कर रहे थे, स्वीकृति और समर्थन का माहौल बच्चों को कैसे बना के दे, तो इसमें आता है कि खुला संवाद की बात, बच्चों के साथ उनकी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो अजय जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, आप क्या समझते हैं, इसको कैसे हम लोग समझे और इसके ऊपर कैसे काम करें?
1: बहुत अच्छी बात है। और बाल संसार का ये पूरा आयोजन निश्चित तौर पर एक बड़ी दृष्टि और दृष्टिकोण को निर्मित करने में मददगार साबित होगा। इसी आशा को लेते हुए जब आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा होता हूं, तो उस समय बच्चों के जीवन के कई पक्ष मेरी आंखों के सामने एक रील की तरह घूम जाते हैं। और कई बार उनकी काउंसलिंग करते समय इस प्रकार की मनस्थितियां क्रिएट होती हैं कि कैसे बच्चों की मदद की जाए। बाह्य तौर पर या आंतरिक तौर पर हम लोगों को लगता है कि कुछ उपलब्ध करा देना उनके लिए एक बहुत बड़ी संतुष्टि की स्थिति होगी, जबकि वास्तविकता ये है कि हम भले ही आज स्वयं की बुद्धिमत्ता की बात करते हैं या सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के मन में जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत होती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर बातचीत होती है, तो उस स्थिति में बच्चों को लगता है कि हम जो कुछ भी व्यक्त कर रहे हैं उस अभिव्यक्ति के प्रति जो हमारा कन्वर्सेशन बड़ों के साथ हो रहा है उसमें हमें क्या बड़े संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा मूल्य है। कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात की गई है, संतोषम परमम सुखम। तो हर बार बच्चों को अपने बड़ों से उनकी सहमति या मदद की अपेक्षाओं के साथ

0: में एक संतुष्टि भरा माहौल अगर प्रदान कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि जिस चीज की आप अपेक्षा रख रहे हैं, भले ही वो वैचारिक संवाद की हो, भावनात्मक संवाद की हो, हम इन तमाम स्थितियों के बीच में एक साथ कम से कम प्रतिदिन एक अवसर प्रदान जरूर करेंगे। भले ही वो बच्चों के साथ आप कितने भी व्यस्त हों, सुबह अगर आप नाश्ता नहीं कर पा रहे हैं, दिन में भोजन नहीं कर पा रहे हैं, रात को अगर आप भोजन कर रहे हैं, तो तीनों ही स्थितियों में एक समय, भले ही वो रात्रिकालीन बेला हो, उस समय बच्चों के साथ में भोजन अगर आप करते हैं और उनको ये मौका देते हैं कि कोई बात वो अपने बड़ों के बीच में रख सकते हैं, तो वहां भी एक भावनात्मक संतुष्टि उत्पन्न होगी और यही भावनात्मक संतुष्टि बच्चों के जो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात हम बाल मनोविज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं उसमें मदद करेगी। क्योंकि जहां बच्चा हेजिटेट कर रहा है, संकोच कर रहा है अपने बड़ों से बात करने में, वो ओपननेस क्रिएट होगी और वो संवाद अपने बड़ों से वहां कायम भी कर पाएगा और भविष्य में ये जो संवाद डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो एक निडरता क्रिएट हुई, तो ये एक बौद्धिक कौशल भी बच्चे के साथ में विकसित हो सकेगा अगर हम प्रतिदिन उस बच्चे को अपने एक बाल संसार को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी लग रही है, जहां पर हम भावनात्मक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं और इसमें हमने दो पहलुओं को समझने की कोशिश की, जहां पर खुला संवाद यानी ओपन डायलॉग्स हो और दूसरा हमें बच्चों की हर चीज को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में हमें स्वीकार करना है और एक बार बच्चा हमारे अनुकूल चीजों को स्वीकार करते हुए हमारे साथ दोस्ती हो जाए तो फिर हम बच्चे को जो है कुछ चीजें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ये चीजें करने में।
0: जी,
1: तो आइए सहानुभूति को कैसे समझें हम लोग, क्या मैं अपने अंदर सहानुभूति लाऊं या बच्चों के अंदर सहानुभूति को देखना है या कैसे, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, एक्चुअली में उसको ठीक से समझने में भी मुश्किल लगता है। तो आप बच्चों के इस मनोविज्ञान को समझने में सहानुभूति कहां, किसमें, कब देखना है?
0: देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सहानुभूतिपूर्ण बिहेव की बात करते हैं तो आप देखें कि हमारे वातावरण में, अर्थात बड़े जब अपने कार्यालयीन क्षेत्र में या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में जब कार्य कर रहे होते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि वहां भी चाइल्ड इमोशंस काम करती है, अर्थात बड़ों के अंदर जो बाल मनोविज्ञान है वो निरंतर कार्य करता है और वो भी चाहते हैं कि जिन अपेक्षाओं के साथ में या जिस अनुकूलता की जो उन्होंने कामना कर रखी है अपने जीवन में, तो दिन भर की गतिविधियों में उन्हें भी जब स्नेह, प्यार, दया, करुणा, सहानुभूति, ये मानवीय मूल्य हैं, चेतना के को चैतन्य बनाने में मददगार होते हैं और इन मानवीय मूल्यों के साथ जब आपका दिन भर गुजरता है तो आपको भी ये फीलिंग होती है कि यही सारे मानवीय मूल्य हमारे बच्चों की भी उनकी मनोस्थिति को लेकर अगर हम थोड़ा सा कार्य करने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा पारिवारिक दृष्टि और दृष्टिकोण है वो सकारात्मक बनेगा और हम सार्थकता के परिवेश में गतिशील हो पाएंगे। मैं सार्थकता इसलिए कह रहा हूं कि कई बार चीजें पॉजिटिव हम कर देते हैं या हो जाती हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है, उस परिणाम तक जब हम पहुंचने की बात करते हैं तो उसमें एक साथ पूरी की पूरी स्थिति टीम की हो जाती है, अर्थात टीम वर्क की बात हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम छोटी सी बात रखें कि अगर परिवार ने कुछ तय किया है कि ये सारा का सारा हम एक हफ्ते के अंदर मैनेज कर लेंगे या जो भावनाएं हैं उसको एक साकार रूप दे देंगे, तो उसके लिए अगर हम सप्ताह में एक दिन अर्थात रविवार का दिन चयन कर सकते हैं जहां आपकी भी छुट्टी है और बच्चों को लेके आप किसी पार्क में या किसी मंदिर के प्रांगण में जहां एनर्जी का जो लेवल है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर रहता है, और उस स्थिति में आप देखें तो वहां बच्चे अपनी भावनाओं को शेयर भी कर सकते हैं, समय भी आपको मिलेगा और एक नवीन वातावरण के साथ में उनका संवाद हो सकेगा, प्रकृति से जुड़ पाएंगे और वहां समाधान की क्रियाएं यथावत रूप से, विधिवत रूप से संपन्न हो पाएंगी। जी
1: जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें ठीक से समझ में आ रही हैं और बहुत अच्छा आपने सहानुभूति के बारे में बताया। अब सकारात्मक भावनाओं को कैसे हम लोग प्रोत्साहित करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छी बात है, जीवन की प्रक्रिया में सकारात्मकता एक बहुत बड़ा मूल्य है और इसकी ओर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय करने होंगे, कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना होगा। उदाहरण के लिए कई बार आप भी देखते हैं कि बहुत सारी स्थितियों में आप बहुत व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए, हालांकि सुनते समय बड़ा अजीब लगेगा और कई बार हम बड़ों से संवाद करते हैं और बड़े बोलते हैं कि अभी इतना समय कई घंटे हमने आपके साथ निकाले हैं और सुबह से शाम तक की चर्चा की है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम लोग बड़ों मिलके और बहुत सारी स्थितियों में बच्चों की मदद लें या बच्चों की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करें? तो यहां पर मैंने उनसे कहता हूं कि आप अगर एक डायरी मेंटेन करते हैं और उस डेट और उस ईयर की डायरी है और उस स्थिति में बैठ के उनसे बातचीत करते हैं कि हम लोगों ने ये जो जीवन जिया है, भले ही वो माता पिता के रूप में हो, तो इसमें बेटा आपके हिसाब से आज के रेफरेंस में क्या चेंजेस करना चाहिए। तो जब पार्टिसिपेटिव मोड में आप बात करते हैं, सहभागिता आप दर्ज कराने की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बच्चे के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का लेवल है, परसेप्शन का लेवल है और वो चीजों को फैमिली के माहौल से, सकारात्मकता से कैसे समझता है, और जब वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन के लिए कुछ उपाय वहां सजेस्ट करने का प्रयास बच्चे करते हैं और उनको आपने नोट डाउन कर लिया, तो वहां पर उनको एक बड़ा मनोबल मिलता है। और ये नहीं है कि आपने उनको जन्म दिया है तो वो छोटे रहें या वो बड़े नहीं बने, हम सब चाहते हैं, जैसे मां बच्चे को गोद में ले लेती है, पिता कंधे पर बैठा लेते हैं और उद्देश्य क्या रहता है कि मेरे से भी उच्चता ये जीवन में ग्रहण करें। तो ऐसी स्थिति में जब अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप बच्चों की सहभागिता लेते हैं, उनके कार्यप्रणाली से उनके अनुभवों को भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को विकसित कर रहे हैं तो जो कुछ भी विनियोजन किया गया है, जो भी समय या धन और हम एक लंबा काल उनके साथ गुजार रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है वो भी आपको देखने में लगेगा कि ये जो बच्चे हम आज हमें सजेस्ट कर रहे हैं, ये बातें कई बार हमारे संज्ञान में नहीं होंगी और एक नया चिंतन वहां से शुरू होगा कि बच्चों के मन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये एक नई मूल्य के साथ में गतिशीलता पैदा होगी और वहां वो बच्चा समझ पाएगा कि जीवन में सकारात्मकता का क्या महत्व है। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे बच्चों को और सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करें, इस पर आपने बताया। अब कई बार चीजें जो है हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ कुछ हमारी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में हमें टाइम लगता है, तो इसके लिए हमें किसकी मदद और कैसे लें?
0: कई बार हमें लगेगा भाई जी कि हमारे सामने बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उदाहरण के लिए माता पिता चाहते हैं कि बच्चे केवल स्टडी में कंटिन्यू लगे रहें, वो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करें, या अचानक कहा गया कि स्कूल या कॉलेज में कि नहीं अभी आपको फिल्म देखने जाना है और वो ग्रुप में आपको लेके जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को हमने एकांगी बना दिया, तो कई बार मैं देखता हूं कि बच्चा बड़ी सिटी में पढ़ रहा है या बड़ी सिटी के आसपास है, प्रतिदिन वो जा रहा है, उसको कुछ फिजिकल भी प्रॉब्लम आई है, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को वहां मोटिवेट किया है, तैयार किया है, और वो उस वातावरण में जाने के बाद में अचानक वहां पर ये बात आती है इंस्टीट्यूट की ओर से कि आज हम कुछ नई जगह विजिट करेंगे, तो वहां पर हमें ऐसा लगता है एक संदेह या एक भय हमारे अंदर काम करता है कि मेरा बच्चा उस वातावरण में जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई आपका बच्चा घर से बाहर 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जा रहा है, आ रहा है, प्रतिदिन आप उसको भौतिक रूप से या अभौतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है या मैं उस प्लेइंग मोड में नहीं जाऊंगा, पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा या सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तो अगर हमने शुरू से उसको डिफाइन कर दिया कि ये पाप है या पुण्य है, तो उसके सामने एक बैरियर क्रिएट होगा। हमें बताना होगा कि जिस व्यवस्था के तहत में, इंस्टीट्यूशन के तहत में आप जा रहे हो, तो सारी पूरा स्टाफ जाएगा, टीचिंग स्टाफ जाएगा, सारे स्टूडेंट जाएंगे और वो वहां पर जो भी एक्टिविटीज करेंगे, भले ही वो कुछ गेम्स प्ले कर रहे हो, भले ही संगीत का कोई माहौल हो, लेकिन उस समय उस वातावरण के माध्यम से आपको कुछ सीखना होगा। और वो वातावरण में जरूरी नहीं है कि आप सहभागिता दर्ज करें, ये सारे बच्चे वहां सहभागी नहीं होंगे, लेकिन बहुत आनंद का उत्सव है तो आप ताली बजाएंगे। तो क्या ताली बजाना या आपके द्वारा मुस्कुराना या खिलखिला के हंस लेना, क्या ये व्यक्तित्व विकास का हिस्सा नहीं है? अगर आप प्रतिदिन इंस्टीट्यूट से केवल एकांगी होकर और पढ़कर घर पर आ जाते हैं और इसके बाद अचानक 5 साल के बाद में, 3 साल के बाद में संगठन में काम करने का मौका मिलेगा, तो वहां जो आपके मन में डूज और डोंट डूज है, ये करना है या नहीं करना है, इसका द्वंद्व तो वहां खत्म हो जाएगा ना। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो केवल हम जब समूह में या शैक्षणिक गतिविधियों

0: के अलग अलग स्वरूप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर केवल एक पक्ष नहीं बल्कि बहुपक्षीय आयाम से बातें होती हैं और वहां बच्चों को लर्निंग इश्यूज प्रैक्टिकल डायमेंशन से मिलते हैं, क्योंकि वो केवल स्टोरी नहीं है बल्कि वो वहां स्टोरी जनरेट हो रही है और उस स्टोरी के लाइव स्वरूप में वो बच्चा सहभागी बन रहा है और वहां लर्निंग इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में जब वो चीजों को समझता है या सीखता है तो उसके मन में नकारात्मकता से लड़ने की ताकत आती है और सकारात्मकता के पद पर चलने की उसको अंदर से हिम्मत मिलती है और वो हिम्मत बाई इंजेक्शन नहीं बल्कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा सामूहिक गतिविधियों के द्वारा संपन्न होती है। ऐसी स्थिति में माता या परिवार या आसपास का जो माहौल है सामाजिक, उनका दायित्व बनता है कि बच्चे को हम संपूर्ण रूप से विकसित होने के आयाम में सम्मिलित भी करें, उन्हें इनवाइट भी करें और प्रोत्साहित भी करें, जिससे कि सीखने की अलग अलग विधाओं में बच्चा जा सके और अपने आप को वो कहीं न कहीं परफेक्शन की स्थिति में या पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए स्वयं को तत्पर कर सके, तैयार कर सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बातें आपने बता दिया और मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है। बच्चों के भावनात्मक जो स्वरूप को है उसे कैसे हम लोग ठीक से समझे और उसके ऊपर काम करें और सहज सहमति को कैसे हम लोग अपने अंदर निर्माण करें, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताया है और मुझे लगता है कि सकारात्मक नकारात्मक शायद बच्चों को इतना बड़ा जो पहलू है वो समझने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो भी लगता है बच्चा जैसा भी है सकारात्मक है या नकारात्मक है उसे करने दीजिए और फिर बाद में उसको सीखने भी दीजिए। हम लोग तुरंत ही उसको अगर गाइड करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो सीख है खुद की वो शायद रुक सकती है,
0: स्वतंत्रता वहां छीन जाएगी,
1: वहां उसकी छीन जाएगी, इसीलिए हमें थोड़ा सा आजादी दें और अगर आप करना चाहें तो उसको ऐसा माहौल क्रिएट करके दे सकते हैं, वो आपके हाथ में।
0: जी बिल्कुल सहमत हूं।
1: वो चीजें अगर आप घर के अंदर आपका व्यवहार, आप बातें कैसे करते हैं, आपका स्टाइल, बच्चा जरूर आपसे सीखेगा, तो इसीलिए आप अगर अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आप उस माहौल में रहेंगे और बच्चा उसी माहौल से वो सारी चीजें सीखेंगे। एक हाथ 1% हो सकता है कि वो आपके हिसाब किताब के लिए आया होगा, तो वहां आप कितना भी अच्छा माहौल देगा तो वो उदम ही मचाएगा, तो वो चीजें अलग बात है। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए हम ये एपिसोड नहीं कर रहे हैं, हम जनरल एपिसोड कर रहे हैं, तो ऐसा होता भी है, तो वहां पर डॉक्टर अजय शुक्ला जैसे काउंसलर्स जो है आपको हेल्प करेंगे, तो आप डॉक्टर अजय शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं इस विषय को लेकर और उनसे बात भी कर सकते हैं। कभी आपको लग रहा है कि कहीं बार हम लोग सब कुछ करने के बावजूद भी वो चीजें नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी सिचुएशन होता है, कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत बार इलाज करते हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखाते हैं लेकिन वो हम ठीक ही नहीं होते हैं, और हो सकता है कि बाई चांस आप साल भर के बाद जो है वो आपका हिसाब किताब पूरा हो गया और आपका जो दर्द है वो छोटे से किसी एक्सरसाइज से ठीक हो गया, आप योग कर लिया सब कुछ ठीक हो गया, साल भर से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था।
0: जी।
1: तो ये भी क्या है कि साल भर आपका अकाउंट था वो अकाउंट पूरा हुआ और जब आपने योग सीखा तो फिर वो सेटलमेंट हो गया, तो इस तरह की भी चीजें आती हैं, तो हमें ये सारी चीजों को ओवरऑल होलिस्टिक रूप से सोचना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि भाई ये चीजें क्यों नहीं हो रहा है, वहां पर अटक नहीं जाना है, अलग अलग पहलुओं को देखना है और ट्रायल एंड एरर जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे स्वीकार करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एंड डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वो हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी बातें जो है बाल संसार के बारे में बताते रहते हैं, और मैं चाहूंगा डॉक्टर अजय शुक्ला जी आपका नंबर भी दीजिए अगर हमारे कोई श्रोता आपसे जुड़ना चाहे तो बिल्कुल आपसे जुड़े।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 9131099097
1: एक बार फिर से बोलिए
0: 9131099097
1: तो ये डॉक्टर अजय शुक्ला जी का नंबर है, आशा करूंगा आप इसे रिपीट करके भी सुन सकते हैं, आराम से लिख लीजिए और फिर आपको लग रहा है कि डॉक्टर अजय जी से बात करना है तो बिल्कुल बात कीजिएगा, आप मैसेज करिए, मैसेज के बाद फिर आप कॉल करिए। तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, बाल संसार में फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें लेकर आपसे जुड़ेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कोरियर की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
1: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: भारत के पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती गोवा क्षेत्र का परिभ्रमण करने के बाद स्वामी जी क्रमशः मैसूर राज्य के अंतर्गत बेंगलोर आए। वहां कुछ दिन उन्होंने म्युनिसिपैलिटी यानी नगरपालिका के मेडिकल ऑफिसर श्री पी पल्पू के घर में निवास किया था। ये केरल के एल्वा नामक समाज के थे, जिसके कारण पहले स्वामी जी का वहां के भद्र समाज में समादर नहीं हुआ, किंतु जिस प्रकार आग अधिक देर तक राख से ढकी नहीं रहती, ईंधन मिलते ही पूरी शक्ति के साथ धधक उठती है, उसी प्रकार स्वामी जी की प्रतिभा भी कहीं भी दीर्घकाल तक लोगों की दृष्टि से ओझल नहीं रह पाती थी। जनसाधारण से वार्तालाप और जान पहचान होते ही वो प्रतिभा स्वमहिमा में प्रकट हो जाती। अतएव भारत में अन्यत्र जैसा देखा गया था, बंगलौर में भी वैसा ही हुआ। शीघ्र ही उनकी ख्याति फैलकर राज्य के दीवान श्री के शेषाद्री अय्यर के कानों में पड़ी।
1: यथा समय स्वामी जी से साक्षात्कार होने के कुछ ही मिनटों में अय्यर महोदय के हृदय में एक अपरिचित अज्ञात सन्यासी के उज्ज्वल भविष्य का चित्र दिखने लगा और उन्होंने सोचा कि इस सन्यासी में ऐसा चित्ताकर्षक व्यक्तित्व तथा दिव्य शक्ति है जो भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ जाएगी।
0: अय्यर महोदय ने

0: सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, वे निश्चय ही धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर संसार में अवतरित हुए हैं, नहीं तो इस प्रकार की कम उम्र में ही कहां से उनमें इतनी ज्ञान राशि और अंतर्दृष्टि आई।
1: मैसूर के महाराजा संभवतः इन युवक आचार्य को पाकर आनंदित और उपकृत होंगे, ये सोचकर सर शेषाद्री अय्यर ने उन्हें मैसूर ले जाकर महाराजा से परिचय करा देना चाहा। तरुण सन्यासी के गेरुआ वस्त्र पहने रहने पर भी उनकी आकृति और चलने की भंगिमा में एक ऐसी सरलता और प्रतिभा की ज्योति विराज रही थी कि महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार के सभागार में उनके प्रवेश करते ही महाराजा का मन खुशी से भर उठा। फिर स्वामी जी के विचारों की नवीनता, व्यक्तित्व का अपूर्व आकर्षण, पांडित्य की गहराई एवं धर्म विषयक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि ने महाराजा के हृदय को जीत लिया। तब से स्वामी जी राजकीय अतिथि हो गए। इसके पश्चात महाराजा से उनकी अक्सर भेंट होती और लंबी चर्चाएं होती। महाराजा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार पूछा करते।
2: एक दिन महाराजा चामराजेंद्र वडियार ने अपने सभासदों की उपस्थिति में ही स्वामी जी से पूछा,
3: स्वामी जी मेरे दरबारियों के बारे में आपका क्या मत है?
4: मेरे ख्याल से महाराज आपका हृदय तो बहुत सरल और साफ है, परंतु खेद की बात है कि आप हमेशा अपने दरबारियों से घिरे रहते हैं। दरबारी प्रायः सर्वत्र ही चापलूस हुआ करते हैं।
3: नहीं नहीं, कम से कम मेरा दीवान तो ऐसा आदमी नहीं है, वह बुद्धिमान और ईमानदार है।
4: परंतु दीवान का तो यही काम है ना कि राजा का धन लूटकर अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि यानी एजेंट को देना।
1: राजा ने तुरंत विषय बदल दिया और कुछ देर बाद स्वामी जी को दूसरे कमरे में ले जाकर बोले,
3: देखिए स्वामी जी, अत्यधिक साफ बातें हमेशा अच्छी नहीं होती। आपने मेरे दरबारियों के सामने जैसी बातें कही, आगे भी वैसी बातें बोलने पर मुझे डर है कि कोई आपको जहर न दे बैठे।
4: आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या आप सोचते हैं कि एक सच्चा सन्यासी केवल प्राणों के डर से सत्य बोलने में हिचकेगा? मान लीजिए आप ही के पुत्र आपके बारे में मेरा मत जानना चाहें, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं आपके काल्पनिक गुणों का वर्णन करूंगा? क्या मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं।
2: किंतु कितने प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वामी जी मैसूर के राजा के परोक्ष उनके संबंध में बोला करते थे। स्वामी जी का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी का दोष देखने पर उसके सामने ही उसके लिए भर्त्सना किया करते थे, किंतु उसकी पीठ पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते। उसके दोष की बात उस समय उनके मन में आती ही नहीं थी।
1: मैसूर राज्य की राजसभा में एक दिन ऑस्ट्रिया देशवासी एक प्रसिद्ध संगीत विशारद से उनकी भेंट हुई। उनके सामने स्वामी जी ने जिस प्रकार की जानकारी दी, उससे उनके पाश्चात्य संगीत ज्ञान का परिचय पाकर सब दंग रह गए। एक दिन राजमहल के विद्युत इंजीनियर से स्वामी जी की भेंट हुई। चर्चा के क्रम में बिजली के विषय में बात आई। तब देखा गया कि स्वामी जी इस विषय में भी पारंगत थे। मैसूर में ही एक दिन स्वामी जी के उदार सार्वभौमिक धर्म भाव और अनुभूति की गहनता को लक्ष्य कर श्री अब्दुल रहमान नामक राजदरबार के एक सभासद आए। कुरान की कुछ बातें स्वामी जी के समक्ष प्रस्तुत कर इनके संबंध में उनका विचार जानने और अपना संदेह दूर करने की बात उन्होंने कही। स्वामी जी पहले से ही कुरान से घनिष्ठ रूप से परिचित थे, अतएव उक्त सज्जन की समस्या का उन्होंने ऐसा सुंदर समाधान कर दिया कि वे अपने को कृतार्थ समझने लगे। एक बार राज्यसभा में विद्वान पंडितों की सभा आयोजित हुई, विषय था वेदांत। पंडितों के बोल लेने के बाद सभी ने स्वामी जी से कुछ कहने को कहा।
2: स्वामी जी खड़े होकर सुललित संस्कृत में पहले सूत्र और बाद में विस्तार से अपना वक्तव्य देने लगे। पुस्तकों का सहारा उन्होंने नहीं लिया। उनकी सहायक थी उनकी वाग्मिता, ज्ञान बाहुलता, सरलता और स्वानुभूति।
1: उन्होंने वेदांत को मात्र पंडितों के विचार जगत रूप में न ग्रहण कर मानव जीवन में उसकी उपयोगिता दिखाई। विभिन्न धर्मों के बीच वेदांत मत के सहारे किस प्रकार शांति और समभाव स्थापित हो सकते हैं, इसे बताना भी वे नहीं भूले। सभा में उपस्थित सब लोग उनके विचारों की मौलिकता और दृष्टि का विस्तार देखकर चकित हुए और भूरी भूरी प्रशंसा की। स्वामी जी से परम प्रसन्न होकर दीवान बहादुर ने एक दिन उनसे कोई एक उपहार ग्रहण करने का अनुरोध किया और एक सचिव यानी सेक्रेटरी को बुलाकर कह दिया कि वे स्वामी जी को लेकर राज्य की सर्वोत्कृष्ट दुकान में जाएं और स्वामी जी जो चाहें वही

0: दें। दीवान बहादुर के सम्मान की रक्षा करने के लिए स्वामी जी उस सेक्रेटरी के साथ चले। सेक्रेटरी ने अपने पास एक चेकबुक रख लिया ताकि वस्तुओं की कीमत के अनुसार जितने पैसे हों आसानी से दिए जा सकें। शिशु सुलभ स्वभाव वाले स्वामी जी आनंद पूर्वक इधर उधर देखने निकल पड़े। अनेक अच्छी अच्छी वस्तुओं की प्रशंसा भी की किंतु कुछ भी लिया नहीं। अंत में थक कर विदा होते समय उन्होंने सेक्रेटरी से कहा,
1: मित्र, यदि मेरी पसंद के लायक कोई सामान ले जाने से ही दीवान जी प्रसन्न हो तो एक काम कीजिए, यहाँ का एक सबसे बढ़िया सिगार मुझे खरीद कर ला दीजिए।
0: सेक्रेटरी जी अवाक हो गए किंतु उन्होंने आज्ञा का पालन किया और स्वामी जी ने निर्विकार चित्त से बाहर आकर प्रायः 12 आने मूल्य का वो एक सिगार जलाकर मुंह से लगाया और उसका कश खींचते खींचते गाड़ी में चढ़कर राजमहल में आए। मानो ऐसी अमूल्य संपत्ति अन्य किसी के भाग्य में नहीं होती। सब सुनकर दीवान जी पहले तो हंस उठे किंतु बाद में इन निष्प्रह साधु का वैराग्य देखकर चकित हो गए।
2: एक दिन महाराजा ने स्वामी जी को अपने कमरे में बुलवाया, दीवान जी भी साथ गए।
3: प्रणाम स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: सब आनंद मंगल है, कहिए मुझे क्यों बुलाया?
3: स्वामी जी, आपकी विद्वता पर मेरा सारा राज्य मोहित है, आप मेरे मेहमान बने हैं, इससे मेरा मान बढ़ा है। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे लायक कोई सेवा?
0: स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर न देकर ज्वलंत शब्दों में अपने जीवन के उद्देश्य की बात बोलने लगे। उन्होंने भारत की तत्कालीन अवस्था के प्रति ध्यान खींचकर कहा, यद्यपि भारत की विशिष्टता दर्शन और आध्यात्म ही है तथापि समय के अनुरूप उसे पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान अर्जन एवं सामूहिक समाज सुधार की दिशा में शीघ्र तत्पर होना होगा। भारत को आज अपनी विशेष संपदा आध्यात्म को विश्व मानव के कल्याण के लिए वितरित कर देना होगा और उपयुक्त सुयोग पाने पर वे स्वयं अमेरिका जाकर वेदांत का प्रचार करेंगे।
3: स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके विदेश यात्रा की सारी व्यवस्था कर दूंगा, कहिए कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी?
1: आपको धन्यवाद महाराज कि आपने मेरे व्रत में सहायक बनना स्वीकार किया, पर अभी नहीं, पहले मैं रामेश्वर दर्शन करना चाहता हूँ, फिर आपको जरूर बताऊंगा।
0: स्वामी जी के मन में था कि अगर वे विदेश जाकर वेदांत का पाठ पढ़ाएंगे तो समग्र भारत के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे, किसी एक शक्ति की सहायता से नहीं।
2: जितने अधिक दिनों तक स्वामी जी मैसूर में रहते रहे महाराजा उतना ही अधिक उनके प्रति अनुरक्त होने लगे। तदंतर जिस दिन स्वामी जी ने विदा मांगी उस दिन महाराज ने दुखी होकर उनसे और भी कुछ दिनों तक रहने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा,
3: स्वामी जी आपके व्यक्तित्व के स्मृति चिन्ह के रूप में मेरे पास कुछ रहना आवश्यक है, अतः आपकी अनुमति मिलने पर फोनोग्राम में आपके कुछ भाषणों को रिकॉर्ड करके रख लेना चाहता हूँ।
2: स्वामी जी से सहमत हुए और उस दिन स्वामी जी के कंठ स्वर का जो रिकॉर्ड तैयार हुआ था वह पूर्णतः अस्पष्ट हो जाने पर भी राजभवन में यत्न पूर्वक रखा हुआ है। स्वामी जी के प्रति महाराज की श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी कि एक बार वे गुरुभाव से स्वामी जी के चरणों की पूजा करने को तत्पर हो गए थे, किंतु स्वामी जी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया।
0: कुछ ही दिनों के उपरांत स्वामी जी ने कहा, वे अब किसी भी तरह नहीं रुकेंगे। ये सुनकर महाराजा ने उन्हें कुछ कीमती उपहार देना चाहा, किंतु सन्यासी के लिए ऐसी वस्तुएं ग्रहणीय नहीं होने के कारण स्वामी जी ने उपहार लेना स्वीकार नहीं किया। तथापि महाराजा के सग्रह अनुरोध करने पर उन्होंने अंत में कहा,
1: अच्छा आप अगर जिद कर रहे हैं कि मुझे कुछ न कुछ लेना पड़ेगा तो बिना धातु वाला एक हुक्का दीजिए, हाँ वो मेरे कुछ काम का होगा।
2: महाराजा ने तब उन्हें एक नक्काशीदार रोजवुड का बना सुंदर हुक्का प्रदान किया। स्वामी जी से विदा लेते समय महाराजा ने उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। इधर दीवान बहादुर ने चुपचाप उनकी जेब में नोटों की एक गड्डी ठूंस देने का प्रयत्न किया। स्वामी जी ने किसी तरह उसे ग्रहण नहीं किया, फिर भी उन्होंने कहा,
1: देखिए आप यदि मेरे लिए सचमुच कुछ करना चाहती हैं, तो मेरे लिए रेलवे का एक टिकट खरीद दीजिए, मैं तो रामेश्वर जा रहा हूँ किंतु रास्ते में 2-4 दिनों के लिए कोचीन राज्य में रुकूंगा।
2: उन दिनों कोचीन और श्रावण को राज्यों में रेलवे लाइनें नहीं थी, अतएव सुना जाता है कि शोरनूर रेलवे स्टेशन पर उतरकर स्वामी जी बैलगाड़ी से त्रिचूर पहुंचे। गाड़ी जब शहर के भीतर से गुजर रही थी

0: कोचीन राज्य के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी श्री डी ए सुब्रमण्य अय्यर अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। स्वामी जी ने गाड़ी से उतरकर उक्त सज्जन से पूछा, यहाँ क्या कहीं स्नान करने की उपयुक्त जगह है? स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित उक्त सज्जन ने स्वामी जी को अतिथि रूप में ग्रहण कर अपने मकान के एक हिस्से में उनके स्नान भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। उन दिनों स्वामी जी के गले में कफ जम जाने के कारण कुछ कष्ट हो रहा था। अय्यर महाशय ने उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर दवा की व्यवस्था करा दी।
1: त्रिचुर में स्वामी जी मात्र कुछ ही दिन रहकर कुरुंगनोर या कोडंगलुर नामक प्रसिद्ध स्थान में चले गए। वो स्थान संस्कृति और एक काली मंदिर के लिए सुविख्यात था। स्वामी जी ने जब उस काली मंदिर में प्रवेश करना चाहा, तो पुजारियों ने रोक दिया। अतएव वे बाहर से ही काली माता को भूमिष्ठ प्रणाम कर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में क्रैंगनोर राजभवन से कोचुन्नी थम्पुरन और भट्टन थम्पुरन नामक दो राजकुमार काली मंदिर में आए और स्वामी जी को वट वृक्ष के नीचे बैठा देखकर संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। स्वामी जी ने जानना चाहा कि उन्हें मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश करने दिया गया। दोनों राजकुमारों ने उत्तर दिया कि लोगों की, खासकर केरल से बाहर से आने वाले लोगों की जाति का पता लगाना कठिन होता है, इसलिए सबको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता।
0: इस प्रकार तीन दिनों तक स्वामी जी से संस्कृत में वार्तालाप और शास्त्र चर्चा होने के बाद स्वामी जी के प्रति दोनों राजकुमारों में श्रद्धा जागी। बाद में राजमहल की महिलाओं ने वहां आकर स्वामी जी से संस्कृत में वार्ताएं की। स्त्रियों में भी इस प्रकार का संस्कृत ज्ञान है, ये देखकर स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए। चौथे दिन भी वे दोनों राजकुमार वहां आए, किंतु उन्होंने देखा कि स्वामी जी पहले से ही कोचिंग की ओर चले गए हैं। इसके कुछ महीनों बाद उन दोनों ने जब समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देखी और शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में उनकी विजय के बारे में पढ़ा, तब वे पहचान पाए कि ये वही वटवृक्ष के नीचे वाले स्वामी जी हैं।
1: कोचीन राज्य को छोड़कर स्वामी जी ने क्रमशः त्रावणकोर राज्य में प्रवेश किया। त्रावणकोर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए। समुद्र तट पर स्थित त्रिवेंद्रम राज्य की नदी पर्वत, शोभित और श्यामल वृक्षलता आदि से आच्छादित धरती बड़ी ही मनोरम है और इसके ही बीच बीच में स्थित धान के खेत और चित्र के समान गांव बड़े ही अच्छे हैं। वे त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंचे।
0: त्रिवेंद्रम में वे प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर के घर ठहरे। ये उन दिनों श्रावणकोर के महाराजा के भांजे और राज्य के प्रथम या सबसे बड़े राजकुमार श्री मार्तंड वर्मा के गृह शिक्षक थे। राजकुमार उन दिनों अय्यर महोदय से पढ़कर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। श्रावणकोर के महाराजा महाविद्यालय में उन दिनों मद्रास के विख्यात विद्वान श्रीयुत रंगाचार्य रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने स्वामी जी से भेंट की। त्रावणकोर के श्री एस के नायर ने इन दोनों प्रोफेसरों से स्वामी जी के साहचर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है।
2: ये दोनों सज्जन स्वयं संस्कृत एवं अंग्रेजी में पंडित होने पर भी स्वामी जी से बात करने में विशेष आनंद का अनुभव करते। वस्तुतः जो कोई उनसे घनिष्ठ रूप से परिचित होता वो उनके तेजोमय व्यक्तित्व से मुग्ध होता और उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। उनमें यह अत्यंत आश्चर्यपूर्ण क्षमता थी कि वे एक ही समय में एक साथ ही अनेक प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे। संभवतः स्पेंसर के दर्शन, कालिदास या शेक्सपियर के किसी भाव, डार्विन के सिद्धांत, यहूदियों के इतिहास, आर्य सभ्यता के विकास, वेदों, इस्लाम धर्म अथवा ईसाई धर्म के संबंध में चर्चा शुरू होने पर स्वामी जी के पास सभी विषयों का समुचित उत्तर प्रस्तुत रहता। उनकी आकृति में गंभीरता और सरलता की रेखा स्पष्ट रूप से अंकित थी। उनका हृदय पवित्र, जीवन निष्पाप और संयत, खुला मन चित्त, सभी विषयों में उदार, दृष्टि व्यापक और सहानुभूति विश्वव्यापी थी। त्रावणकोर में रहते समय व्यक्तिगत वार्तालाप के समय वे समग्र भारतीय दृष्टि लेकर बातें करते और विशाल भारत के सभी क्षेत्रों में समाज सुधार और जन जागरण की आवश्यकता पर बल दिया करते।
1: त्रिवेंद्रम में स्वामी जी 9 रातें श्री सुंदर राम अय्यर के घर पर रुके थे। सुंदर राम ने उन दिनों का बहुत सजीव वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है,
3: स्वामी विवेकानंद से मेरी पहली भेंट त्रिवेंद्रम में

0: सन 1892 ईस्वी के दिसंबर माह में हुई। उस समय उनके बारे में बहुत कुछ देखने और जानने का सौभाग्य मिला। वे मेरे यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ आए थे। मेरे 12 वर्ष के छोटे पुत्र ने उनको भी मुस्लिम समझ लिया था और उनके आगमन की घोषणा की थी। स्वामी जी ने जिस तरह की पोशाक पहन रखी थी उससे इस बालक के लिए भ्रम में पड़ जाना अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदू सन्यासी की ऐसी वेशभूषा नहीं होती थी। स्वामी जी ने बात बात में मुझसे अपने मुस्लिम दोस्त के भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। वो साथी कोचीन राज्य की सेवा में नियुक्त था और एक दीवान के सेक्रेटरी श्री डब्लू रमैया ने उसे स्वामी जी के साथ भेजा था। पिछले 2 दिनों से स्वामी जी ने थोड़े दूध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाया था, किंतु जब तक उस मुस्लिम नौकर के भोजन की व्यवस्था नहीं हुई उन्होंने कुछ नहीं खाया। कुछ ही मिनटों तक वार्तालाप कर मैं समझ गया कि स्वामी जी एक शक्तिशाली पुरुष हैं। मैंने जब उनसे पूछा, आप कैसा भोजन पसंद करते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया, आपको जो अच्छा लगे। हम सन्यासियों के लिए पसंद नापसंद जैसी कोई बात नहीं होती। ये जानकर कि स्वामी जी बंगाली हैं, मैंने टिप्पणी की, बंगाली समाज ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है और उनमें ब्राह्म प्रचारक केशव चंद्र सेन सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कृष्ण के नाम का उल्लेख किया और उनके अतुलनीय आध्यात्मिक गुणों की संक्षिप्त चर्चा कर कहा,
1: श्री राम कृष्ण की तुलना में केशव तो मात्र बच्चा है। केवल मैं ही नहीं, हमारे समकालीन अनेक विख्यात बंगाली श्री रामकृष्ण से प्रभावित हुए हैं। अपने परवर्ती जीवन में केशव चंद्र को भी उनकी छाँव के तले आकर सीखने का सौभाग्य मिला था, जिसके फलस्वरूप केशव चंद्र के धर्म जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे। कई यूरोपीय भी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते थे और उन्हें देवता की भांति श्रद्धा करते थे। एक दिन वे श्री रंगाचार्य के घर गए। रंगाचार्य त्रिवेंद्रम कॉलेज में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक थे और उस समय भी संपूर्ण दक्षिण भारत में विद्वता और विज्ञान में पांडित्य के लिए कीर्ति की उच्चतम शिखर पर अधिष्ठित थे। घर में उनके नहीं रहने के कारण हम लोग गाड़ी से त्रिवेंद्रम क्लब गए।
2: उस क्लब से वापस आते समय एक घटना घटी।
0: क्लब छोड़कर जाने के समय नारायण मेनन ने उक्त ब्राह्मण पेशकार को प्रणाम किया। इस पर उनके अभिवादन के जवाब में उन्होंने बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाकर स्वीकार किया। जब हम लोगों के विदा होने का समय आया तब दीवान पेशकार द्वारा स्वामी जी को प्रणाम किए जाने पर स्वामी जी ने सन्यासियों की प्राचीन प्रथा के अनुसार केवल नारायण शब्द का उच्चारण किया। इससे पेशकार महोदय को गुस्सा आ गया और उन्होंने ये अधिकार जताया कि उन्होंने जिस प्रकार स्वामी जी को प्रणाम किया है ठीक उसी प्रकार स्वामी जी को भी प्रति प्रणाम करना होगा। तब स्वामी जी ने पेशकार की ओर मुड़कर कहा,
1: यदि आप नारायण मेनन को अपनी प्राचीन रीति से जवाब दे सकते हैं तो मेरे द्वारा अपनी रीति से आपका अभिवादन स्वीकार करने पर आपके नाराज होने का क्या कारण है।
0: इस प्रतिउत्तर का अपेक्षित परिणाम हुआ और दूसरे दिन पेशकार के भाई ने हम लोगों के पास आकर विगत रात्रि की कष्टकर घटना के लिए क्षमा याचना की। क्लब में स्वामी जी के थोड़ी ही देर रहने पर भी सब पर उनका गंभीर प्रभाव

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: श्रोते हो, आपण श्रावण या सप्ताहाच्या अनुषंगाने बोलत आहोत आणि या श्रावणाबद्दल बोलत असताना मी माझ्या एका चारोळीमध्ये लिहिले की असेल जरी अवतीभोवती गोंगाट तुझ्यासाठी कायमची अंतरात हळवी जागा, असेल जरी अवतीभोवती गर्दी गोंगाट तुझ्यासाठी कायमची अंतरात हळवी जागा, अत्तराचा सुगंध तू श्रावणा

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

अपने हाथों से ही मैं गोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तू ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहाँ से वापस लौट के फिर ना आए। रोता रहे।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंदवान.
1: क्यों रे शैतान, तुम्हें क्यों पता है मैं गाना जानती हूँ?
2: जरा तारीफ कर दी थी, वरना तुम गाती क्या हो?
3: रोती हो पिया बिन नाही चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय.
1: मैं ऐसा गाती हूँ?
2: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ.
1: और तुम?

0: सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: किसे सीखा तूने ये?
1: अच्छा है?
0: हाँ बहुत अच्छा है।
1: हेडमास्टर साहब से?
0: तब तो बहुत बुरा है।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और हमेशा की तरह बाल संसार इस कार्यक्रम में हम लोग पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर आपको दिखाएं बताएं तो हम लोग पिछली बार विशेष बच्चों की मनोभावनाओं को कैसे समझा जाए इस पर बातें चल रही थी। आज भावनात्मक अभिव्यक्ति में सहसहमति की स्थिति कैसे बनाए रखें, बच्चों के स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना, इस विधि को समझने की कोशिश करेंगे आज। और हमारे आज के विशेष मेहमान जो हमें विशेष बाल मनोवैज्ञानिक है, बिहेवियरल साइंटिस्ट है, तो उनसे हम लोग बातें करते हैं और वो अपनी मनोस्थिति के साथ साथ बच्चों के बाल मन की बातें हमें सुना रहे हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय भाई जी।
0: जी कैसे हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी आप?
1: बहुत अच्छे से, बहुत आनंद में, ब्लेसिंग सब
0: जी। तो अभी हम लोग आज कोशिश करेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य भावनात्मक हेल्दी इमोशंस के विकास के लिए क्या करना है, किस तरह से इस पे काम करना है।
1: बहुत सामूहिक प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि इमोशंस को लेके पेरेंट्स कई बार काफी सतर्क भी होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि बच्चों की जो भावनाएं हैं
0: जी जी
1: उनको हमेशा ध्यान में रखा जाए और खासकर उस स्थिति में जब वो बहुत लॉजिकल होते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ में उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी इमोशंस हैं जो कहीं न कहीं हाइड हो जा रही हैं, तो वो भावनात्मक अभिव्यक्ति कई बार करने के पहले सोचते हैं कि जो मैं एक्सप्रेशन करने का प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे मेरे माता पिता कहीं आहत तो नहीं होंगे। माने वहां वो स्वयं के साथ साथ में अपने गार्जियंस का प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं या टीचर से कोई इमोशंस वो शेयर करते हैं, तो ये सब बातों का वो ध्यान रखते हैं। लेकिन बड़ों को कई बार लगता है कि जो इमोशनल

0: ग्राउंड है इनका वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि वो बालमन है। तो क्या हम बड़े उस स्थिति में स्वयं को स्थित रख पाते हैं कि वो जो मनोभाव उनका आ रहा है उसको हम केयर भी कर लें और भले ही उस पर जो हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया है वो त्वरित फॉर्म में नहीं हो, कुछ समय के बाद हो जाए, लेकिन मनोभावों को बहुत एकाग्रचित होकर अगर सुन लिया जाए तो बच्चों को एक मन में फीलिंग होती है कि हमें बड़ों ने सुना है, क्योंकि वो इस अभिव्यक्ति के पूर्व अपने माता पिता या शिक्षक गणों या अपने बड़ों का मूड भी देखते हैं। कई बार वो देखते हैं कि सुबह से शाम की दिनचर्या में माता पिता थके हुए हैं या ऑफिस के कार्यों में वो बिजी हैं, तो वो तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं और वो सोचते हैं कि जब वो बहुत शांति में है और मेरे से कहीं संवाद कर रहे हैं, भले ही वो होमवर्क के विषय में हो, आज की क्लास में जो कुछ भी हुआ उसका फीडबैक ले रहे हों, तो उसी समय बच्चे बड़ी सहजता से अपने मनोभावों को शेयर करते हैं। और कई बार मैंने देखा कि वो मनोभाव छुपा लेते हैं और एक परिवार में मेरा जाना हुआ तो वहां पर उनके बच्चों के गार्जियन ने बताया कि हमारे बच्चे या मेरा बच्चा है जो है वो डायरेक्ट मेरे से नहीं कहता है, तो वो उन्हीं के ड्राइंग रूम में एक जगह पर अपनी कुछ जो विशेष होती हैं, उनकी इच्छा होती है, डिजायर होती है, कई बार उनको कुछ स्थूल चीजें पढ़ाई लिखाई के संबंध में चाहिए होती हैं, लेटेस्ट गजट हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो अपनी अपेक्षाओं को धीरे से वॉल पे लिख देते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये देखिए मेरे बेटे ने ये लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट नहीं कहता है, या इसको जो भी हमारी परिस्थितियों का अंदाजा होगा उसके हिसाब से हम हर्ट नहीं हों, और ये भी लिख देता है कि जब भी समय मिले या परिस्थिति अनुकूल हो तो ये हमें हमारे मनोभावों को पूरा करने का प्रयास कर देना। तो ये मुझे देखने के बाद में, हालांकि मैं काफी भावुक भी हो गया उस समय, लेकिन ये भी मैंने पाया कि ये हो सकता है कि बच्चा दिखने में हमें बाह्य रूप से छोटा दिखाई दे रहा है, उसकी आकृति को हम देख रहे हैं, लेकिन है तो उस शरीर में एक आत्मा, तो एक आत्मा जब एक शरीर के साथ होती है तो वो जीव आत्मा होती है और जीव आत्मा अपने वेग संवेग मनोभावों को अपनी शैली के साथ में प्रस्तुत करती है और ये ध्यान रखती है कि कोई हर्ट भी नहीं हो और हमारी अभिव्यक्ति सहज रूप से हो जाए और वो स्वीकार्य हो। जी
1: बिल्कुल डॉक्टर अजय जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे हम बच्चों की भावनाओं को समझे, इस विषय पर बातें चल रही है, उनकी अभिव्यक्ति को समझने की कोशिश करें, ये आपने बताया। अब सबसे पहली बात आती है कि स्वीकृति और समर्थन का माहौल बनाना, तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आज के समय में ये चीजें शायद कम होती जा रही
0: है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं।
1: जी जी,
0: पहला जो दृष्टिकोण होता है कि वो एक्सेप्टेंस में चली जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो जहां आपने बहुत अच्छी लिसनिंग किया है तो वहां उन्हें एक ट्रस्ट एंड बिलीव सिचुएशन क्रिएट होती है कि और संभावना लगती है बच्चों को कि आज मेरी बात को बड़ों ने सुना है, तो ये जो एक्सेप्टेंस है यही धीरे धीरे सहमति में बदलेगी और भले ही इसमें समय लग सकता है लेकिन उनकी भावनाओं पर ध्यान रखा जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जिन भावनाओं को बच्चों ने प्रस्तुत किया है और उसके पहले अगर किसी पारिवारिक स्थितियों में माहौल क्या रहा है, वहां भी बच्चे इस बात को कहीं न कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम जो कुछ कहते हैं उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया क्या हो रही है, तो वो भी उनके ऑब्जर्वेशन में रहता है। और बड़े भी देखते हैं कि पिछली इनकी इमोशंस को हमने अगर फुलफिल किया है और कंटिन्यू अगर हम करते जाते हैं तो नई नई इमोशंस हमारे सामने आएंगी। बात यहां पर इमोशनल बैकग्राउंड पर जाके किसी वस्तु या किसी सामग्री की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे के द्वारा जो कुछ भी अभिव्यक्ति की गई है वो किन संदर्भों में है। उदाहरण के लिए कई बार बच्चों को अपनी जो आवश्यकता है अर्थात किताबें हैं, पढ़ाई के संबंध में कुछ और रेफरेंसेस हैं, वो अगर चाहिए और उसमें थोड़ा सा उनका जिद या जुनून ये अभिव्यक्त होता है कि ये अगर कम समय में उपलब्ध हो जाता है तो आगे उन्हें बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और अपनी स्टडी को वो एक शेप दे पाएंगे। दूसरी स्थिति यह होती है कि जब भी बच्चा अपने स्वाध्याय या अध्ययन में लीन है और उस स्थिति में उसको लगता है कि मेरे पास में सेकंड ऑप्शंस क्या है। सामान्य तौर से अभी वर्तमान परिवेश में या परिदृश्य में आप देखें तो पढ़ाई पर दबाव है बच्चों को और बहुत अधिक नंबर लाने का जो एक निरंतर उनको कमेंट किया जाता है और वो

0: करंट में जो फ्लक्चुएशन है वो कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव और कई बार बहुत स्ट्रेसफुली होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे ये सोचते हैं कि अभी जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो रियल में फुलफिल होगी या नहीं होगी, या जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम इसको पूरा कर देंगे, ये करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे संदेह के वातावरण में भी बच्चे रहते हैं और उनको मन में लगता है कि भविष्य किस स्थिति में है। हालांकि वो अंधकार की फीलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी परिवेश में मुझे सब कुछ मिलना है। तो ऐसी स्थिति में एक सेकंड विकल्प है जिसमें हम बच्चों की भावनाओं की रक्षा कर सकते हैं, और वो विकल्प है कि पढ़ाई के अलावा अगर खेल या अपने मनोरंजन की कोई सामग्री वो डिमांड करते हैं तो उसे हम इसलिए प्रदान करें क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त जो हॉबीज है उनकी, भले वो इंडोर गेम की हो या आउटडोर गेम की हो, उस समय ब्रेन को एक रिलैक्स मिलेगा, इमोशंस को एक सपोर्ट मिलेगा और उनको खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने के लिए जो आवश्यक सामग्री और वातावरण है वो भी हम प्रदान कर देते हैं। तो पढ़ाई और सेकंड ऑप्शन आपने दे दिया, तो इससे हम अपने बच्चों की रक्षा भी कर सकते हैं कि किसी अदर इमोशंस की तरफ वो टर्न नहीं हो। जी,
1: बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत और फिर हम लोग बातें करेंगे इसी विषय को लेकर। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा जैसे कि हम सभी लोग बातें कर रहे थे स्वीकृति और समर्थन का माहौल बच्चों को कैसे बना के दे, तो इसमें आता है कि खुला संवाद की बात, बच्चों के साथ उनकी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो अजय जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, आप क्या समझते हैं, इसको कैसे हम लोग समझें और इसके ऊपर कैसे काम करें?
1: बहुत अच्छी बात है और बाल संसार का ये पूरा आयोजन निश्चित तौर पर एक बड़ी दृष्टि और दृष्टिकोण को निर्मित करने में मददगार साबित होगा। इसी आशा को लेते हुए जब आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा होता हूं तो उस समय बच्चों के जीवन के कई पक्ष मेरी आंखों के सामने एक रील की तरह घूम जाते हैं और कई बार उनकी काउंसलिंग करते समय इस प्रकार की मनस्थितियां क्रिएट होती हैं कि कैसे बच्चों की मदद की जाए। बाह्य तौर पर या आंतरिक तौर पर हम लोगों को लगता है कि कुछ उपलब्ध करा देना उनके लिए एक बहुत बड़ी संतुष्टि की स्थिति होगी, जबकि वास्तविकता ये है कि हम भले ही आज स्वयं की बुद्धिमत्ता की बात करते हैं या सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के मन में जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत होती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर बातचीत होती है, तो उस स्थिति में बच्चों को लगता है कि हम जो कुछ भी व्यक्त कर रहे हैं उस अभिव्यक्ति के प्रति जो हमारा कन्वर्सेशन बड़ों के साथ हो रहा है उसमें हमें क्या बड़े संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा मूल्य है, कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात की गई है, संतोषम परमम सुखम। तो हर बार बच्चों को अपने बड़ों से उनकी सहमति या मदद की अपेक्षाओं के साथ साथ में एक संतुष्टि भरा माहौल अगर प्रदान कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि जिस चीज की आप अपेक्षा रख रहे हैं भले ही वो वैचारिक संवाद की हो, भावनात्मक संवाद की हो, हम इन तमाम स्थितियों के बीच में एक साथ कम से कम प्रतिदिन एक अवसर प्रदान जरूर करेंगे, भले ही वो बच्चों के साथ आप कितने भी व्यस्त हों, सुबह अगर आप नाश्ता नहीं कर पा रहे हैं, दिन में भोजन नहीं कर पा रहे हैं, रात को अगर आप भोजन कर रहे हैं, तो तीनों ही स्थितियों में एक समय भले ही वो रात्रिकालीन बेला हो उस समय बच्चों के साथ में भोजन अगर आप करते हैं और उनको ये मौका देते हैं कि कोई बात वो अपने बड़ों के बीच में रख सकते हैं, तो वहां भी एक भावनात्मक संतुष्टि उत्पन्न होगी और यही भावनात्मक संतुष्टि बच्चों के जो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात हम बाल मनोविज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं उसमें मदद करेगी। क्योंकि जहां बच्चा हेजिटेट कर रहा है, संकोच कर रहा है अपने बड़ों से बात करने में, वो ओपननेस क्रिएट होगी और वो संवाद अपने बड़ों से वहां कायम भी कर पाएगा और भविष्य में ये जो संवाद डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो एक निडरता क्रिएट हुई तो ये एक बौद्धिक कौशल भी बच्चे के साथ में विकसित हो सकेगा अगर हम प्रतिदिन उस बच्चे को अपने एक बाल संसार को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी लग रही है, जहां पर हम भावनात्मक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं और इसमें हमने दो पहलुओं को समझने की कोशिश की, जहां पर खुला संवाद यानी ओपन डायलॉग्स हो और दूसरा हमें बच्चों की हर चीज को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में हमें स्वीकार करना है और एक बार बच्चा हमारे अनुकूल चीजों को स्वीकार करते हुए हमारे साथ दोस्ती हो जाए तो फिर हम बच्चे को जो है कुछ चीजें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ये चीजें करने में।
1: जी,
0: तो आइए सहानुभूति को कैसे समझें हम लोग, क्या मैं अपने अंदर सहानुभूति लाऊं या बच्चों के अंदर सहानुभूति को देखना है या कैसे, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, एक्चुअली में उसको ठीक से समझने में भी मुश्किल लगता है। तो आप बच्चों के इस मनोविज्ञान को समझने में सहानुभूति कहां किसमें कब देखना है?
1: देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सहानुभूतिपूर्ण बिहेव की बात करते हैं तो आप देखें कि हमारे वातावरण में, अर्थात बड़े जब अपने कार्यालयीन क्षेत्र में या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में जब कार्य कर रहे होते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि वहां भी चाइल्ड इमोशंस काम करती है, अर्थात बड़ों के अंदर जो बाल मनोविज्ञान है वो निरंतर कार्य करता है और वो भी चाहते हैं कि जिन अपेक्षाओं के साथ में या जिस अनुकूलता की जो उन्होंने कामना कर रखी है

0: जीवन में, तो दिन भर की गतिविधियों में उन्हें भी जब स्नेह, प्यार, दया, करुणा, सहानुभूति, ये मानवीय मूल्य हैं, चेतना के को चैतन्य बनाने में मददगार होते हैं, और इन मानवीय मूल्यों के साथ जब आपका दिन भर गुजरता है तो आपको भी ये फीलिंग होती है कि यही सारे मानवीय मूल्य हमारे बच्चों की भी उनकी मनोस्थिति को लेकर अगर हम थोड़ा सा कार्य करने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा पारिवारिक दृष्टि और दृष्टिकोण है वो सकारात्मक बनेगा और हम सार्थकता के परिवेश में गतिशील हो पाएंगे। मैं सार्थकता इसलिए कह रहा हूं कि कई बार चीजें पॉजिटिव हम कर देते हैं या हो जाती हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है उस परिणाम तक जब हम पहुंचने की बात करते हैं तो उसमें एक साथ पूरी की पूरी स्थिति टीम की हो जाती है, अर्थात टीम वर्क की बात हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम छोटी सी बात रखें कि अगर परिवार ने कुछ तय किया है कि ये सारा का सारा हम एक हफ्ते के अंदर मैनेज कर लेंगे या जो भावनाएं हैं उसको एक साकार रूप दे देंगे, तो उसके लिए अगर हम सप्ताह में एक दिन अर्थात रविवार का दिन चयन कर सकते हैं जहां आपकी भी छुट्टी है और बच्चों को लेके आप किसी पार्क में या किसी मंदिर के प्रांगण में जहां एनर्जी का जो लेवल है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर रहता है और उस स्थिति में आप देखें तो वहां बच्चे अपनी भावनाओं को शेयर भी कर सकते हैं, समय भी आपको मिलेगा और एक नवीन वातावरण के साथ में उनका संवाद हो सकेगा, प्रकृति से जुड़ पाएंगे और वहां समाधान की क्रियाएं यथावत रूप से विधिवत रूप से संपन्न हो पाएंगी। जी
1: जी डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, काफी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें ठीक से समझ में आ रही हैं और बहुत अच्छा आपने सहानुभूति के बारे में बताया। अब सकारात्मक भावनाओं को कैसे हम लोग प्रोत्साहित करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छी बात है, जीवन की प्रक्रिया में सकारात्मकता एक बहुत बड़ा मूल्य है और इसकी ओर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय करने होंगे। कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना होगा। उदाहरण के लिए कई बार आप भी देखते हैं कि बहुत सारी स्थितियों में आप बहुत व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए, हालांकि सुनते समय बड़ा अजीब लगेगा और कई बार हम बड़ों से संवाद करते हैं और बड़े बोलते हैं कि अभी इतना समय कई घंटे हमने आपके साथ निकाले हैं और सुबह से शाम तक की चर्चा की है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम लोग बड़ों मिलके और बहुत सारी स्थितियों में बच्चों की मदद लें या बच्चों की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करें? तो यहां पर मैंने उनसे कहता हूं कि आप अगर एक डायरी मेंटेन करते हैं और उस डेट और उस ईयर की डायरी है और उस तिथि में बैठ के उनसे बातचीत करते हैं कि हम लोगों ने ये जो जीवन जिया है, भले ही वो माता पिता के रूप में हो, तो इसमें बेटा आपके हिसाब से आज के रेफरेंस में क्या चेंजेस करना चाहिए। तो जब पार्टिसिपेटिव मोड में आप बात करते हैं, सहभागिता आप दर्ज कराने की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बच्चे के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का लेवल है, परसेप्शन का लेवल है और वो चीजों को फैमिली के माहौल से सकारात्मकता से कैसे समझता है और जब वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन के लिए कुछ उपाय वहां सजेस्ट करने का प्रयास बच्चे करते हैं और उनको आपने नोट डाउन कर लिया तो वहां पर उनको एक बड़ा मनोबल मिलता है। और ये नहीं है कि आपने उनको जन्म दिया है तो वो छोटे रहें या वो बड़े नहीं बने, हम सब चाहते हैं, जैसे मां बच्चे को गोद में ले लेती है, पिता कंधे पर बैठा लेते हैं और उद्देश्य क्या रहता है कि मेरे से भी उच्चता ये जीवन में ग्रहण करें। तो ऐसी स्थिति में जब अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप बच्चों की सहभागिता लेते हैं, उनके कार्यप्रणाली से उनके अनुभवों को भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को विकसित कर रहे हैं तो जो कुछ भी विनियोजन किया गया है, जो भी समय या धन और हम एक लंबा काल उनके साथ गुजार रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है वो भी आपको देखने में लगेगा कि ये जो बच्चे हम आज हमें सजेस्ट कर रहे हैं ये बातें कई बार हमारे संज्ञान में नहीं होंगी और एक नया चिंतन वहां से शुरू होगा कि बच्चों के मन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये एक नई मूल्य के साथ में गतिशीलता पैदा होगी और वहां वो बच्चा समझ पाएगा कि जीवन में सकारात्मकता का क्या महत्व है। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे बच्चों को और सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करें, इस पर आपने बताया। अब कई बार चीजें जो है हमारे हाथ में होती हैं लेकिन कुछ कुछ हमारी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में हमें टाइम लगता है, तो इसके लिए हमें किसकी मदद और कैसे लें?
0: कई बार हमें लगेगा भाई जी कि हमारे सामने बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उदाहरण के लिए माता पिता चाहते हैं कि बच्चे केवल स्टडी में कंटिन्यू लगे रहें, वो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करें, या अचानक कहा गया कि स्कूल या कॉलेज में कि नहीं अभी आपको फिल्म देखने जाना है और वो

0: ग्रुप में आपको लेके जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को हमने एकांगी बना दिया, तो कई बार मैं देखता हूं कि बच्चा बड़ी सिटी में पढ़ रहा है या बड़ी सिटी के आसपास है, प्रतिदिन वो जा रहा है, उसको कुछ फिजिकल भी प्रॉब्लम आई है, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को वहां मोटिवेट किया है, तैयार किया है, और वो उस वातावरण में जाने के बाद में अचानक वहां पर ये बात आती है इंस्टीट्यूट की ओर से कि आज हम कुछ नई जगह विजिट करेंगे, तो वहां पर हमें ऐसा लगता है एक संदेह या एक भय हमारे अंदर काम करता है कि मेरा बच्चा उस वातावरण में जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई, आपका बच्चा घर से बाहर 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जा रहा है, आ रहा है, प्रतिदिन आप उसको भौतिक रूप से या अभौतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, या मैं उस प्लेइंग मोड में नहीं जाऊंगा, पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा, या सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तो अगर हमने शुरू से उसको डिफाइन कर दिया कि ये पाप है या पुण्य है, तो उसके सामने एक बैरियर क्रिएट होगा। हमें बताना होगा कि जिस व्यवस्था के तहत में, इंस्टीट्यूशन के तहत में आप जा रहे हो, तो सारी पूरा स्टाफ जाएगा, टीचिंग स्टाफ जाएगा, सारे स्टूडेंट जाएंगे, और वो वहां पर जो भी एक्टिविटीज करेंगे, भले ही वो कुछ गेम्स प्ले कर रहे हों, भले ही संगीत का कोई माहौल हो, लेकिन उस समय उस वातावरण के माध्यम से आपको कुछ सीखना होगा। और वो वातावरण में जरूरी नहीं है कि आप सहभागिता दर्ज करें, या सारे बच्चे वहां सहभागी नहीं होंगे, लेकिन बहुत आनंद का उत्सव है तो आप ताली बजाएंगे। तो क्या ताली बजाना या आपके द्वारा मुस्कुराना या खिलखिला के हंस लेना, क्या ये व्यक्तित्व विकास का हिस्सा नहीं है? अगर आप प्रतिदिन इंस्टीट्यूट से केवल एकांगी होकर और पढ़कर घर पर आ जाते हैं, और इसके बाद अचानक 5 साल के बाद में, 3 साल के बाद में संगठन में काम करने का मौका मिलेगा, तो वहां जो आपके मन में डूज और डोंडूज है, ये करना है या नहीं करना है, इसका द्वंद तो वहां खत्म हो जाएगा ना। आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो केवल हम जब समूह में या शैक्षणिक गतिविधियों के अलग अलग स्वरूप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर केवल एक पक्ष नहीं बल्कि बहुपक्षीय आयाम से बातें होती हैं, और वहां बच्चों को लर्निंग इश्यूज प्रैक्टिकल डायमेंशन से मिलते हैं, क्योंकि वो केवल स्टोरी नहीं है, बल्कि वो वहां स्टोरी जनरेट हो रही है, और उस स्टोरी के लाइव स्वरूप में वो बच्चा सहभागी बन रहा है, और वहां लर्निंग इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो चीजों को समझता है या सीखता है, तो उसके मन में नकारात्मकता से लड़ने की ताकत आती है, और सकारात्मकता के पद पर चलने की उसको अंदर से हिम्मत मिलती है, और वो हिम्मत बाई इंजेक्शन नहीं बल्कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, सामूहिक गतिविधियों के द्वारा संपन्न होती है। ऐसी स्थिति में माता या परिवार या आसपास का जो माहौल है सामाजिक, उनका दायित्व बनता है कि बच्चे को हम संपूर्ण रूप से विकसित होने के आयाम में सम्मिलित भी करें, उन्हें इनवाइट भी करें और प्रोत्साहित भी करें, जिससे कि सीखने की अलग अलग विधाओं में बच्चा जा सके और अपने आप को वो कहीं न कहीं परफेक्शन की स्थिति में या पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए स्वयं को तत्पर कर सके, तैयार कर सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बातें आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है। बच्चों के भावनात्मक जो स्वरूप को है, उसे कैसे हम लोग ठीक से समझे और उसके ऊपर काम करें, और सहज सहमति को कैसे हम लोग अपने अंदर निर्माण करें, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताया है। और मुझे लगता है कि सकारात्मक नकारात्मक शायद बच्चों को इतना बड़ा जो पहलू है वो समझने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो भी लगता है बच्चा जैसा भी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसे करने दीजिए और फिर बाद में उसको सीखने भी दीजिए। हम लोग तुरंत ही उसको अगर गाइड करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो सीख है खुद की वो शायद रुक सकती है,
0: स्वतंत्रता वहां छीन जाएगी,
1: वहां उसकी छीन जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा आजादी दें। और अगर आप करना चाहें तो उसको ऐसा माहौल क्रिएट करके दे सकते हैं, वो आपके हाथ में।
0: जी बिल्कुल सहमत हूं।
1: वो चीजें अगर आप घर के अंदर, आपका व्यवहार, आप बातें कैसे करते हैं, आपका स्टाइल, बच्चा जरूर आपसे सीखेगा। तो इसलिए आप अगर अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आप उस माहौल में रहेंगे और बच्चा उसी माहौल से वो सारी चीजें सीखेंगे। एक हाथ 1% हो सकता है कि वो आपके हिसाब किताब के लिए आया होगा, तो वहां आप कितना भी अच्छा माहौल देगा तो वो उदम ही मचाएगा, तो वो चीजें अलग बात है। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए हम ये एपिसोड नहीं कर रहे हैं, हम जनरल एपिसोड कर रहे हैं, तो ऐसा होता भी है, तो वहां पर डॉक्टर अजय शुक्ला जैसे काउंसिलर्स जो है आपको हेल्प करेंगे, तो आप डॉक्टर अजय शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं इस विषय को लेकर और उनसे बात भी कर सकते हैं। कभी आपको लग रहा है कि कहीं बार हम लोग सब कुछ करने के बावजूद भी वो चीजें नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी सिचुएशन होता है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत बार इलाज करते हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन वो हम ठीक ही नहीं होते हैं। और हो सकता है कि बाय चांस आप साल भर के बाद जो है वो आपका हिसाब किताब पूरा हो गया और आपका जो दर्द है वो छोटे से किसी एक्सरसाइज से ठीक हो गया, आप योग कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, साल भर से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था।
0: जी, जी, जी।
1: तो ये भी क्या है कि साल भर आपका अकाउंट था वो अकाउंट पूरा हुआ और जब आपने योग सीखा तो फिर वो सेटलमेंट हो गया।
0: बहुत
1: तो इस तरह की भी चीजें आती हैं, तो हमें ये सारी चीजों को ओवरऑल होलिस्टिक रूप से सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि भाई ये चीजें क्यों नहीं हो रहा है, वहां पर अटक नहीं जाना है, अलग अलग पहलुओं को देखना है और ट्रायल एंड एरर जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे स्वीकार करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वो हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी बातें जो है बाल संसार के बारे में बताते रहते हैं। और मैं चाहूंगा डॉक्टर अजय शुक्ला जी आपका नंबर भी दीजिए, अगर हमारे कोई श्रोता आपसे जुड़ना चाहे तो बिल्कुल आपसे जुड़े।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 9131099097
1: एक बार फिर से बोलिए
0: 9131099097
1: तो ये डॉक्टर अजय शुक्ला जी का नंबर है। आशा करूंगा आप इसे रिपीट करके भी सुन सकते हैं, आराम से लिख लीजिए और फिर आपको लग रहा है कि डॉक्टर अजय जी से बात करना है तो बिल्कुल बात कीजिएगा, मैसेज करिए, मैसेज के बाद फिर आप कॉल करिए। तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, बाल संसार में फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें लेकर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी, भाग तो। लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय यश, पंकज, उन्नति, सैंडी, वेदांत, आदित्य प्रकाश, दृष्टि, आदित्य।

0: ओए जब से इन महाराज जी ने एक योगी का रोल क्या किया है कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गए?
1: और हवा के रोल में ये तो हमें भी हर समय टोकते रहते हैं, यहाँ कूड़ा मत फेंको, वहाँ पानी क्यों गिराया, लोगों को पीने नहीं मिलता, वेस्ट करना पाप है।
2: अरे फिर ऐसे हमारी कौन सुनेगा जब हम ही अपना आचरण ठीक नहीं करेंगे।
3: बात सुनो पानी जी, आप बहुत शिकायतें लगा रहे हो।
4: और करूँ भी क्या धरती जी, ओहो सॉरी सॉरी, या आप पृथ्वी कहलाना ज्यादा पसंद करेंगी।
1: शांत हो जाओ, मुझ हवा को प्रणाम करो।
0: वाह भाई वाह, तुम्हें ही क्यों?
1: क्योंकि मानव बिना भोजन के कई दिन जीवित रह सकता है, बिना पानी के कुछ ही दिन, और बिना हवा के
5: कुछ ही पल। जय हो।
6: शुरू हो गई तुम लोगों की मस्ती, इतना क्यों हंस रहे हो? जोक क्या है?
7: लॉबस्टर थेरेपी।
0: जोक तो मैं बताता हूँ। कहते हैं पता है सांप को हाई फाई क्यों नहीं देना चाहिए?
8: क्यों?
0: क्योंकि वो तुम्हें डस देगा।
6: सब तैयार हो, शुरू करें?
5: हाँ हाँ हाँ दी, कल के आगे से प्रैक्टिस करते हैं।
4: अच्छा कल हमने बिश्नोई जाति की अमृता की कहानी तक किया था ना, इसके बाद ना यहाँ पर हम दिखाएंगे जैसे धरती पर मानव की लापरवाही से वही हो रहा है जिसका डर था। हम सब तरफ तबाही का सीन दिखाएंगे,
1: जैसे अचानक जोर से बिजली का कड़कना और जैसे तूफान का आना।
4: हाँ चारों ओर त्राही त्राही, चोर चीख पुकार।
3: हाँ मिली जुली घबराई आवाजें, सब इधर उधर भागते हुए।
6: अच्छा जैसे पार्श्वभूमि से घबराए स्वर में, फिर ये डायलॉग किसकी बारी है बोलो?
4: मेरी। ये क्या, क्या ये धरती का अंत है?
1: अरे बचो, भागो भागो।
0: कहाँ भागे, सब तरफ बर्बादी है।
1: ये धरती जैसे बीच में से फट रही है।
9: बचाओ, ये पानी का सैलाब,
10: चारों तरफ सब टूट के बिखर रहा है, सब इमारतें पेड़, और ये क्या, सब इस तूफान में पानी में बह रहा है।
11: प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की

0: सचन।
1: उधर तो मारे जा रहे हैं
2: बच्चों, उधर से देखो कितना भयानक लावा बहता हुआ आ रहा है, जैसे सबको निकल ही जाएगा।
3: सब मवेशी, बच्चे, बुढ़े सब डूब रहे हैं।
4: करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
0: मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
4: विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
0: औरों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
5: अच्छा, यहाँ तुम सब स्टेज पर चारों तरफ कोहराम दिखाओगे और पीछे से पार्श्वभूमि में जैसे किसी रेडियो या टीवी पर कोई जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर खबरें सुनाता हुआ।
6: कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या हुआ है। पूरे विश्व भर में तहस नहस की खबरें आ रही हैं। अंडमान द्वीप, सिशेल्स, मॉरिशस और लक्षद्वीप सब पानी में समाते हुए। हांगकांग से भी यही खबर है। भारत का दक्षिणी भाग हिंद महासागर का कहर झेलता हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ये अर्थ का टिपिंग पॉइंट है, सब खत्म होने जा रहा है। उपग्रह से आए हुए चित्रों के अनुसार धरती पर कई जगह से धुआं और बिखराव स्पष्ट दिखता हुआ। कहीं धरती के सब एलिमेंट्स बिखर तो नहीं रहे हैं।
7: यहाँ जैसे हम अपने प्रधानमंत्री जी का जनता के नाम संदेश सुना सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की आवाज में।
8: मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि इस विश्व संकट के समय में धीरज रखें। सुरक्षा कर्मी दुर्घटनाग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। कई हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं।
9: फिर जैसे बिजली के झटके और अचानक से गहरा

0: आटा, अब आगे अंधेरा होगा और हम सब पात्र मंच से चले जाएंगे
1: और फिर केवल एक योग करते हुए व्यक्ति पर स्पॉटलाइट होगी।
2: पार्श्वभूमि में गहरी सांसों की आवाजें होंगी और गहराई से आती ओम की ध्वनि।
3: और फिर वह योगी जैसे अपने आप से बातें करेगा।
4: यहाँ मैं योगी का रोल करूँगा, मैं आगे आता हूँ।
5: आगे आकर बोलो।
4: ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे ये पेड़, धरती, वायु और जल। मेरी ये नित्य की प्रार्थना, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय का पाठ सिर्फ रटने के लिए नहीं है, जरूरी संदर्भ में भी इन श्लोकों का कोई महत्व होगा। हमारे पर्यावरण के अलग अलग भाग, पेड़, धरती, हवा और जल कितने परेशान हैं, जो हमारा पालन कर रहे हैं। हम उन्हें ही नष्ट करते जा रहे हैं, उन्हीं का विनाश कर रहे हैं, तो हमारे विनाश में क्या दे। यहाँ फिर मैं घुटने टेकते हुए बैठ जाता हूँ।
5: ठीक है, आगे तुम प्रकृति से बात करते हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर करुणा भरी आवाज में प्रार्थना की तरह चलो बोलो।
4: हे प्रकृति, रास्ता दिखाओ। मैं सारी मानव जाति की ओर से हाथ जोड़कर पूछता हूँ, हम मानव इस समस्या का क्या हल निकाल सकते हैं? तुम ही बताओ, पेड़ों, जल, वायु, पृथ्वी माँ, हम क्या करें जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए? हमारी वैदिक प्रार्थना का पालन करने में हमारी मदद करो। हम असत्य से सत्य की ओर बढ़े, हम अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़े और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़े।

0: अब पार्श्व भूमि में ऐसा म्यूजिक होगा जैसे जैसे अब सब ठीक हो रहा हो। हम सब आगे आते हुए एक एक करके बोलते हुए, हमारा जैसे चक्र घूमता हुआ, एक एक बारी बारी आगे आकर बोलता हुआ,
1: धरती पर गंदगी फैलाने से सबको रोकना होगा।
2: इसके लिए या तो सब बेकार चीजों को रिसाइकल करना होगा या डिकम्पोज करके खाद बनाओ,
3: अपनी जरूरतें घटाओ।
0: हमारी माँ नानी दादी जब पुराने कपड़ों के थैले बनाती थी तो कुछ बुरा नहीं करती थी।
4: सब मिलकर एक ही कमरे में टीवी देखते थे तो प्यार के साथ साथ बिजली कम खर्च होने से धन भी बढ़ता था।
5: कसम खाओ बल्कि सब बच्चों को ही बचपन से ही जैसे कसम दिलवाओ कि अब से हम सारा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे,
6: इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसका उपचार करेंगे।
7: अच्छा है। और हवा, उसे प्रदूषण से बचाना तो अब अत्यधिक जरूरी है। वायुमंडल की ओजोन लेयर में छिद्र, एंटार्क्टिका के ऊपर, चलो वहाँ तो कोई स्थायी रूप से रहता नहीं, पर कब तक बचोगे, अब तो सर पे आ बनी है।
1: और कहते हैं ये छिद्र बढ़ता ही जा रहा है, कई तरह के त्वचा के कैंसर।
2: कहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे धूप में बाहर घूमना ही दुश्वार ना हो जाए, वहाँ तो बिना किसी क्रीम या छतरी के धूप में घूमने की सख्त मनाही है।
3: हमारे देश में तो कैसे हम सर्दियों में धूप सेका करते थे।
0: उसके लिए हम कहेंगे अगर मानव जीवित रहना चाहता है तो फैक्ट्रियों और वाहनों के धुओं को कम फैलाओ,
4: कारपूल सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करके जहरीले गैसें कम हवा में फेंको,
5: मतलब कम निजी वाहन चलाओ,
6: फैक्ट्रियों में भी आधुनिक उत्पादन साधनों का प्रयोग करके कम धुआं हवा में फेंको,
1: सोलर एनर्जी का प्रयोग करो, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब का प्रयोग ज्यादा करके पेट्रोल कोयले का कम प्रयोग करो,
2: क्योंकि ये सदा

0: बस नाटक वाटक तो ठीक है, पर आज हम खुद क्या कर सकते हैं?
1: वो देखो वहाँ कूड़े का ढेर, तो चलो साथियों सबसे पहले उस कूड़े के ढेर को जो है
2: ये आज हमारे हाथों से बच न सकेगा। दीदी आइए आप सब मिलकर हॉल के बाहर के पार्क को साफ करें।
3: सफाई के लिए अभियान हमारे दिलों से शुरू हो।
1: हाँ, आज देश को हमारा मिलके काम करने का नेक इरादा चाहिए।
0: फिर सब मिलकर पिकनिक मनाएंगे, वहाँ कैंटीन में समोसे की दावत मेरी तरफ से।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटा करो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जब भी हम भारत के बारे में सुनते हैं तो कई बार हम बस यही सुनते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि ऋषि संस्कृति भारत की संस्कृति है। सुना ही होगा आपने इस प्रकार की कई बार बातें, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत देश कृषि प्रधान देश हमेशा से नहीं था। कुछ 250-300 वर्ष हुए होंगे भारत को कृषि संप्रदाय के साथ जुड़ते हुए। किसान भी थे भारत में, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहां शिल्प, शिल्पकार, उद्योग, प्रौद्योगिकी, किसान, कृषि हर एक के लिए समान स्थान था। लेकिन समय बीतता गया और फिर जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के दौरान भारत में सभी शिल्पों को लगभग बहुत नुकसान पहुंचाया और शिल्पकारों को जबरन किसानी में या कृषि की ओर धकेला, जिसकी वजह से किसानी या कृषि उसको नुकसान तो पहुंचा ही, लेकिन हमारे शिल्प को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। शिल्पी, शिल्पकार और शिल्प तीनों को ही बहुत आघात पहुंचा। लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे हमारे आसपास, आपके आसपास लोग हैं जो शिल्प और शिल्पकारों के लिए अपने जीवन को पूरी तरीके से न्योछावर कर चुके हैं। 107

0: तो आर्ट एफएम पे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। और आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ एक और खास मेहमान को। मेरी बातों से आपको पता ही लग गया होगा कि ये मेहमान कुछ अलग है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आदरणीय भ्राता अजय कुमार मंडावी जी। सबसे पहले तो अजय कुमार मंडावी जी का हम हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इससे पहले कि अजय जी से हम हमारी बातचीत शुरू करें, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अजय कुमार मंडावी जी जो हैं वो हमारे भारत के धान के कटोरे छत्तीसगढ़ के कांकेर जगह से आते हैं। कांकेर जो कि बस्तर के पास में है, बस्तर जो कि आदिवासियों का बहुत ही ऐसे कहा जा सकता है कि हॉटस्पॉट है, या बस्तर जाना ही जाता है आदिवासी शिल्प की वजह से। तो बस्तर से हैं हमारे अजय कुमार मंडावी जी। और अजय कुमार जी की जो खासियत है वो ये है कि वो काष्ठ शिल्पकार है, अर्थात उन्होंने लकड़ी के ऊपर अपनी कला का ऐसा अद्भुत अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है जिसने आज भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी उनके नाम को और उनके साथ साथ पूरे देश के नाम को रोशन किया है। उनके काष्ठ शिल्प में उनकी रुचि, लेकिन काष्ठ शिल्प के साथ साथ पूरे समाज में जिस प्रकार का वो परिवर्तन ला रहे हैं, इस रुचि के वजह से और इसके प्रति जो उन्होंने सेवा की है, इसकी वजह से भारत सरकार ने 2023 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए बातचीत का दौरा शुरू करते हैं अजय कुमार मंडावी जी के साथ। अजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे साथ आप जुड़े हैं। मुझे दिख रहा है कि आप कार के अंदर बैठे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से आप ट्रैवल करके या यात्रा करके जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन आपके इस व्यस्तता भरी जिंदगी में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, तो सभी श्रोताओं की तरफ से मैं आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? सबसे पहले
1: ब्रह्म कुमारी संस्थान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि छत्तीसगढ़ और बस्तर जैसी छोटी सी जगह में कोई कलाकार कुछ काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ आप।
0: जैसे अजय जी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे के बस्तर के छोटे से जगह में छोटा सा कलाकार, ये आपकी नम्रता को दर्शाता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ना छत्तीसगढ़ का महत्व छोटा है, ना बस्तर का महत्व छोटा है, और ना उसमें रह रहे अजय कुमार मांडवी जी का महत्व छोटा है, क्योंकि आपने न केवल देश में ही या न केवल अपने आसपास के परिवेश में, लेकिन पूरे विश्व तक में काष्ठ शिल्प को एक नया आयाम दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम उस शिखर की कहानी को जानें, हम उसके तलहटी के कहानी को जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुआ, बचपन आपका कैसा था, आपका परिवार, परिवेश, संस्कार, परिजन, इन सब के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपकी जुबानी आपकी कहानी।
1: देखिए, बचपन तो बहुत खूबसूरत रहा और पिताजी मेरे प्राइमरी में शिक्षक थे। तीसरी कक्षा पढ़ने के लिए मैं उनके स्कूल चला गया जो एक गांव है कांकेर से 18 किलोमीटर दूर, एक गांव महानदी के किनारे। तो वहां से बचपन में खेलने के लिए खिलौने बनाने से शुरुआत हुई, छोटा छोटा नाव। मैं नदी में पहली बार नाव देखा था, तो छोटा सा नाव अपने लिए बना के उसमें धागा बांध के चलाना, लगभग 8 साल की उम्र रही होगी मेरी। तो वो जो शौक था कि अपने लिए खिलौने खुद बनाना है, मैं 5वीं पास होके फिर कांकेर आ गया नरहरदेव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के लिए। तो वो दौर चलता रहा था। स्कूल के टाइम में भी जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हमारा घर कुछ एकांत में था, तो खेलने को कुछ था नहीं। फिर छोटे कोठे के घर बनाता था मैं, अपनी कापी का जो पुट्ठा होता था उसको फाड़ फाड़ के। तो वो रहा बचपन, और वो एक आदत सी पड़ गई अकेले रहते रहते। तो उसमें बाद में मैंने कॉलेज में आके लकड़ी में आर्ट बनाना शुरू किया। तो ये लकड़ी का दौर समझिए काफी सालों तक चलता रहा लगातार। और अभी ये था कि 2000 से एक अच्छे रूप में आर्ट बनाने लगा। कमर्शियल नहीं था मेरा आर्ट कभी भी, और अभी भी बहुत कम कमर्शियल है। 2010 में एक कलेक्टर ने मुझको ये कहा कि आप जेल में जो बंदी हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो नक्सल प्रभावित है, काफी हद तक जो नक्सलाइट्स हैं माओवादी, तो ये प्रभावित है और कुछ लड़के जेल में हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं।

0: है कि भाई मुझे मेरे लिए खुद खिलौने बनाने, किसी से मांगना नहीं है या पिताजी को परेशान नहीं करना है या किसी और से खिलौने देख करके, उनके खिलौनों को देख करके उनसे प्रभावित नहीं होना है, खुद का ही बनाना है, ऐसा संकल्प क्यों आया?
1: क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि छोटे छोटे, हाँ छोटे चक्के बना लो, छोटे छोटे उसको लकड़ी के टुकड़े में ठोक लो वो मेरी गाड़ी बन जाती है, या फिर और कोई ढक्कन है उसको लकड़ी में ठोक कर उसको सीधे चलाना, तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि गांव में रहते थे, पिताजी कोई रेडीमेड खिलौना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी एक कारण, और जो मार्केट था वो थोड़ा दूर था 3 किलोमीटर के करीब, तो उधर मैं जा नहीं सकता था, तो चलिए जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं अभी बच्चों को देखता हूँ कि वो शुरू से खिलौने के तौर पे, एक तो ढेर सारे खिलौने हैं उनके पास और दूसरा एक खतरनाक चीज है मोबाइल, वो है उनके पास, बच्चों के पास जो से रोना शुरू हुआ और माँ ने उसको मोबाइल थामा दिया, उसमें वो पिक्चर देखते देखते, तो जो देख रहे हैं बच्चे हर एक चीज को देख लेते हैं, फिल्में देख लेते हैं, कार्टून देख लेते हैं, इमेजिनेशन जो पावर है वो धीरे धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया।
0: कि हम जब मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जैसे आपका जो दौर है उस दौर में आपने खिलौने बनाए खुद के लिए, मैं समझता हूँ कुछ आपके दोस्त ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आपको देखा देखी बनाने का प्रयास किया होगा, तो आपने न केवल अपने लिए लेकिन उनके लिए भी सृजनात्मकता का एक दरवाजा खोला। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं, जैसे कि आपने बताया, मोबाइल से घिरे हुए हैं, मोबाइल में बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं उनसे घिरे हुए हैं, वो अगर चलो कोई माँ बाप ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं देते हैं, लेकिन कई ऐसे खिलौने हैं जो कि प्लास्टिक के बने हैं, रंग बिरंगे हैं, जो पर्यावरण के लिए उतने ठीक नहीं है लेकिन सस्ते हैं, टिकाऊ हैं, चल जाता है, बहुत कम पैसे में आ जाता है, तो अभिभावक इतना सोचते नहीं, उन्हें बस अपने बच्चे के लिए सोचना है, पर्यावरण आदि का सोचते नहीं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा टॉय मार्केट का या खिलौने के उद्योग का ऐसा है जो हमारे प्रकृति पर और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसे में मैं समझता हूँ आपका इसमें बहुत बड़ा एक रोल है या कहें एक भूमिका है जो आप निभा सकते हैं, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आपका क्या राय है?
1: हाँ, मैं वही बता रहा था, मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रकृति। जो बच्चे तो खिलौने के चक्कर में या मोबाइल के चक्कर में या टीवी के चक्कर में जो प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, आप अगर 4 साल या 5 साल के 100 बच्चों को पूछेंगे कि उसने कोई पौधा लगाया, तो आपको 99.9% ये जवाब मिलेगा कि वो पौधा लगाना जानता ही नहीं, कैसे होते हैं पौधे, क्या होता है ये। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, एक स्कूल है जयपुर में, वहाँ हमारे मित्र हैं सोहन लाल जी, और एक स्कूल है यहाँ अर्जुंडा में, उसमें तस्लीम एक है जो सोशल वर्कर जैसी हैं, उनके साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट का थीम कुछ यूं है कि जो बच्चा है स्कूल में, अगर LKG पढ़ने वाला या UKG पढ़ने वाला या जो भी हो, बच्चे के नाम से एक पौधा लगाया जाए और उस पौधे का ऑनर बच्चा होगा, वो पौधा प्लांट जो होगा वो इमारती लकड़ी का होगा, चाहे वो बांस हो, सागौन हो, साल हो, फमार हो, जो भी हो, इमारती होना चाहिए मैंने लॉन्ग टाइम के लिए वो, तो उस पौधे को उस बच्चे के नाम से लगाया जाएगा, बच्चा ऑनर होगा लेकिन एक उसके पीछे स्पॉन्सर होगा, तो अगर टीचर उस पर उसके लिए स्पॉन्सर है तो उसमें हर महीने उस बच्चे को 10 रुपए देंगे, और वो भी प्रेयर ग्राउंड में खड़ा करा के, ये बच्चे ने एक पौधा लगाया और इसके लिए इसको लिफाफे में वो करके, और बकायदा मैंने सम्मान निधि 10 रुपए मात्र उसको देने हैं, तो वो जो बोतल में पानी लेके स्कूल आएगा निश्चित तौर पे वो आधा बोतल पानी अपने पौधे के लिए बचा देगा, तो एक रिलेशन डेवलप होगा एक प्लांट और एक बच्चे के बीच, वो घर में क्या कर रहा है डजंट मैटर, लेकिन वो स्कूल में या स्कूल के कैंपस में या और कहीं, तो वो एक रिलेशन डेवलप होगा, उस पौधे को बढ़ता हुआ देखना उस बच्चे के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अगर वो बांस का पौधा है मान ले जाए, तो 5 साल में वो पौधा मैच्योर हो जाता है और हमने उस बच्चे को सिर्फ 3 साल पैसे देने हैं, तो कोई टीचर अगर उसको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसने मात्र 3 साल में 360 रुपए दिए उस बच्चे को, 5 साल बाद जब वो पौधा कटेगा बांस का, तो बांस को पूरा एक साथ नहीं काटते, बांस का अगर 10

0: भी कटता है उसमें, तो वो 6 से 8 हजार रुपए का होता है। तो उसमें भी चूंकि एक ऑनर है एक स्पॉन्सर है, उस पैसे को 50-50 करेंगे। तो कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं होता कि आप जमा करें 360 रुपए और 5 साल में उसका 8 हजार रुपया या 6 हजार रुपया हाथ में आ जाए। वही पौधा अगर टिकवुड का है, वही पौधा अगर टिकवुड है, तो 15 साल में उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए होगी। तो LKG पढ़ने वाला बच्चा अगर हायर क्वालिफिकेशन के लिए आगे जाता है तो उसकी अपनी मेहनत का पैसा उसकी जेब में होगा। पैसा तो अलग मैटर है, मैंने पैसे के बारे में इसलिए फोकस किया क्योंकि बच्चे को अगर कोई सम्मान राशि देते हैं, चाहे वो 5 रुपए हो, 2 रुपए हो, 10 रुपए जो भी हो, तो उसका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका पौधे के प्रति एक रिलेशन डेवलप होगा, एक अलग अलग सा रिलेशन डेवलप होगा। तो इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं, एक तो अर्जुंडा में और दूसरा जय जयपुर में। तो कुछ बच्चे हैं 50-60 बच्चे जिनके लिए एक एक बच्चे के लिए 2-2 पौधे लगाए गए हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का चाहे आर्थिक पहलू देख लीजिए या उसका वैचारिक पहलू देख लीजिए कि एक बच्चे के मन में पौधे के प्रति कितना लगाव डेवलप हो रहा है, तो मेरे लिए वो चीज इम्पोर्टेंट है। कि
1: ये एक आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जो स्वाभाविक संबंध होना चाहिए प्रकृति के साथ बचपन से हमारा, वो धीरे धीरे जो खो जा रहा है या हम खो दे रहे हैं, उसे हमें बदलना है। और उसके लिए जो आपने ये नया एक तरीका निकाला जिसमें बच्चे जो है, ना केवल बच्चे लेकिन अभिभावक और शिक्षक मिल करके पौधे के साथ, प्रकृति के साथ अपना जो संबंध है उसे वापस से साझा कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर आपने समझाया। मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथी जो सुन रहे हैं वो भी इसका कुछ ना कुछ उपयोग लगाएंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार के जो पीढ़ी है, जो प्रेजेंट पीढ़ी है, जो आगे चल करके परिवार का और समाज का ख्याल रखने वाली पीढ़ी है, उनको जरूर प्रेरित करेंगे कि प्रकृति के साथ उनका एक संबंध हो। लेकिन यहाँ एक सवाल भी ये उठता है अजय जी कि जब आपको तो शिल्प के लिए समझिए कि लकड़ी की आवश्यकता है, कई लोगों के लिए लकड़ी की आवश्यकता शिल्प नहीं होती है लेकिन केवल पैसा ही होता है। और देखा जाए तो आज इसी कारण से इतने पर्यावरण में, इतने जंगलों में इतने पेड़ कट चुके हैं क्योंकि केवल हमने उनको अपने लिए जीवन का एक माध्यम, जीवन के साधनों का एक माध्यम समझ लिया। ये हम भूल गए कि जिस पेड़ की लकड़ी से हम केवल एक साधन बनाने वाले हैं, उस पेड़ के पत्तों से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो कई बार आपको भी ऐसा सुनने को मिल रहा होगा कि भाई आप ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसे काम को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे प्रकृति का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे लोगों के प्रश्नों का आप क्या जवाब देते हैं?
0: ये बहुत क्लियर जवाब, मैं जो आर्ट बनाता हूँ पर्यावरण के नुकसान का है जो भी है। जैसे मैं वुडन आर्ट बनाता हूँ, जाहिर सी बात है मुझको लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं बहुत कम और बहुत पतली लकड़ियां इस्तेमाल करता हूँ। और वो लकड़ी आरा मिल में जो या जहां से मैं खरीदता हूँ वहां जो वेस्टेज लकड़ियां हैं उन लकड़ियों से पूरा आर्ट बनता है। तो मुझको लगता है कि बहुत बहुत कम में और बहुत खूबसूरत आर्ट हम लोग बना पाते हैं क्योंकि मूर्तियां नहीं बनाते। आपने देखा होगा कि हम लोग कैलीग्राफी का काम करते हैं जिसमें स्केल पट्टी इतनी पतली लकड़ी में उसमें सारे अक्षर काटे जाते हैं, तो वो उस हिसाब से भी। और समझिए, देखिए प्रकृति का कहीं ना कहीं एक टुकड़ा नुकसान तो कर ही रहा हूं मैं, लेकिन उसकी भरपाई के मैंने एक पूरी योजना शुरू की है कि अगर इस योजना के तहत लोग जुड़ते हैं तो मेरे दो के
1: बच्चे। मैं भी यही चीज कहना चाह रहा था कि साथियों उन्होंने अपने काम के जरिए दो चीजें की, एक जो बर्बाद हो रही लकड़ियां थी उनको पहले उन्होंने इस्तेमाल में लाया जो वेस्ट हो रहा था, और उस बर्बाद होने वाली लकड़ियों में उन्होंने कलाकृति का निर्माण किया, एक ऐसी चीज का निर्माण किया जो कि कला है। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी योजना का भी शुरुआत किया जिसके तहत लोग प्रकृति से जुड़े। तो जैसे हर व्यक्ति की एक आयु होती है, ऐसे ही पेड़ों की भी आयु है, उनका भी एक जीवन काल है। तो उस जीवन काल के तहत या उसके पर्यंत अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मुख्य चीज जो यहाँ हमें अजय जी ने समझाई वो ये कि पहले देखिए अपने आसपास में कौन सी चीजें खराब हो रही हैं या जिनका इस्तेमाल पूरा नहीं हो रहा है, और किस प्रकार से मैं अपने विचार क्षमता से, मैं अपनी शिल्प कला के द्वारा कैसे उस वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन कर सकूं, उस चीज को आबाद कर सकूं जिसे हम अक्सर बर्बाद कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है या ऐसे कोई आपके पास तरीका है जिसके द्वारा आपने अपने आसपास के खराब हो रहे बर्बाद हो रहे चीजों में आबाद किया है, उन्हें बेस्ट बनाया है, तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं और लोगों को भी सुनाने का ये मौका जरूर नहीं चूकिएगा, जरूर सबको सुनाइएगा कि आप क्या खास करते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित श्री अजय कुमार मंडावी जी से, जो कि छत्तीसगढ़ के एक बहुत सुंदर से इलाके से हैं, जिस इलाके के लिए आप सब मैं समझता हूँ कभी न कभी जाने का मन रखते होंगे, और वो है बस्तर। बस्तर जो कि एक आदिवासी क्षेत्र है। आइए थोड़ा सा हम जानते हैं अजय जी के नजरिए से कि बस्तर है क्या, कौन है वो लोग जहाँ वो रहते हैं। अगर मैं आज आता हूँ बस्तर में तो मुझे क्या देखने को मिलेगा अजय जी?
0: बेहद खूबसूरत है बस्तर, समझिए प्रकृति का सबसे चहेता पुत्र है बस्तर, जहाँ नदी नाले झरने और घनघोर जंगल, सेकेंड लार्जेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड अंगेर वैली हमारे यहाँ है, जंगली जानवर है, लोग जो ट्राइबल कल्चर आपको देखने को मिलेगा, विविधताएं हैं, हर 10-15 किलोमीटर में बोली बदल जाती है और रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, तो इतनी विविधता है कि समझिए मुझको लगता है कि 4-6 महीना कम है बस्तर घूमने के लिए, और तब भी आप कहेंगे कि यार बहुत सारी चीजें अछूती रह गई। तो बेहद बेहद खूबसूरत है। लगभग 1986 में जब यहाँ कनेक्टिविटी बहुत कम थी, तब मैंने साइकिल में पूरा बस्तर घूमा था। एक महीने का टूर था हमारा, हम 3 मित्र थे, तो हम लोग बीहड़ जंगलों में और रोड बहुत कम इस्तेमाल किए थे, तो 1 महीने तक हम लोग घूमते रहे उस विविधता को सिर्फ देखने के लिए। तो अब समझ में आता है कि इस समय तो उम्र कम थी इसलिए हम घूम गए, अब घूमना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है और दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं भले कम संख्या में हो, क्योंकि विदेशों से जो लोग आते हैं भारत, उनका मुख्य उद्देश्य रहता है या तो हिमालय देख लें या ताजमहल देख लें और उससे आगे और थोड़ा सा राजस्थान आसपास देख लें, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, अभी भी कोई लंदन से अगर आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है या प्रोफेसर होगा या साइंटिस्ट होगा, तो सारी दुनिया से जो बुद्धिजीवी आते हैं उन लोगों के लिए तो समझिए बस्तर स्वर्ग है, क्योंकि एक बार नहीं आते, एक बार जो आ गया आदमी वो दोबारा हर साल आएगा ये तय मानिए। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेशों से आने वाले हैं और जो पारिवारिक मित्र हो गए हैं, क्योंकि 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, वो आदमी हर साल लगातार आ रहा है और महीने भर 15 दिन जितना भी समय रहे वो यहाँ रुक के जा रहा है। तो बुद्धिमानों का स्वर्ग है बस्तर। और
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं तो आपने सुना अजय जी ने कहा बुद्धिमानों के लिए स्वर्ग है बस्तर। अगर आप खुद को बुद्धिमान समझते हैं तो जल्दी से स्वर्ग में जाने का आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अजय जी ने तो ये कह दिया कि बुद्धिमानों के लिए स्वर्ग है बस्तर, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा न्योता भी है खुद को बुद्धिमान साबित करने के लिए। जो दोस्त आपको कहते हैं कि तुम में अकल नहीं है, आप बस्तर होके आइए और उनको बस्तर की उन खूबियों से परिचित कराइए जिससे उनको लगे कि भाई मैंने तो खो दिया ये मौका, लेकिन इसने इस मौके को आजमाया है, अपनाया है, तो ये तो पक्का मेरे से ज्यादा होशियार है। लेकिन बस्तर की कहानियों में जब हम सुनते हैं तो अक्सर करके बस्तर की कहानियों में ये जो आपने विविधताओं की बात की, ये जो आपने रंग बिरंगे प्रकृति और जंगल और आदिवासियों के जीवन शैली, उनकी बोली, उनके खान पान, उनके पहनावे की बात की, इनका जिक्र कम, लेकिन आतंकवाद या नक्सलवाद या खून खराबा, शोर शराबा, इसके लिए थोड़ा बस्तर थोड़ा ज्यादा जाना जाता है। तो ये कैसे हो गया कि जो बुद्धिमानों का स्वर्ग है वहां पर इस प्रकार का जो एक मैं कहूंगा अमानवीय जीवन शैली कैसे तैयार हो गया?
0: देखिए उसकी तैयारी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, आज तक पिछले मैं जेल में मेरा आना जाना 13 साल से है और नेचुरलिज्म की शुरुआत 1986 से मैं जब टूर में गया था तब भी मैंने देखा, मिला, सुना, सब कुछ हमारी नजरों के सामने। आज तक किसी पर्यटक को, किसी भी नक्सल

0: गिरोह नक्सल संस्था ने कभी कोई नुकसान नहीं किया। आप तय मानिए कि आप लंदन से आए हैं यहाँ घूमने के लिए, आप निश्चिंत होकर घूमिए। आप दिल्ली में अनसेफ हैं या और कोई जगह आप अनसेफ हैं, लेकिन यहाँ आपकी सुरक्षा की 100% गारंटी मैं देता हूँ। या यहाँ का हर एक आदमी आप रास्ता पूछेंगे वो आपको आपके घर तक पहुँचा देगा। तो एक तो सिंप्लिसिटी है लोगों में, लूट खसोट की कतई भावना नहीं है। पूरे बस्तर टूरिज्म में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, कल भी हमारे साथ करीब देश के कोने कोने से 10 महिलाएं थी, तो उनको लगा कि यार इतना सरल लोग कैसे हैं। तो कभी भी
1: वैसे भी कहा जाता है सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, क्योंकि मैं खुद भी छत्तीसगढ़ से हूँ तो मुझे इस चीज का पता है, क्योंकि हमारी भाषा या हमारे पहनावे या बोलचाल में एक सादगी है, एक मुलायम कहेंगे हमारी भाषा को, क्योंकि हिंदी तो खैर सब बोलते हैं लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हिंदी को लोग मुलायम ही हिंदी कहते हैं, तो वो एक कोमलता या सरलता तो है। लेकिन ये जो आपने बात आज हम सबके सामने जाहिर की कि भले नक्सल है लेकिन कभी भी वो पर्यटकों के लिए नुकसानकारी नहीं है, नक्सलवादियों का खुद का कुछ मामला हो सकता है सरकार के साथ होगा या जो वहां के पहले के जो जमींदार आदि रहे होंगे उनके साथ का कुछ नोकझोंक होगा, लेकिन दोस्तों मेरे आपके जैसे पर्यटकों के लिए वहां पर पूरा पूरा प्यार है, जैसा कि अजय जी ने कहा कि वो एक स्वर्ग है, तो उसका अनुभव करने के लिए अपने मन में से सारे संकल्प संकोच इनको बाहर निकाल करके खुले दिल से खुले मन से वहां जाने की आवश्यकता है। अजय जी, यहाँ पर मुझे आपसे एक चीज पूछना था कि अधिकतर समय ये देखा गया कि जो नक्सली हैं इनमें युवाओं की संख्या ज्यादा होती है और युवाओं में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, तो इस वजह से जेल में भी आपको ज्यादा से ज्यादा या अधिकतर या कहें सारे के सारे पुरुष नक्सली ही मिले होंगे जो कैदी थे, तो आपको लगता है कि इनके बचपन से लेकर के युवावस्था तक आने के बीच में कोई एक ऐसा स्थान होता होगा, कोई एक ऐसा पड़ाव होता होगा जहां पर इनकी विचारधारा चेंज हो जाती है? अगर आपको मौका मिले तो वो कौन सी जगह है, कहां पर जाके आप उनसे काउंसलिंग करना चाहेंगे, कौन से मौके पे आप उनसे मिलना चाहेंगे ताकि उनका जीवन जो है उस तरफ ना जाए?
0: देखिए, बचपन से संभालना बहुत जरूरी है, बच्चों में पर्याप्त मनोरंजन, ये कहना चाहिए कि लैक ऑफ बिजीनेस, बच्चे व्यस्त हैं, चाहे जिस किसी काम में व्यस्त रहें, उनके गार्जियंस उन लोगों को चाहे खेल में व्यस्त रखें। अभी देखिए पोटेंशियल की बात करूंगा मैं सीधे, यहाँ के बच्चों में या ट्राइब्स बच्चों में जो क्षमता है, यहाँ अबुझमाड़ आपने सुना हुआ है
1: जी,
0: जिसका नाम ही अपने आप में अबुझमाड़ है, तो वहां के जो बच्चे हैं मलखंब में आज अंतरराष्ट्रीय खेल रहे हैं
1: जी, मलखंब हुआ, कबड्डी हुआ, इवन मैराथन आदि में भी हमने देखा है अक्सर कि जो हमारे भाई बहन ऐसे ट्राइबल एरिया से आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, उनमें क्षमता बहुत होती है, उनका रेजिलियंस, टॉलरेंस, सहनशीलता या उनके अंदर जो ये साहस है या कहे जो एक रास्ता है वो बहुत दृढ़ होता है। तो जो ये आपने बात कही कि उनके पोटेंशियल को पहचान करके उनको एंगेज करने की जरूरत है, उनको व्यस्त रखने की आवश्यकता, ये एक बहुत अच्छा आपने उपाय बताया। कोई दूसरा सुझाव?
0: दूसरे सुझाव के बारे में क्या ही कहा जाए, एक ही सुझाव काफी था। मैं हमेशा से कहता था कि अगर अच्छी क्रिकेट अकेडमी होती यहाँ तो आज इंडिया टीम में हमारे बच्चे होते निश्चित तौर पर, या किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज में, बस सिखाने की देर है, यहाँ स्किल्ड करने की जरूरत है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें मैंने भले पढ़ाई में हम बहुत तेजी से उनको आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि घर में गार्जियन पढ़ाने वाला नहीं है, और जो सिखाने का है, मैं इसीलिए सफल हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही मेरा सारा ट्रेनिंग सेंटर रहा, और अब जब जेल में है तो समझिए उसके पास पूरा समय है और मेरे पास पूरा समय है, तो उस समय का ही सदुपयोग किया हमने। और एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि 2018 में जेल ही के अंदर के 9 बच्चों के साथ मिलके हमने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एक बड़े रूप में बनाया और वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मैंने

0: हिंदुस्तान में एकमात्र जेल है जिसका अपना विश्व रिकॉर्ड है, और दुनिया में कितने भी देश हों लेकिन उनका एक राष्ट्रगीत वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये बड़ी बात थी 18/1/2018 की। तो इतनी क्षमता
1: ये जो आपने काम किया कि क्षमता, समय और परिश्रम, इन तीनों का जो ये आपने एक सुंदर मिश्रण किया, मैं समझता हूँ ये आपके सफलता का राज है कि सामने वाले की क्षमता को पहचाना, उनके आसपास में जो मौजूद माहौल है उस माहौल में से समय को ढूंढ निकाला, और उसमें परिश्रम आपने भी किया और उनसे भी कराया, जिसकी वजह से आपको आज ये सफलता मिली है। और न केवल आपको लेकिन आपके सानिध्य में जो लोग आए हैं उन्हें भी आज हम सफल ही कहेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव पास्ट को, एक नकारात्मक भूतकाल को छोड़ करके वो एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ पाए हैं, इसकी वजह से आज हम उनको सफल कह सकते हैं। आपने ये जो 400 लोगों के साथ, जो 400 नक्सली थे जिनके साथ आपने काम किया, उनके जीवन में परिवर्तन लाया, तो उनमें से कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू गई, क्योंकि आपने कहा आप उनकी कहानियों को सुनते हैं, अगर बेनाम रख करके भी आप किसी की एक कहानी हमारे साथ शेयर कर सके जिसने आपको बहुत अंदर तक टच किया हो या आपके सोच विचार में बहुत बड़ा एक जगह बनाया हो, तो वो आज हम सुनना चाहेंगे आपसे।
0: देखिए, 400 स्टूडेंट, 400 काउंसलिंग, 400 स्टोरी, और हर स्टोरी अपने आप में इतनी ज्यादा व्यापक होती है जिसको बयान करना मुश्किल है, लेकिन उसका कंक्लूजन यही चीज बताया कि आप और हम जैसे लोग सो कॉल्ड पथ प्रदर्शक, आप भी ज्ञान के रास्ते में किसी का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक बात है, तो हम जो पथ प्रदर्शक लोग हैं हम ही खतरनाक हैं सबसे, क्योंकि आप किसी भी भटके हुए को सही राह दिखा सकते हैं, और एक पथ प्रदर्शक वो होगा जो किसी भी बच्चे को एक ऐसे रास्ते में ले जा सकता है जो दिखने में खूबसूरत होगा, जिसमें वेपन्स होंगे, जिसमें खून खराबा होगा और जिसमें सारे खतरे मौजूद होंगे, एक थ्रिल होगा, और आप जो पथ दिखाएंगे उसमें एक शांति होगी, मन की शांति होगी, अंतरात्मा की शांति होगी, जीवन के प्रति सजगता होगी, और वो जो रास्ता दिखा रहा है उसमें भी अपने जीवन के प्रति सजगता होगी, लेकिन सामने वाले के ऊपर जब टारगेट करना होगा तो वो बड़ी आसानी से करेगा। तो हम जो सो कॉल्ड लाइक यू एंड मी जो टीचर्स हैं, वो उन लोगों की जवाबदारी है कि वो सही राह दिखाएं, वो सही राह दिखाएं। स्टोरी कहिएगा, अभी एक स्टोरी लिखा था मैं छोटी सी, तो एक स्टूडेंट था, मैं नाम ही बता देता हूँ उसका, और वो 3 बार करीब वो जेल आया था, और लगभग सारे लोग उसकी बात मानते थे, जेल में अगर उसने कुछ कहा तो वो तुरंत सारे लोग उसकी बात मानते थे। जेल से रिलीज होने के बाद उसी के गांव में हमने ट्रेनिंग सेंटर डाला, उसी के कहने पे सारी चीजें हुई, गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग भी आके वहाँ ट्रेनिंग करते थे, और जनपद के लिए सारा काम करना शुरू किया हमने, और बड़ा ट्रांजेक्शन था, इतना ट्रांजेक्शन था कि 10% पैसा जो नक्सल रिलीज हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, जितना अर्निंग हो रहा है उसका 10% हम मेल न्यूट्रिशन बच्चों के लिए गवर्नमेंट को डोनेट किए, हॉस्पिटल को डोनेट किए, ये भी एक शानदार काम रहा हमारा। लेकिन उस स्टूडेंट को कुछ यूनियन का बड़ा क्रेज था कि अमुक मजदूर हैं, मैं इनके लिए काम करूंगा, ये है इनके लिए काम करूंगा, और मैं उन सब चीजों के लिए मना करता था कि यार यूनियन वाले चक्कर में मत जाओ, या ये सब ये भला करना है तो छोटे बच्चों का भला करो, जो लोग हैं बड़े वो लोग अपना भला खुद कर सकते। तो बाद में दुखद ये हुआ कि उसकी हत्या हुई, वो आज भी अभी बताते हुए मेरे लिए दुख है, क्योंकि अब उसका परिवार है तो ठीक, चलो खेती किसानी जैसा भी है, लेकिन हर मोड़ पे मुझको खड़ा होना होता है, और घटना इतनी दर्दनाक थी कि मार के उसी के घर के पास में टांग दिया गया था उसको। मैं अपने सामने उसकी लाश को उतार के और 15 किलोमीटर ट्रैक्टर में डाल के और अपने नजर के सामने दिया दिखा के उसका पोस्टमार्टम करवाया, तो ये कहीं न कहीं मन को झकझोर देता है कि देखिए मैंने बचाने के लिए इसको इतनी कोशिश की, इतना एफर्ट लगाया, सब कुछ किया मैंने, सारा कुछ किया, लेकिन भाग्य से नहीं लड़ सकता मैं, तो 2-3 दिन बुखार आता है मुझको इस टाइप की घटना में।

0: लेकिन मैं ठीक हो जाता हूँ क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनको बचाना है इस उम्र से। तो अब जितने हैं वो तो अभी तक ऐसी कोई और घटना नहीं हो पाई है, दो घटनाएं थी बस इस टाइम की, तो इसलिए मैंने जिक्र।
1: ये जो आपने हमारे साथ इतनी एक मार्मिक घटना को शेयर किया, साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम उस मरहूम आत्मा के लिए भी बहुत बहुत दिल से दुआएं करते हैं, लेकिन एक चीज से हमको ये सीखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बोलने से या जिसके आपके साथ रहने से आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कभी बुरी बातें नहीं करेगा या ये व्यक्ति हमेशा मुझे ज्ञानवर्धक चीजें सुनाएगा, ऐसे व्यक्तियों के सुझाव को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। दूसरा, जहां पर खतरा है या जहां पर आपको पता ही है कि यहां पर उलझने हैं, वहां पर खुद को जबरदस्ती नहीं झोंकना चाहिए। अगर आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप उन उलझनों से जूझ सकें, उनका सामना कर सकें। दोस्तों, ये सेवा करनी भी है लेकिन होश और जोश का समन्वय रखते हुए सेवा करनी है, तभी वो सेवा सफल होती है। आइए हम इस बातचीत के दौरे में अजय जी से एक और ऐसा सवाल पूछते हैं जो मुझे लगता है कि हम सब को बड़ा रुचि होगा जानने में। अजय जी, आप भारत में कई जगहों पर भ्रमण कर चुके हैं, भारत देश ने आपको बहुत दिलो जान से न्योता दिया है, कोने कोने में, जगह जगह में, ग्राम ग्राम में आप हर जगह जाते हैं, और बस्तर को आपने ऑलरेडी स्वर्ग कह भी दिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि अलग अलग प्रांतों का भ्रमण करते हुए भी कौन सी एक चीज पूरे भारत को जोड़ती है, तो वो कौन सी एक चीज होगी? आपने भारत देश का बहुत भ्रमण किया है, सब जगह गए हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग संस्कार संस्कृति के लोगों से आप मिल चुके हैं, आपको क्या लगता है पूरे भारत को भारत कौन सी बातें बनाती है, कौन सी एक चीज आपने देखी जो पूरे भारत में आपको सेम दिखी, सिमिलर लगी?
0: देखिए, शुरू में ही आपने कहा कि भारतीय कलाकारों का जितना नुकसान किया गया अंग्रेजों के द्वारा, मैं कलाकारों के लिए एक शब्द बढ़िया बोलना चाहूंगा कि कलाकार है उन लोगों का हाथ काटने में न ही विज्ञान ने कोई देरी की और न ही राजनीति ने। आप बहुत दूर मत जाइए, अभी की ही बात बता देता हूँ कि अभी रेलवे में कुल्हड़ चलता था, अचानक प्लास्टिक के कप आने शुरू हो गए, एक साथ इतने हजार कुम्हारों के ऊपर वो हमला ही कहें उसको, और किसी ने उठ तक नहीं। और प्लास्टिक का जब कचरा बढ़ने लगा तो फिर पर्यावरण वाले लोग चिल्लाने लगे, और अब ये हो गया है कि ना तो वो सांप के मुंह में छछुंदर, ना वो गल सकते ना उसे निकल सकते। कलाकारों की और एक बात करता हूँ, पहले फ्लैक्स की पेंटिंग होती थी, आपने भी देखा होगा, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स में लोग चढ़ के पेंटिंग किया करते थे, और आपको छोटा सा भी बैनर लगाना है तो एक हैंडराइटिंग वाला लिखने चला आता था जो कपड़े में लिख के। अचानक रात को इंट्रोड्यूस किया गया फ्लैक्स और लाखों लोग बेरोजगार, कोई हल्ला नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई चक्का जाम नहीं, चुप बैठ गए। कुछ लोग सरवाइव कर पाए, कुछ लोग सुसाइड कर। तो जो ये कलाकार लोग होते हैं वो तो पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में एक जैसे, उनका हाथ काट दीजिए तो भी वो थैंक यू कर देंगे। तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो कलाकार की कौम है, जो सृजन करता है, वो बहुत सौम्य है, क्योंकि वही सृष्टि बनाता है ना, सारी चीजें वही बनाता है। उसका चाहे आप हाथ काटें, पैर काटें, वो आपको थैंक यू बोलेगा और बह जाएगा। तो दो उदाहरण मैंने दिया कुम्हारों के लिए, एक फ्लैक्स जो पेंटिंग करने वाले हैं उनका, तीसरा और दे देता। पहले आपने जुलाहों की कहानी सुनी, जुलाहे जो कपड़े बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, उन लोगों की कहानी, और वो लाखों की तादाद में थे बुलाए, अचानक मशीनें शुरू हो गई और जो जुड़ाहा एक दिन में एक साड़ी बुन पाता था या दो दिन में एक साड़ी बुन पाता था, दो घंटे में 200 साड़ियां निकल रही हैं मशीन से। तो नुकसान देखिए, एक मशीन ने 2000 लोगों के हाथ काट दिए, एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ कि यार मुझको रोजगार दिया जाए या मुझको कुछ दिया जाए, वो बेरोजगार हो गए। देखते देखते तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छी,

0: उसको खत्म करके, और आदमी हाईटेक हो रहा हूँ, हाईटेक हो रहा हूँ माने समझिए विकास की दौड़ में हम पीछे हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, ये सब फंडा अपना के, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी को तो अपनी चीजें बेचनी है ना। मल्टीनेशनल कंपनी को ये थोड़ी देखना है, वो तो देखेगा भारत में 10,000 हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो अफ्रीका की जमीन को सुखा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो दलदल है उसको सुखा लेंगे, वहां कर लेगी खेती, लेकिन यहाँ जो लोग मर जाएंगे वो रिप्लेस थोड़ी होंगे। हमको जगह के हिसाब से सारी चीजें बनानी चाहिए और देखनी चाहिए कि हाँ भाई पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, तो ये सब देखा नहीं जाता। और आज तो चलिए मैं इंटरव्यू में कह दे रहा हूँ ये सारी बातें आपके थ्रू बहुत दूर तक जाएंगी कि भाई मैनुअल लाइफ स्टाइल जो है वो ज्यादा अच्छा है बनिस्पत मशीनीकरण के। मैं अपने आर्ट में कभी मशीनें इस्तेमाल नहीं करता, रोज दो लोग एडवाइस करने वाले रहते हैं कि यार ये मशीन होता, लेजर कटिंग होता तो आप 10 चीजें बना पाते। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, एक मशीन से 10 चीज बनाने से अच्छा है कि मैं 10 बच्चों को एक एक सामान दे दूं कि वो बनाए और उसका इनकम उनके जेब तक जाए। जी
1: तो अजय जी ने जो एक यथार्थ परिपेक्ष हमारे सामने प्रस्तुत किया कि पूरे भारत देश में जो चीज उन्हें समान दिखता है वो है कलाकारों की वेदना, कलाकारों के लिए जो उनके दिल में प्यार है, वो उनके प्रति जो उनके लिए उनके साथ हो रहे अन्याय को एक करता है, चाहे वो जुलाहा हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो लकड़हारा हो या शिल्पकार हो, काष्ठ शिल्पकार हो, या वो चाहे मिट्टी के मूर्तियों को बनाने वाला मूर्तिकार हो जिसको रिप्लेस कर दिया है पीओपी ने, गणेश चतुर्थी हो या दुर्गा पूजा हो या कुछ भी, या मिट्टी के दियो को आपने रिप्लेस कर दिया है प्लास्टिक के बैटरी वाले लैंप के साथ, या यू कहे पापड़ बेलना वो बंद होकर के आपको चिप्स मिल गए हैं पैकेट में, तो ये जो औद्योगिकरण की वजह से हमारे पूरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो कला और जो बारीकियों को समझने की जो ताकत थी इंसान में वो धीरे धीरे खो गए, और कहीं ना कहीं मास प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं ज्यादा ज्यादा ज्यादा इसकी वजह से हम अपने अंदर इतनी कमियों को बढ़ाते गए कि आज हमारे सामने बहुत चीजें हैं, बहुत ज्यादा है हमारे सामने, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन है। तो दोस्तों ये एक बहुत सोचने की बात है कि आज आपके आसपास में आप कितनी ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं जिन चीजों ने किसी न किसी की नौकरी छीनी है, किसी न किसी के जीवन को थोड़ा खराब किया है। ये टाइम है कि मैं और आप सोचें और एक कदम उठाएं। अगर अगली बार हम किसी मेले में जाएं या किसी हस्तशिल्प कला आश्रम में जाएं या किसी दुकान में जाएं जहां पर हैंडवर्क या हाथ के कारीगर के द्वारा किया हुआ कुछ भी आपको दिखता है तो शायद उसका मोल भाव इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कला के पीछे वास्तविक जो मेहनत है, जो उस कला के पीछे जो परिश्रम है, वो एक दिन या कुछ घंटों की नहीं है, वो कई समय के, लंबे समय के तपस्या का परिणाम है। तो आइए दोस्तों, मैं और आप ये जरूर अपने अंदर संकल्प लें कि अपने आसपास में जो कलाकार हैं, चाहे वो एक कुम्हार है या एक मोची है, उससे उसकी कला को न छीने। आइए हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेजों में जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उनको भी प्रेरित करें कि वो कोई ना कोई कला जरूर अपने जीवन में सीखे, या जो कलाकार है उसका सम्मान करना जरूर सीखे। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। समाज और समाज की जो धुरी है वो सौम्य कलाकारों के जीवन पे खड़ी है, ये आज मैं और आप बहुत भली भांति समझ चुके हैं अजय जी के साथ बात करते हुए। अजय जी आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, आपने तो हमें बस्तर में बुलाया ही है, हम भी आपको न्योता देते हैं कि आप माउंट आबू आइए हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोता साथियों से कभी रूबरू दोबारा होने का हमें मौका दीजिए। लेकिन जाते जाते हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब एक शब्द में या कहें कुछ शब्दों में देना होगा। क्या आप तैयार हैं?
0: हाँ ठीक।
1: तो पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: जो मैं कर रहा हूँ निस्वार्थ।
1: बहुत सुंदर, निस्वार्थ। खुशी क्या है?
0: खुशी अपने अंदर ही है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लोग खुशी के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर कोई समझ ले

0: खुशी तो मेरे भीतर ही है, तो उसके हर काम से हर एक को खुशी होने वाली है। ये बहुत सुंदर बताया आपने। शांति क्या है?
1: मन की शांति।
0: शांति मन में ही होती है, किसी जगह में नहीं होती। लोग अक्सर जगह चले जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, लेकिन वहां जाके पैसा खर्च करने के बाद मन में से शांति चली जाती है, तो इसलिए शांति मन में ही होती है। अजय जी ने बहुत सही बताया। अगला सवाल अजय जी आपसे, संतुष्टता क्या है?
1: संतुष्ट तो मैं हरदम अपने हर एक काम से संतुष्ट हूँ।
0: ये बहुत सुंदर है, हर घड़ी संतुष्ट रहना ही शायद शांति के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल मतलब अगला सवाल आपसे, शिल्प क्या है?
1: प्रकृति।
0: और प्रकृति क्या है?
1: प्रकृति तो समझिए आसपास का पूरा वातावरण ही अपने आप की प्रकृति है, क्योंकि दिल्ली में रहने के लिए कंक्रीट की प्रकृति है, मेरे लिए पेड़ पौधों की प्रकृति है।
0: तो इसका मतलब अगर कला प्रकृति है और प्रकृति हमारे आसपास है, तो कला हमारे आसपास है, बस देखने के लिए नजर ही अच्छी है।
1: जी।
0: भारत क्या है?
1: भारत विश्व गुरु है, था है और रहेगा।
0: बस्तर क्या है?
1: बस्तर भारत का हृदय है, जो धड़क।
0: बहुत अच्छा। और अजय कुमार मंडावी कौन है?
1: परमार्थ का दूसरा नाम।
0: बहुत सुंदर।
1: मैंने समर्पित किया हुआ है परमार्थ के लिए, शांति के लिए।
0: तो साथियों आप सुन रहे थे अजय कुमार मंडावी जी को, जिन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन को परमार्थ के लिए, शांति के लिए सदा ही समर्पित किया हुआ है। और ये उनसे बातचीत करते हुए आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया होगा, उनके आवाज में वो चीज झलकता है। ये बहुत समय के तपस्या का एक फल है, ये बहुत समय के दिलो जान से किए हुए सेवा का परमार्थ है। अजय जी आपसे बातचीत करते हुए मुझे भी और हमारे सभी श्रोता साथियों को बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। सबसे मजेदार तो ये कि बुद्धिजीवियों के लिए जो स्वर्ग है बस्तर, वहां आने के लिए निमंत्रण भी मिला। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम में से जो भी अगली बार बस्तर जाने का सोचे या नहीं भी सोच रहा हो लेकिन अब सोचेगा, वो जरूर कांकेर आकर के आपके दरवाजे को जरूर खटखटाएगा। और क्या पता आपके साथ कुछ दिन बिता करके कुछ लकड़ी का काम करना हम सीख के भी आएंगे। लेकिन जाते जाते आज जो भी हमारे श्रोता हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो गृहिणी हैं, माताएं हैं, बहनें, बच्चे, जो भी आज हमको सुन रहे हैं, अगर उनको आप कोई एक संदेश देना चाहें या अपने दिल की कोई एक बात कहना चाहते हैं, तो कौन सी एक बात होगी?
1: मैं चाहता हूँ कि हर कोई कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। एक पौधा एक इंसान के हाथ से लगना ही चाहिए प्रतिवर्ष। तो ये जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग या दुनिया भर की समस्या, जो नाम दिया जाता है कि ये समस्या है, मेरे ख्याल से एक तो अपना भी मन प्रसन्न हो जाएगा एक पौधे को देखते हुए। एक पौधा न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि अपने आत्मीय सुख के लिए भी उसको लगाया जाए, चाहे वो जो भी प्लांट। ये संदेश रहेगा मेरा कि सारे लोग एक एक पौधा कम से कम लगाएं और उसको देखें, उसकी देखरेख करें।
0: तो अजय जी का ये संदेश केवल संदेश नहीं है दोस्तों, ये जीवन में सुखी और संतुष्ट होने का एक सुंदर सा छोटा सा उपाय है। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत अपने रोजमर्रा के जीवन से थके हैं, अगर आपके सामने में आपका लगाया हुआ पौधा है, तो उसको देखते देखते आपके अंदर अचानक से खुशी आ जाएगी। ये मेरा खुद का भी अनुभव है और ये आपका भी अनुभव है, मुझे पता है। लेकिन अगर आपने ये अनुभव नहीं किया है तो ये मौका है आपके लिए कि जैसे कि अजय जी ने बताया कि वर्ष में एक पौधा जरूर लगाइए, और केवल लगा करके छोड़ना नहीं, उसका देखभाल करना ये बहुत आवश्यक है। तो यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज मैं शांतनु आपके बीच में लेकर के आया था एक बहुत खास मेहमान, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित काष्ठ शिल्पकार श्री अजय कुमार मंडावी जी को। अजय कुमार मंडावी जी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर नाम के एक छोटे से गांव से आते हैं, लेकिन उस छोटे से गांव में बैठते हुए भी उन्होंने अपना चिन्ह पूरे विश्व में कायम किया है। काष्ठ शिल्प के द्वारा कई नक्सलवादियों का, जिन्हों का जीवन जेल के सलाखों के अंदर था, उनके जीवन को उन्होंने एक रोशनी दी और आज वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ चुके हैं, जो मुख्य धारा है उसके साथ जुड़ चुके हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे चुके हैं। ऐसे जीवन पथ प्रदर्शक व्यक्तित्व के साथ हमने गुजारे हमारे

कुछ पल जिससे मैंने और आपने बहुत कुछ सीखा। यशस्वी भारत कार्यक्रम ऐसे ही एक नई हस्ती को लेकर के दोबारा आपके बीच में आएगा। तब तक के लिए इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। एक पेड़ जरूर लगाइएगा। दूसरा, अपने आसपास में कोई शिल्पकार हो, कोई कलाकार हो, तो उसकी कला का, उसके जीवन का और उसकी तपस्या का जरूर दिल से अभिवादन कीजिएगा। और हाँ, आखिरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ, रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।

स्वागत है आपके पसंदीदा आध्यात्मिक कार्यक्रम आंतरिक दिव्यता का आह्वान में। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी परिस्थिति को बदलने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन वह फिर भी आपके अनुसार ना बदल पाई हो? क्या कभी किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके भीतर तक परेशान कर गया हो? और क्या कभी आपने स्वयं से पूछा हो, मैं इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सच तो यह है कि हमारे अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारे प्रतिरोध से पैदा होता है। जब हम किसी बात को बार बार मन में दोहराते हैं, जब हम लोगों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार बदलना चाहते हैं, जब हम हर स्थिति के पीछे क्यों और कैसे खोजते रहते हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जीवन को सहज बनाने की एक दिव्य शक्ति हमारे भीतर मौजूद है, वह है स्वीकार करने की शक्ति। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करेंगे, जो मन को स्थिर बनाती है, रिश्तों को मधुर बनाती है और आत्मा को संतोष का अनुभव कराती है। दोस्तों, जीवन को समझने की शुरुआत उसे स्वीकार करने से होती है। आइए सुनते हैं एक सुंदर भक्ति गीत और फिर लौटते हैं आज के विशेष विषय पर।

स्वागत है आपका दोस्तों। अक्सर लोग समझते हैं कि स्वीकार करना मतलब हार मान लेना, लेकिन वास्तव में स्वीकार करना हार नहीं बल्कि समझदारी है। स्वीकार करने का अर्थ है परिस्थिति को वैसा ही देखना जैसा वह इस समय है, उसके बारे में अनावश्यक चिंतन न करना, उसके प्रति नकारात्मक ऊर्जा न बनाना और अपने मन की स्थिरता बनाए रखना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है। यदि हम बार बार सोचते रहें कि वह ऐसा क्यों है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हमारा मन अशांत होता जाएगा। लेकिन यदि हम उसे वैसा स्वीकार कर लें जैसा वह वर्तमान में है, तो हमारी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगने लगेगी। याद रखिए, अस्वीकार मन को उलझाता है, स्वीकार मन को मुक्त करता है और मुक्त मन ही सही निर्णय ले पाता है। जब मन प्रतिरोध छोड़ देता है तब जीवन का बोझ भी हल्का लगने लगता है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत और फिर बढ़ते हैं आगे।

नवरात्रि के पांचवे दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया और देवता परेशान हो गए, तब भगवान कार्तिकेय ने उसका वध किया। भगवान कार्तिकेय के व्यक्तित्व और दिव्य शक्ति के पीछे उनकी माता का प्रेम, पालन पोषण और संस्कारों का बड़ा योगदान था। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में धारण करती हैं, जो मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश

नहीं करता, वह स्वीकार करना सिखाता है। एक माँ अपने बच्चे की अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करती है, उसे मार्ग दिखाती है, लेकिन उसके प्रति प्रेम कभी कम नहीं होने देती। दोस्तों, यही स्वीकार करने की शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब हम लोगों को उनकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करते हैं, तभी हम उन्हें सही दिशा में सहयोग भी दे पाते हैं। ममता और स्वीकार का संगम ही जीवन को सुंदर बनाता है। आइए सुनते हैं माँ की महिमा से जुड़ा एक भक्ति गीत।

दोस्तों, जैसे जैसे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, हमारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं, और जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां स्वीकार अपने आप बढ़ जाता है। अक्सर हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमारी तरह सोचें, हमारी तरह व्यवहार करें और हमारी तरह निर्णय लें। लेकिन हर आत्मा का अपना संस्कार, अपना अनुभव और अपनी यात्रा होती है। जब हम ये समझ जाते हैं तो लोगों के प्रति शिकायतें कम होने लगती हैं, तुलना समाप्त होने लगती है और रिश्तों में सहजता आने लगती है। स्वीकार करना किसी की गलती को सही ठहराना नहीं है, यह केवल इतना है कि हम वास्तविकता को देख रहे हैं और मानसिक संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं। अपेक्षाएं जितनी कम होती हैं, मन उतना ही शांत होता है। आइए सुनते हैं एक सुंदर गरबा गीत।

दोस्तों, जब कोई चुनौती हमारे सामने आती है तब हम अक्सर समस्या के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब क्या होगा। इन प्रश्नों में हमारा बहुत सारा मानसिक समय और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन स्वीकार की शक्ति हमें नई दिशा देती है। वह कहती है, जो हो चुका है उसे स्वीकार करो और जो करना है उस पर ध्यान दो। जब मन शांत होता है तभी समाधान दिखाई देता है। जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय ले पाते हैं। और जब मन स्वीकार की स्थिति में होता है तभी जीवन में संतोष का अनुभव होता है। सच्चा संतोष बाहरी परिस्थिति से नहीं आता, वह भीतर की स्वीकृति से ही आता है। शांत मन ही सही समाधान का मार्ग दिखाता है। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक भक्ति गीत।

0: श्रोताओ, आज हमने जाना कि स्वीकार करने की शक्ति जीवन की सबसे सुंदर आध्यात्मिक शक्तियों में से एक है। यह हमें परिस्थितियों के बीच स्थिर रहने की कला सिखाती है। यह हमें लोगों को समझने की दृष्टि देती है। यह हमें शिकायतों से समाधान की ओर ले जाती है और अंततः यह हमें आंतरिक संतोष का अनुभव कराती है। आज का आध्यात्मिक होमवर्क, अगले 24 घंटों तक एक अभ्यास कीजिए। जब भी कोई परिस्थिति आपकी अपेक्षा के अनुसार ना हो, अपने मन से केवल एक वाक्य कहिए, मैं इस परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ और समाधान पर ध्यान देता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको परेशान करे, स्वयं से कहिए, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और दिन में कई बार यह संकल्प दोहराइए, स्वीकार मेरी शक्ति है, मेरा मन शांत, स्थिर और संतुष्ट है। मुझे विश्वास है कि ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे नीतू। आप सुन रहे हैं आंतरिक दिव्यता का आह्वान, केवल रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: उपवास, लेखिका सुधापुर, पात्र परिचय दृष्टि, आकाश, वेदांत, पंकज, यश, सैंडी, विनोद, उन्नति।
2: देखो देखो, मेरी मम्मी ने सावन के उपवास रखे हैं, मेरे तो मजे ही आ गए।
3: तुम्हारे मजे कैसे आ गए?
4: अरे भाई, उनके लिए बर्फी आएगी तो मैं भी तो खाऊंगा।
5: तुम्हें तो उपवास में भी खाना सूझ रहा है।
4: उपवास का मतलब ही होता है कि अपने शरीर की पाचन मशीनरी को थोड़ा रेस्ट देना।
2: रेस्ट देना या फिर किसी और तरह के काम को देकर शायद चुस्त बनना।
5: अरे ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है।
2: हाँ, जैसे अनाज आदि को पचाने के काम से छुट्टी देकर केवल तरल पदार्थ या फल ही पचाना,
1: या फिर पाचन मशीनरी के कार्य का समय बदल कर भी तो उसे चुस्त बनाया जा सकता है।
2: कहीं तुम्हारा इशारा रोजों पर तो नहीं?
3: हाँ, वो भी और कई तरह के जैन व्रत भी। तो
4: मेरी माँ तो कई प्रकार के अनुव्रत रखती है।
5: वे क्या होते हैं?
4: अनु मतलब छोटे छोटे, जैसे कई बार कई दिनों तक सिर्फ गेहूं से बनी चीजें छोड़ देती हैं और सब सेम रहता है उनका।
5: हाँ, तो इससे तो कितना कुछ छूट जाएगा रोज खाने से।
1: कैसे?
2: ओहो, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। चलो ध्यान देते हैं कि हम रोज सिर्फ गेहूं से बना क्या क्या खाते हैं।
3: ये तो गेम बन गई। पहले मैं बताता हूँ, रोटी।
4: ये तो सबसे आसान था।

0: पर इससे एक बात तो तय है कि और कुछ हो न हो, हम अपने भोजन को और ध्यान से खा सकते हैं। मतलब हमारा फोकस बढ़ता है।
1: मतलब ध्यान लगाने की क्षमता?
2: हाँ हाँ, ये कोई कम फायदा तो नहीं। ये ध्यान लगाने की बढ़ी हुई क्षमता जीवन के और पहलुओं में भी काम आती है।
3: वो कैसे?
2: देखो ना, ध्यान हर चीज में चाहिए। पढ़ाई लिखाई में तो है ही, किसी भी कला को सीखने में, किसी भी हुनर को अपनाने में।
1: और दीदी, किसी से बात करने समय उसकी बात अधिक से अधिक समझने में। इससे तो याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी।
2: वो तो है ही, बल्कि इच्छा शक्ति, निष्ठा, उद्देश्य तक पहुंचने का पक्का इरादा, और फिर जब व्रत सफल हो तो संयम में रहने का आत्मविश्वास।
3: अरे वाह, क्या बात है। आत्मविश्वास बढ़ जाए तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है।
4: ये तो ऐसी चाबी है जिससे हर क्षेत्र के ताले खुल सकते हैं।
2: और सबसे बड़ी बात है, हम में बढ़ता है सब्र, यानी कि पेशेंस।
5: इतना कुछ सिर्फ व्रत रखने से?
2: हाँ, तभी तो बापू कितने उपवास रखा करते थे। कहते हैं एक बार जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए केवल दिन में एक बार खाएंगे, और वह भी केवल 5 खजूर।
5: ओह, सिर्फ 5?
2: हाँ, और उनके मित्र ने उन्हें कोई 7 खजूर दे दिए। सोचा बापू ध्यान नहीं देंगे और वे उन्हें कुछ ज्यादा ही खिला पाएंगे।
5: फिर
2: बापू ने खजूर देखा और कहा, मैंने 5 खजूर कहे थे, तुमने मुझे 7 दे दिए।
6: फिर
2: उनके मित्र ने प्यार से कहा, अब 5 और 7 में ज्यादा फर्क कहाँ है। ऐसा 1-2 दिन हुआ, बापू हर रोज 2 खजूर बाहर निकाल देते।
3: हाँ हाँ, उनका मित्र उनसे प्रेम करता था।
2: हाँ, जब बापू के टोकने पर भी उन्होंने खजूर कम लाने शुरू नहीं किए तो जानते हो बापू ने क्या किया?
3: क्या क्या?
2: उनमें से 2 खजूर तो पहले ही निकाल दिए, और एक दिन केवल 3 ही खजूर खाए, और कहने लगे अपने मित्र से, जब 5 और 7 खजूर में कोई अंतर नहीं तो 5 और 3 में भी नहीं होगा।
1: ओह वाह।
2: हाँ हाँ, उनके मित्र ने फिर उनसे बहुत क्षमा मांगी और बापू के कहने के अनुसार ही चलने लगे।
5: बापू ने तो कई बार ब्रिटिश सरकार को भी अपने उपवास द्वारा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कितने लाभ हैं उपवास के।
7: क्या सभी धर्मों के लोग उपवास रखते हैं?
2: सभी धर्मों में उपवास की आवश्यकता बताई गई है।
1: हाँ दीदी, इसलिए शायद हर व्यक्ति अपने धर्म परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत करता ही है।
2: ठीक कह रहे हो, पर असल में व्रत उपवास का संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण से है।
1: इससे हमारा शरीर स्वस्थ भी तो रहता है।
3: क्या पता इसके महत्व को समझते हुए सभी धर्मों ने इसे धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया है, ताकि लोग उपवास के अनुशासन में बंधे रहें।
1: लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व के कारण भी उपवास यानी पेट को खाली रखना अच्छा है।
2: वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सभी सप्ताह में 1 उपवास जरूर रखना चाहिए।
3: कई बीमारियों से भी तो इससे छुटकारा मिलता है।
2: हालांकि हर बीमारी का इलाज उपवास नहीं है, लेकिन यह कई समस्याओं में कारगर रहता है।
3: इसका मतलब दीदी, उपवास के तो अनगिनत फायदे हैं।
2: कहते हैं उपवास जितना लंबा होगा, शरीर की ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ती है।
4: वाह क्या बात है।
2: कहते हैं उपवास आपकी आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकता है कि आप अपने शरीर, जीवन और भूख पर अधिक नियंत्रण हासिल कर सकें। हमारा शरीर तो स्वनियंत्रित है।
8: मतलब कैसे?
2: मतलब ये खुद को ठीक करने वाली प्रजाति का हिस्सा है। देखते नहीं, कहीं चोट लगे तो कैसे पहले खून बहता है, फिर जम के पपड़ी सी बन जाती है ताकि जल्दी से आराम मिले।
4: हाँ ये तो है।
2: उपवास के जरिए हमारा शरीर अपने मेटाबॉलिज्म को सामान्य स्तर पर ले आता है,
5: और फिर इससे शरीर स्वस्थ रहता है।
7: निराहार रहने से?
2: उससे, या एक समय भोजन लेने से, या फिर
1: केवल फलाहार रहने से?
2: असल में इससे पाच तंत्र को आराम ही मिलता है।
1: और जब मेहनत जरूरी है तो आराम भी तो उतना ही जरूरी है ना?
2: यही नहीं, इससे कब्ज, गैस

0: एसिडिटी, अरुचि, सिर दर्द, बुखार आदि रोगों से भी आराम मिलता है।
1: वाह, कितना अच्छा है।
2: आध्यात्मिक शक्ति भी तो बढ़ती है।
1: मतलब
2: जैसे ज्ञान, विचार, पवित्रता,
3: बुद्धि का विकास भी तो होता है।
4: इसी कारण तो उपवास, व्रत आदि को सभी धर्मों की पूजा पद्धति में शामिल किया गया है।
1: यानी से यस टू उपवास एंड नो बर्फी।
0: यस टू बर्फी भी, पर कभी कभी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। अभी तक हम स्पिरिचुअलिटी के जब एस्पेक्ट्स को देखते थे, जिंदगी की बहुत सी बातों को ले रहे थे, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं क्योंकि रोल से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारी जिंदगी में हम कितने रोल्स प्ले करते हैं। और वो जब एक्ट अभी तक हम कर रहे थे तो ये लगता था कि दूसरे हमारे स्क्रिप्ट लिखते हैं या मुझे ऐसे ही रोल को प्ले करना चाहिए क्योंकि कोई और डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं ही खुद डायरेक्टर बनी, मैं ही खुद एक्टर हूं और मैं ही स्क्रिप्ट राइटर भी हूं, तो अब मुझे स्किल्स चाहिए थी कि मैं कौन कौन सी ऐसी चीजें मेरे पास होनी चाहिए कि मेरी जो स्क्रिप्ट होगी वो सही होगी और जैसा मैं चाहती हूं वही मैं मैसेज कन्वे कर पा रही होंगी अपनी एक्टिंग के माध्यम से। एक बात जो हमने समझी थी वो था पर्सपेक्टिव, मेरा लाइफ के प्रति दृष्टिकोण क्या है, परिपेक्ष क्या है। अगर मैं उसमें प्यार और क्रिएटिविटी शामिल करके लाइफ को देखती हूं, मेरे हर रोल में वो फ्लो हो रहा होगा। आगे और बहुत सी स्किल्स कौन सी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने रोल्स पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है और जिंदगी में जिस खुशी को, जिस मजे को, जिस फन को हम तलाश रहे थे वो अब हमारे सामने है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुशिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सुशिवानी। जिस तरह से अब स्क्रिप्ट हम खुद लिखने लगे, एक बात तो सामने आई कि लाइफ के प्रति मेरा नजरिया क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी मैं अपने किसी भी रोल में चलती हूं। एंड इनफैक्ट उसमें क्या हुआ है कि जब मैंने रोल प्ले करने शुरू किए, मुझे दिखने लग गया कि मेरा नजरिया था क्या और यहां मैं गलत हो रही थी।
1: अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस। कई बार क्वेश्चन उठता कि बार बार आप कह रहे हैं अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस, कैसे करनी है वो अवेयरनेस,
0: किस लिए करनी है?
1: तो अवेयरनेस ये है कि अपने ही परसेप्शंस, अपने ही वे ऑफ थिंकिंग अब दिखाई देने लगी क्योंकि उस पर काम करना शुरू किया तो दिखने लगा, ओ अच्छा, आई वॉज लुकिंग एट इट लाइक दिस, नाउ प्रोबेबली आई कैन लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। दैट्स क्रिएटिविटी, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, दिस इज क्रिएटिविटी।
0: एंड उसमें अब गिल्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि हमसे कुछ भी हो जाता था और वो हमें लगता था गलत हो गया, यू नो एपरेंटली हमें पता होता गलत हो गया, एंड वी यूज टू गो इनटू गिल्ट कि फिर हम उसके सोल्यूशन वो ढूंढने लगते थे, कारण कि हमने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे किया था। अब क्या हुआ, जब दिख रही हैं चीजें हमें गिल्ट नहीं हो रहा,
1: गिल्ट की बजाय रियलाइजेशन। ये डिफरेंस है, गिल्ट नेगेटिव एनर्जी, रियलाइजेशन पॉजिटिव एनर्जी। गिल्ट हमें डीमोटिवेट कर देता है और हम और ही दर्द में चले जाते हैं, रियलाइजेशन हमें मोटिवेट करता है। एंड हो सकता है ये सीन में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, बट रियलाइजेशन मीन्स नेक्स्ट सीन के लिए आई एम गोइंग टू बी रेडी। यू नो रियलाइजेशन, एक्चुअली इट इज रियलाइज मीनिंग रियल आईज। द रियल आईज मीन्स द रियल पर्सपेक्टिव, राइट दृष्टिकोण, सत्य दृष्टिकोण क्या है मेरा, दोज आर द रियल आईज। वो ये जो बुद्धि से जो हमारा दृष्टिकोण है वो हमें रियलाइज होता कि ये नहीं है। सो एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। हम सोचते थे गिल्ट में गए तो उससे परिवर्तन आ जाएगा, एनर्जी वॉज नेगेटिव, रिजल्ट कैन नॉट बी पॉजिटिव। सो वंस वी रियलाइज आई एम द क्रिएटर ऑफ द एनर्जी, आई एम अवेयर वॉट एनर्जी टू क्रिएट। तो कभी भी जैसे ही फीलिंग आए तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये फीलिंग मुझे लो की तरफ लेके जा रही है, उदासी की तरफ लेके जा रही है, क्विकली चेंज इट, डोंट

0: And फिर भी अगर suppose somewhere कोई hurt हो रहा है, we've understood, then that is their journey. That's their journey. अगर मेरी लेकिन अपनी intention की बहुत checking चाहिए हाँ. Sometimes we can be very downright rude and say कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक थी. We have to be very careful with that. लेकिन अगर I'm 100% clean कि मैंने किस तरह से सोचा है आपके प्रति और किस तरह से बोला है, फिर भी अगर आप हर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं वो फिर आपकी जर्नी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. और यहाँ लेकिन कई बार क्या कहते हैं हम कि डिटैच होकर मैंने उससे बात की, तो अगेन डिटैचमेंट में मैं उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हो पाती, यू नो लाइक उसके प्रति केयर तो नहीं चाह रही है.
0: क्रिएटिविटी अपने रोल में लाने के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी जो एक चाहिए वो है सेंसिटिविटी. आज स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में वी विल फाइंड कि हम सेंसिटिव नहीं हैं बहुत ज्यादा लोगों के प्रति, क्योंकि हम ज्यादा काम के बारे में सोचते हैं. वी वेरी वर्क कॉन्शियस, वर्क ओरिएंटेड. तो लोगों के प्रति जो एक सेंसिटिविटी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी अप्लाई करने के बाद भी हम थोड़ा सा कई बार डिटैच होने के प्रोसेस में इनसेंसिटिव हो जाते हैं. वो एक थिन क्या है बॉर्डर लाइन है विच वी हैव टू सी हाउ टू मेंटेन द बैलेंस. इन रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट अब नहीं चाहिए, समझ में आ गया. रिलेशनशिप्स में जो पहले नीडीनेस थी कि मुझे जरूरत थी वो रिश्ते की, वो भी अब खत्म हो गया है. लेकिन रिश्ते जरूर चाहिए, रिश्तों पर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन रिश्तों से कचना नहीं है. रिश्ते जरूर चाहिए क्योंकि रिश्तों में ही आई एक्सप्रेस एंड आई एक्सपीरियंस. लेकिन अब क्या है कि अनलेस आई कैन बी सेंसिटिव टू योर नीड्स, टू योर प्रेजेंस, टू योर रोल, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माय रोल प्रॉपरली विद यू. अगेन आई विल बी फिक्स्ड विद माई वे ऑफ आइडेंटिटी. तो आपके प्रति सेंसिटिव होने के लिए कहीं ना कहीं आई नीड टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द रोल, फ्रॉम द सीन एंड फ्रॉम द एक्टर. हम ये तीन चीजों में अटैच्ड हो जाते हैं. उस एक्टर, एक्टर की सफरिंग, आपकी सफरिंग से मैं अटैच हो गई तो फिर मैं सेंसिटिव नहीं हूं, उस टाइम मैं अटैच्ड हूं. सो समवेयर वी ऑल नीड टू एक्सप्लोर विद आवर सेल्फ कि एम आई बीइंग एबल टू मेंटेन वो बैलेंस sensitivity
1: and
0: detachment.
1: You know, somewhere because the moment we are detached, we become so cold. Or we apparently ऐसा नजर आता है कि हम cold हो गए या हम हो भी जाते हैं, हमें पता ही नहीं.
0: हमें पता नहीं
1: क्योंकि हम detachment में हमने अपना तो रखा कि मुझे detach होना है उससे, मुझे pain नहीं लेना है. You know, somewhere मुझे उसकी pain से affected नहीं होना है, लेकिन मैं फिर उसकी pain के साथ ही empathize नहीं करती.
0: Absolutely. अगर मैं उनके साथ ही नहीं एम्पेथाइज करूं तो फिर मेरा रिलेशनशिप वो नहीं रहेगा. एज अ रोल ऑफ अ पेरेंट, एक पेरेंट का रोल, एक लीडर का रोल एक कॉरपोरेट सेक्टर में, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों के साथ, हमें अपनी टीम मेंबर्स के साथ एम्पेथाइज करना है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो किस परिवर्तन से गुजर रहे हैं, या उनको उनकी क्या जरूरतें हैं, उनका क्या दर्द है. लेकिन अगर हम कहें this is not my role, I don't need to know anything about you, then I'm not sensitive towards you. Agar aap mere team ka hissa hain aur aap dard mein hain, then somewhere is that not my responsibility as a leader to understand ki aap kis cheez se guzar rahe hain. Kyunki jab tak main ye nahi samajh paungi ki aap kis cheez se guzar rahe hain, main aapki right potential, aapki puri strengths ko us karya ke liye bhi नहीं यूज कर सकते. सपोज आप दर्द में हैं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आप काम करो, तो इज दैट रियली बीइंग फेयर टू इवन द वर्क? क्योंकि दर्द में रहकर अगर कोई काम करने वाला है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्यों नहीं हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं? लेकिन उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? वो बॉस से हटकर मुझे एक फ्रेंड, मुझे एक काउंसलर, एक मोटिवेटर, वो रोल अपनाना पड़ेगा. बट दैट विल ओनली हैपन इफ आई एम सेंसिटिव कि आप किन चीजों से गुजर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको यू नो तकलीफ देती हैं. बीइंग वेरी सेंसिटिविटी कुड ऑल्सो बी लाइक कंसर्न, बीइंग कंसर्न अबाउट पीपल, बट सेइंग नहीं मुझे हमें तो काम से मतलब है, काम हो जाना चाहिए, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, दैट्स नथिंग टू डू विद मी, देन दैट्स समवेयर हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत रूखापन आ जाएगा एंड फिर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. तो इसको हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अटैचमेंट ना हो जाए. अटैचमेंट ओनली मीन्स कि आप दर्द में हैं
1: तो मैं दर्द
0: तो मैं

0: दर्द में हूँ. एंड सेंसिटिविटी वुड मीन आप दर्द में हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ, शायद आपके साथ आपको वो प्रोसेस पे हेल्प भी कर रही हूँ, लेकिन दर्द नहीं एक्सपीरियंस कर रही. एंड जैसे ही मैं दर्द नहीं एक्सपीरियंस करती, आई विल बिकम इंस्ट्रूमेंट टू एम्पावर यू. स्पेशली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में दिस इज फंडामेंटल.
1: लेकिन एक और बात जो देखी जाती है जनरली, एक कहीं गाने में भी आता है कि हर कोई अपने दर्द के कारण रोता है. जब भी कोई कहीं हम किसी को दर्द देखते हैं, उसी से हम कहीं खुद को रिलेट कर लेते हैं और तब हम दर्द में आ जाते हैं. तो क्योंकि अपना ही कोई जख्म जो है,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं खुद की स्थिति भी उन चीजों से गुजर रही है, तो वो एक आपकी परिस्थिति मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है, मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है, और मेरा जो अक्यूमुलेट किया हुआ है वो इमोशन ट्रिगर हो जाता है, और आपका दर्द, हम कहेंगे आप दर्द में हैं तो मैं भी दर्द में हूँ, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट. सी इन अ पेरेंट चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूडे, क्योंकि बच्चे अपने दौर से गुजर रहे हैं, अपनी जर्नी पर हैं. स्पेशली जब आप एक बच्चे से एक टीनेज के एडोलेसेंट पीरियड से गुजरते हैं, वो बहुत एक टर्मोइल, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, वो उनकी यात्रा का एक हिस्सा है. अगर मैं एक काउंसलर, एक मीडिएटर बनकर उनको मदद करना चाहती हूँ कि वो उस पीरियड को दर्द के बिना क्रॉस करें, तो पहले तो
1: खुद को दर्द से बाहर निकालना होगा.
0: लेकिन उनसे ज्यादा दर्द में तो हम गए होते उनके अंदर वो परिवर्तन देखकर. दर्द कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स. दर्द इज नॉट क्राइम.
1: दर्द कैन बी एंगर. ऑफ़कोर्स, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट.
0: मेनी टाइम्स बच्चा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको खुद, वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है. उसके स्कूल में उसके एज ग्रुप उस तरह के होने के कारण वो कई बातों से गुजर रहा है. कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनालिटी में अग्रेशन के रूप दो फॉर्म्स में आता है. किसी के अंदर वो एकदम चुप हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और कुछ लोग बहुत लाउड हो जाते हैं जो वो पहले नहीं थे. एज अ पेरेंट आई हैव टू बी सेंसिटिव कि मेरा बच्चा क्यों इस तरह से परिवर्तन हो रहा है. एंड दैट विल नॉट हैपन बाय शाउटिंग एट हिम और हर कि तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो,
1: और बाय गोइंग इनटू शॉक. यू नो यूजुअली वी गो इनटू शॉक कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर, और हमारी फिर सोचने समझने की शक्ति
0: खत्म हो जाती है. तो फिर मैं उसको नहीं समझ पाती कि वो इस दर्द से क्यों गुजर रहा है. मैं इस बात से हर्ट हूं कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है. नाउ द मिनट मैं दर्द में चली गई कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, विल आई बी एबल टू एम्पेथाइज विद द चाइल्ड?
1: ओह नो, नॉट एट ऑल. इट्स माई प्रॉब्लम.
0: तो फिर क्या हुआ, माई रोल एज अ पेरेंट इज नॉट बींग प्लेड प्रॉपरली, बिकॉज फंडामेंटल माई रोल है आज कि मेरा बच्चा अगर दर्द में है, मुझे उस बच्चे को हेल्प करना है दर्द से निकलने के लिए, लेकिन मैं खुद ही दर्द में चली गई. यू नो व्हेन अ चाइल्ड, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हर रोज हर घर में होता होगा, एंड आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत रूडली या एंग्रीली बात करते हैं, तो इधर द पेरेंट शाउट्स बैक. अगर एक बच्चे ने रूडली बात की, या तो वो पेरेंट शाउट बैक करेगा, ये कोई बात करने का तरीका है आजकल के बच्चे देखो, एंड देन इट बिकम्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट, या द पेरेंट विल गेट वेरी हर्ट. मेरे बच्चे मेरे साथ इस तरह बात करते हैं. समवेयर द पेरेंट स्टार्ट्स टेकिंग इट एज अ पर्सनल फेलियर कि आई हैव नॉट बीन अ गुड पेरेंट,
1: मैं उनको राइट वैल्यूज नहीं दे पाया, मैंने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए.
0: अब ये सब जब क्रिएटिव प्रोसेस अंदर चल पड़ा इस तरह से थिंकिंग का, बच्चे के बारे में सोचना कि वो क्यों दर्द में है, वो क्यों इतने गुस्से में है, वो क्यों, मैं क्या उसके लिए कर सकता हूँ, उधर तक तो सोच जाए मेरे. आई ओनली लुक एट द चाइल्ड शाउटिंग एट मी एंड नाउ स्टार्ट विद माई प्रोसेस. तो फिर एम्पथी, क्या उसकी मदद करना, उसको एम्पावर करना इज नॉट
1: वेरी ट्रू. यू नो सिमिलरली जब अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा, स्कूल से शिकायत आ रही है, हम ज्यादातर ये करने लगते हैं कि उसके ऊपर ऊपर से काम कैसे किया जाए,
0: अब
1: हम डिसिप्लिन में कैसे लाए.
0: अब ये जो आप कह रहे हैं ना, ऊपर से काम कैसे, वी डोंट रियलाइज कि अगर आज सडनली मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या बच्चे का बिहेवियर स्कूल में चेंज हो गया, टीचर कंप्लेंट करती है, पेरेंट्स को बुलाया, कंप्लेंट किया. पहली बात, टीचर ने बुलाया और कंप्लेंट किया, आई गेट हर्ट कि क्यों कंप्लेंट, इंसल्ट, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहा. अब मैं सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड हो जाती हूँ कि इसके मार्क्स को कैसे ठीक करना है, इसके बिहेवियर को कैसे ठीक करना है, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स क्या हो रहा है उस बच्चे के अंदर जिस कारण से उसके मार्क्स या उसके बिहेवियर, वे नॉट लुकिंग दैट साइड. फिर क्या होगा, उसकी जो अंदर की चोट है वो तो है ही, अंदर लगी हुई है, हमने उसके ऊपर
1: चोट देते जाते हैं.
0: हाउ डैमेजिंग कैन दिस बी?
1: और हम एक

0: role play kar rahe hain parent ka. My God, we can actually change it.
1: Yes, now we need to change that. Lekin wo tabhi hoga jab hum apni hurt, apni insults, apne anger ko side pe rakh, hum stable reh payenge. Ke it's ek atma hai jo ek dard se guzar rahi hai aur mera role kya hai? As a parent, parent matlab mera role hai us atma ko us journey par madad karna. Instead of mera bachcha hai, mere bachche ne mujhse aise kaise baat ki? It's just a perspective. It's just a perspective. Lekin jab I'm so attached to the identity ki main ek parent hu, ye mera bachcha hai, my property, to mere bachche ko mere se kaise baat karni chahiye?
0: Aur mera role bhi defined hai. Sadiyon se maa baap aise karte aa rahe hain, mere father aise behave karte the, to main bhi aise hi karunga. This is the right way.
1: Parso we were doing a program and we called about 4 children on the stage and 1000 ya 1500 ki sabha mein 4 bachcho ko upar bulaya aur unse pucha sabke samne, speak on the mic, ki aapke parents jab aapko is tarah, and they were little ones, ki daantte hain ya karte hain to aapko kaisa lagta hai? You should have seen the vibration in the room. Those little children, because maybe the parents were hearing it for the first time, and those little children said, hame itna dard hota hai, itna dard hota hai, itni takleef hoti hai. And parents to aise sun rahe the, jaise unko ye nahi pata tha ki kisi ko daant padne ke baad usko dard hota hoga andar. For them it seemed to be a realization. Humne kya socha ki hum kisi ko daantte jayenge and the person supposed to feel good about
0: aur hum bachchon ko kitna.
1: And you know, some of the children said ki wo to hame aise aise karke
0: maarte jaate
1: hain. We need to stop and think, what are we doing? Matlab aaj mera ek glass pe aise gir ke toot jaye to mujhe itna bura lagta hai, meri property hai toot gayi, aur wo bachche ko hum aise aise aise karke jab maarte hain, हम क्या समझ रहे हैं? वो कौन है? वो हमें लगता है ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और हम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन,
0: और कहाँ कहाँ का बच्चे का ही गुस्सा नहीं होता,
1: वो बच्चे का गुस्सा होता ही नहीं है. बिकॉज अगर आप अपने सेंसेस में हैं तो आप अपने बच्चे को इस तरह कर ही नहीं सकते. आप कर ही नहीं सकते. कोई और आपके बच्चे को छू भी दे तो आप उसका क्या हाल करेंगे? और आप खुद उसको इस तरह से मारते हैं, ये क्या रिजल्ट है? ये हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो अंदर भरी हुई है. तो उसका दर्द देखना, उसके प्रोसेस को समझना, आई जस्ट कांट डू दैट. नाउ दिस इज इनसेंसिटिविटी, दिस इज अटैचमेंट, बट सेंसिटिविटी नहीं है. एंड देन आई एम मोर अटैच्ड टू माई सफरिंग, और फिर मैं अपने को देखते मेरी फ्रस्ट्रेशन सारी बाहर निकलती. सो एम आई प्लेइंग माई रोल द राइट वे विल बी अ क्वेश्चन मार्क.
0: वेरी ट्रू. और इनफैक्ट आई सडनली रियलाइज, यू नो, जब बच्चा आता है हम उस पर 100% कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, सबसे ज्यादा प्यार उसको कर रहे हैं, लेकिन ये तो है कि बिना सोचे समझे हम जब चाहे उसको डांट देते हैं. हमें से हर पेरेंट, आई थिंक वी नीड टू चेक,
1: स्पेशली यू नो, बच्चे छोटे हैं, स्पेशली जब छोटे हैं, दे आर वन ऑब्जेक्ट, दे आर वन ऑब्जेक्ट जो हमें लगता है जिसके ऊपर हम अपना कुछ भी निकाल सकते हैं. देखो, मैं इक्वल एज में आपके ऊपर ऐसे नहीं चिल्ला सकती, मुझे पता है आपने भी वापस चिल्लाना, लेकिन वो छोटे छोटे हैं ना, एंड वो मेरी प्रॉपर्टी है. दैट इज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इनको,
0: आई कैन यूज इट,
1: एंड इट्स ऑल बीइंग डन इन द नेम ऑफ उनके फायदे के लिए. ये मैं उनको सुधार रही हूँ, उनको डिसिप्लिन कर रही हूँ. इस तरह से इज अ क्वेश्चन मार्क. वी नीड टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग, दे आर ओनली गोइंग इन टू पेन. So, हर रोल प्ले करते हुए,
0: इतनी छोटी उम्र में मैं उनको पेन से गुजार रही
1: हूँ. आई मीन दैट प्रोग्राम येस्टरडे फॉर अस वॉज दिस लिटिल वंस, दे सेड इट ऑन स्टेज टू एवरीवन, एंड दे सेड हमें इतना दर्द होता है अंदर जब हमें बार बार डांटा जाता है हर बात के लिए. वी नॉट रियलाइजिंग वी पेन पेन पेन, वो जो बच्चा इतना लेगा तो रिजल्ट क्या है? फिर आज डॉक्टर कहता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को डायबिटीज है, डिप्रेशन है, यहां तक कि हार्ट प्रॉब्लम है. एंड देन वी से ओ कंपटीशन, एजुकेशन सिस्टम, नो, इट इज सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ पेन दैट चाइल्ड इज कैरिंग इनसाइड.
0: लेकिन वो लोग कहेंगे कि हमारे भी तो पिताजी ऐसे ही करते थे, हमारे भी तो, ये तो एक पैटर्न है जो कि कब से चला आ रहा है.
1: एब्सोल्युटली.
0: तो बच्चा तो भूल जाता है, अगले ही पल वो भूल जाता है, फिर खेलने लग जाता है.
1: हमें लग रहा है कि बच्चा भूल जाता है. स्टॉप एंड टॉक, हैव यू एवर आस्क्ड द चाइल्ड कि वो किस चीज से गुजरता है उसके बाद? वी नीड टू आस्क. कहीं ना कहीं जब हम फिर कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत अग्रेसिव हो गए हैं,
0: बिकॉज यस दे हैव सीन इट,
1: नहीं, विच एनर्जी हैज बीन गिवन टू देम, वो एनर्जी उनको ट्रांसमिट हुई है. तो अपने रोल को प्ले करने में एक एंथुजियाज्म हमें चाहिए. न्यू वे नाउ. same way of acting, same way of interacting, bahut hua. Now new way of acting, and that would mean naya tarika sochne ka, naya tarika perceive karne ka, naya tarika behave karne ka. Let's at least experiment. Kiya na purana wala, results bhi dekh rahe hain, kitna dard create kiya, why don't we experiment with something else?
0: Aur very true, you know, daantne ke baad hum khud kitne guilt mein jate hain, wo bhi ek negative energy hum khud hi create kar rahe
1: hain, aur pure ghar mein fir wo energy flow kar rahi hai, and this is every day. Main thing is it's every day,
0: aur isko kabhi register hi nahi karte hain. Actually it's again ye belief system ki to hota hi hai, har ghar mein hi hai. Bacche ko to daant pitegi hi na, bacche to daant khayega kyunki galti karega to daant.
1: तो फिक्स्ड वे में रोल प्ले कर रहे हैं. तो अगर बच्चा गलती करेगा तो हम डांटेंगे. तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे जो बच्चे को राइट नहीं लगता तो बच्चा क्या करेगा?
0: फिर भी डांटेगा, वो भी डांटेगा,
1: वो भी उसी तरह से बात करेगा ना. देन भी से आजकल के बच्चे क्यों इतने रूड हो गए? They're just learning it the same way.
0: सामने सामने लर्न हो रहा है. बहुत सुंदर. आज एक नया परिप्रेक्ष्य सामने आता है पेरेंटिंग में भी और हर रिश्ते में. और फिर हमें जो एम्पावरमेंट, हम जो एम्पावर हो रहे हैं, जो सशक्त हो रहे हैं कि हमारे अपने हाथ में है, उस रोल को चेंज करने का प्रयत्न तो करें. जो अभी तक जिस पर चलती आ रही है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा दिख रहा है हमें. वाई नॉट बी क्रिएटिव, यू नो. अब हमने जो बच्चे ने गलती की, हम उसके साथ बैठकर उसको सॉल्व कर सकते हैं. कहीं ना कहीं हम एक नए परिपेक्ष में ले सकते हैं.
1: सिर्फ अगर खुद दर्द में नहीं होंगे तो अगेन वो ऑक्सीजन मास्क जो हमने कहा, तुरंत पहले अपनी सुरक्षा करें, अपना ध्यान करें. एंड उसके लिए अगर रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, अपने पर वर्क करेंगे, तब बच्चे को देखना, बच्चे के इस तरह के व्यवहार को समझना बहुत ईजी हो जाएगा.
0: और उसकी गलती मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगी. वेरी ट्रू. उसकी कोई भी गलती, कहीं पे गलत बिहेव कर रहा है, मैं सोचती हूँ मेरे साथ हुआ कि मैंने ही उसे सही परवरिश नहीं दी थी. ओह इट्स अमेजिंग, यू नो हाउ डीप दीज थिंग्स कैन गो. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. ओम
1: शांति.
0: हर बार की तरह आपसे कहेंगे कि अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आप ही के सवाल हम जरूर शामिल करते हैं. तो आप हमें या तो फोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अब एक निगित ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं. कुछ और बातें लेकर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे. ओम शांति.

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशिया बाटो।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे।

0: तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुद को पहचानने की इस जद्दोजहद में कई मुकाम हमने तय किए हैं। एक बात जो सामने आई है वो ये कि जिस तरह की जिंदगी आज के इस भागते दौड़ते युग में हम जी रहे हैं, उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां हमने खुद ही जनरेट कर ली हैं। सॉल्यूशंस भी हमें खुद ही तलाशने पड़ेंगे। ऐसे में एक बीमारी जिससे हम में से हर एक को दो चार होना पड़ता है कभी न कभी, वो है डिप्रेशन। क्या है एग्जैक्टली डिप्रेशन, ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं और ये भी जान गए हैं कि डिप्रेशन को दूर करना हमारे अपने ही बस में भी है, लेकिन कई बार हमें प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है। किस तरह के डिप्रेशन आ सकते हैं हमारी जिंदगी में और कौन सा वो वक्त होता है, कौन सा वो मुकाम होता है जब हमें एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम और नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सिस्टर शिवानी, आज पहले आपसे शुरू करते हैं कि डिप्रेशन के हर एस्पेक्ट को हमने जाना है अच्छी तरह से कि डिप्रेशन क्या है, जिंदगी के किस फेज में हमें समझ में आ जाता है कि डिप्रेशन है, यहां पे जब थोड़ी थोड़ी देर खुशी थोड़ी थोड़ी देर गम होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। जो जर्नी हम इंटरनल जर्नी की बात करते आ रहे हैं पूरी इस श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये आता है कि खुद के बारे में अवेयर होके हम ये जान लें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हमें परेशान करते हैं और हमें उनसे दूर होना है। जो डिप्रेशन है, जो कभी कभी गम तक हम पहुंचते हैं, कुछ देर का गम हमें आता है, उसमें क्या ऐसी बातें खुद से करनी है हमें, जो खुद स्व काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने आप से बात करने की बात, सेल्फ काउंसलिंग की बात करते हैं, कि हम उस वो चार घंटे के वक्फे को निकाल पाएं और वो जो चार घंटे खुशी के आएंगे वो ज्यादा बेहतर हो।
2: सेल्फ काउंसलिंग अर्थात अपनी, जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सी बात है जो उस चीज को ट्रिगर कर रही है, तो हम उसका सोल्यूशन, जैसे दूसरों को सोल्यूशन देते हैं वैसे खुद को सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनको पहचानना, मेरे अंदर कौन सी शक्तियां हैं उनको पहचानना। ज्यादातर क्या होता है, हम सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं परिस्थिति को सामना करने की शक्ति नहीं है, या किसी ने कुछ कह दिया या मेरे जीवन में कोई घटना घटी, मुझे मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर एक राइट डिसीजन लेने की पावर नहीं है। तो ये जो सारी पावर्स हैं ये हम फील करते हैं कि हमारे अंदर नहीं है और वो खालीपन आना शुरू कर देते हैं। राजयोग जब हम करना शुरू करते हैं तो ये पावर्स एक नेचुरल रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी पावर्स हमारे अंदर हैं। You know, they don't have to be brought from anywhere outside. सहन शक्ति है, सिर्फ कभी कभी वो हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे उसको यूज करते जाएंगे वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति मेरी मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता।
1: लेकिन वही आपने कहा कि सेल्फ काउंसलिंग जो
2: हाँ, तो जैसे ही अगर सपोज आपसे मेरी कोई बात हुई और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अब मेरी वो गम वाले फेज में मैं चली गई क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरी, जो हमने कहा कि जो मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है उसको हर्ट हुआ। देखो हर्ट हम कब होते हैं, मैंने अपने बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है, आपने कुछ ऐसे कह दिया जो वो इमेज मेरी बनाई हुई इमेज के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए आपके बोल मुझे तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अब सेल्फ काउंसलिंग यही होगी कि सबसे पहले तो मेरी मन की स्थिति का मास्टर मैं खुद हूं। अगर मैंने अपनी कोई इमेज बनाई है तो अच्छी इमेज अगर बनाई है तो सबसे बड़ी पावर तो यह है कि नोबडी कैन कंट्रोल मी। दूसरा, अपने आप से ये बात करना शुरू करें कि असलियत क्या है, जो मैंने सोचा या जो आप कह रहे हैं, यू नो। एंड सेकेंड, ट्राई एंड टॉक टू माई सेल्फ के ओके, दिस इज वॉट यू फील, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर नॉट, ईदर वेज लेट मी चेक माई सेल्फ। अगर आप सही हैं तो मैं अपने आप को उस अनुसार चेंज कर लूं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने जो कहा है
1: उसका कोई मायने नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही भी हैं तो आप अपने आप, मैं अपने आप को मार नहीं दूंगा। हाँ, कि मैं चेंज कर सकता हूं।
2: बिल्कुल, तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर हमारे को प्रॉब्लम

0: बात से नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा,
1: मेरी इमेज जो मैंने बनाई हुई थी
0: उससे वो से। तो वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा और वो चीज हम बार बार अपने आप को फिर कहते रहते हैं। तो ये फिर हम उस टाइम परेशानी के पीरियड में गुजर रहे हैं, तो उस टाइम कोई और मदद नहीं कर सकेगा। आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ, उनकी जो राय थी वो उन्होंने कही, अब मुझे उसको अपने इमेज के साथ
1: पूछना चाहते हैं आपसे कि जब हम इस एस्पेक्ट पे हैं कि जब मैं उस डिप्रेशन के फेस में जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए भी, क्या ये सेल्फ काउंसलिंग डज इट रियली हेल्प?
0: इट रियली हेल्प।
1: क्या हम बात कर सकते हैं, उस फेज में होते हैं कि हम बात कर पाए?
0: हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ही पता है कि मुझे कौन सी बात दर्द कर रही है।
2: शिवानी बेन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, विच इज अदरवाइज सेड, सभी को याद रखनी चाहिए बात, कहते नो बडी कैन मेक यू डिप्रेस्ड विदाउट योर परमिशन।
1: We gave him or her the permission.
2: So don't give permission to anybody.
1: बिल्कुल।
0: So if I have the power, why do I give that power away to somebody else?
2: तो उन्होंने बात की ना सारे powers की, उसमें सबसे बड़ा है power of silence. You should learn to go in silence. Silence में गए तो ऑटोमेटिक परखने की शक्ति आएगी,
1: खुद से बात करने का वक्त,
2: सहन करने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी।
1: तो अब डॉक्टर साहब हम उस बात पर आते हैं कि ये तो बात है कि जब मैं उस फेज में आ गया कि मैं उतनी देर के लिए तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ, खुद से काउंसलिंग, खुद से बातचीत करके कहीं ना कहीं उस एहसास को मैं हटा सकता हूँ। अब बात करते हैं जो इससे परे जा चुके हैं, यू नो, हम थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं कि डिप्रेशन जो है वो सीप इन कर गया है। आपने पिछली बार हमने बताया था कई तरह के होते हैं डिप्रेशन, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि क्या कौन कौन सी वो तरीके, कौन कौन से वो डिप्रेशन कहे जाते हैं जिनके कारण शायद अलग अलग होते होंगे और उनके सिम्टम्स शायद अलग अलग होते हों, तो किस तरह के डिप्रेशन?
2: कई प्रकार से डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं। एक तो जिसको कहा गया रिएक्टिव डिप्रेशन, मतलब कोई ना कोई परिस्थिति आती है उसके रिएक्शन में आप डिप्रेस्ड होते हैं, कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेस्ड हुए, किसका देहांत हो गया तो आप डिप्रेस्ड हुए,
1: डेथ इज अ मेजर थिंग।
2: फिर दूसरा एक है जिसको कहा एंडोजिनस डिप्रेशन, एंडोजिनस डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा ही डीप होता है, जो केमिकल्स के कारण है कि कोई बाह्य परिस्थिति ऐसी नहीं परंतु फिर भी अचानक व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, दैट इज एंडोजिनस डिप्रेशन। और एक है प्रकार जिसको कहा साइकोटिक डिप्रेशन, विच इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, इसमें व्यक्ति पागल जैसी हरकतें भी कर सकते हैं, वो डिप्रेस्ड है लेकिन साथ साथ में साइकोसिस भी है उसे।
1: अच्छा, तो सारे जो डिप्रेशन हैं वो साइकेट्रिक नहीं होते हैं?
2: नहीं, साइकेट्रिक होंगे लेकिन साइकोसिस जिसको कहा, जैसे साइकेट्री में दो प्रकार की बीमारियां, एक तो न्यूरोसिस और दूसरी है साइकोसिस।
1: ओके,
2: न्यूरोसिस ऐसी बीमारियां जो माइल्ड फॉर्म ऑफ बीमारी भी कहेंगे, व्यक्ति खुद रियलाइज करता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकोसिस ऐसी बीमारियां जहां पेशेंट स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है,
1: एहसास ही नहीं होता।
2: हाँ, वो तो कहेगा आप सब पागल है, तुम ट्रीटमेंट कराओ। इवन डॉक्टर के पास भी जाके पूछेंगे ना क्या तकलीफ है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, इनको प्रॉब्लम है ना, उनका इलाज करो आप। तो जो डीप, जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन है साइकोटिक डिप्रेशन,
1: जो कि वायलेंट भी हो सकता है, हमने पिछली बार बात की थी, या फिर सुसाइडिकल भी जा सकते हैं।
2: सुसाइडल तो रिएक्टिव डिप्रेशन में भी पॉसिबल है, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में पागल जैसी हरकतें करेगा।
1: इन तीन को आप, हमने डिफाइन किया, आपने बताया हमें कि किस तरह के जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो डिप्रेशन है। एक मैं यहां से बात आपसे, एक्चुअली हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सिस्टर शिवानी, आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि आज जब भी हम किसी मानसिक परेशानी की बात करते हैं, मानसिक बीमारी की बात करते हैं, इनफैक्ट आजकल तो इतनी ज्यादा उसके ऊपर बातचीत की जाती है, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, पहली चीज हर बीमारी का नाम डिप्रेशन दे दिया जाता है। व्हाई? आई एम लाइक, क्या हर जो मानसिक परेशानी है वो डिप्रेशन से उपजी है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमनेस्ट है इसके लिए डिप्रेशन का, बिकॉज डिप्रेशन इज सो कॉमन, और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि फोबिया आज बहुत बढ़ रहा है, जिससे कई न कई चीजों का लोगों को डर लगता है, पानी का डर लगता है, घर से बाहर जाने का डर लगता है, फोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे और एक बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सन, कि एक चीज व्यक्ति बार बार करता है, कि मैंने 100 बार हाथ धुलाई करेगा,
1: वो अपना वो देखेंगे कि ताला लगाया कि नहीं, बार बार देखते हैं वो।
2: कई बार कुछ रिचुअल्स भी होते, एक डॉक्टर मेरे पास आए थे कि चौराहे पे और ऐसे स्पेसिफिक उसकी विधि, तो चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन है, वो आगे बढ़ेंगे नहीं। कहते क्लिनिक में जाने को मुझे 3 घंटे लग जाते, एक बार ये ऑब्सेशन बुद्धि में आ गया फिर मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसी एंग्जाइटी

0: एक बहुत बड़ी और बीमारी है जो डिप्रेशन से बिल्कुल भिन्न है, उसके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और जो है वो है साइकोटिक बीमारियां, जिसमें सिजोफ्रेनिया हो गया, ऐसे और एक है मैनिक डिप्रेशन।
1: तो ये इट मीन्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिप्रेशन,
0: दे आर नॉट पार्ट ऑफ
1: डिप्रेशन। कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर होल ट्रीटमेंट या पूरा प्रोसेस, बट दे आर नॉट डिप्रेशन।
0: या तो ऐसा कहेंगे कि भी और बीमारियों के साथ साथ भी डिप्रेशन हो सकता है, परंतु ये सब डिफरेंट एंटिटीज है जिनका हम इलाज, जैसे मैनिक डिप्रेशन कहा, वो अलग प्रकार की बीमारी है जहाँ कुछ समय तो व्यक्ति एक्साइटमेंट में जाता है, एक दिन, पांच दिन, एक मास, और फिर कुछ समय वो डिप्रेशन में जाएगा, ये साइकिल उसका चलता रहेगा। उस समय बहुत खर्चा करेगा, बहुत बातें करेगा, गुस्सा भी कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, फिर कभी न कभी उसे डिप्रेशन भी आता है थोड़ा समय वो उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, तब ठीक से इलाज हो सकता है।
1: तो यहाँ तो अभी हम तीन तरह के जो डिप्रेशन की आपने बात की, रिएक्टिव डिप्रेशन और आपने
0: एंडोजेनस
1: डिप्रेशन,
0: साइकोटिक डिप्रेशन।
1: एंडोजेनस डिप्रेशन में क्या था, रिएक्टिव तो ये था कि किसी रिएक्शन कर रहे हैं।
0: एंडोजेनस डिप्रेशन में केमिकल का इंबैलेंस है, जीन्स के कारण हो सकता है, और भी कोई कारण पॉसिबल है कि बाहरी कोई परिस्थिति नहीं। व्यक्ति भी कहता है कि भी मुझे कोई ऐसे विचार भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैं डिप्रेस्ड हो गया। वहाँ संभव है कि उसे वह एंडोजिनस डिप्रेशन हो।
1: एंड देन थर्ड इज
0: साइकोटिक
1: डिप्रेशन,
0: जिसमें पागलपन भी है डिप्रेशन,
1: उसमें मेजर कहीं ना कहीं साइकेट्रिक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। कैन वी help these kind of, when we've talked about real three depressions, major depressions, जिनमें कहीं ना कहीं chemical changes भी हैं, क्या हम self counseling है पूरा process?
2: हाँ, दोनों aspect साथ साथ चलेंगे ना, medication, psychotherapy जो कर रहे हैं and meditation,
1: खुद अपने आप।
0: तो ऐसा कहेंगे, first two है वहाँ self counseling can help, reactive depression में भी हो, endogenous depression में भी होगा, लेकिन psychotic depression में नहीं होगा। इवन मैं तो कहता हूँ psychotic depression में meditation नहीं सिखाना चाहिए, भले उनको help होती है। ऐसी भी research studies हुई है कि psychotic depression में भी meditation मदद करता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं सिखाइए। क्यों? क्योंकि समझो कि आप कोई ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे गए, आपको psychotic depression है, तो बहनों को तो पता नहीं है पूरा क्या है, तो इसलिए वो तो मेडिटेशन ही सिखाएंगे। कभी ये बढ़ भी सकता है, इसमें यह भी होता है कि वो जो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस है, वह जो व्यक्ति सिखा रहा है उसके प्रति हो जाए।
1: हाँ।
0: कि नहीं, यही मुझे परेशान कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी वाले मेरे पीछे लगे हैं। ऐसे भी लोग तो सच मान लेते हैं कि सचमुच ऐसा हुआ होगा, बट लेकिन उसका वह डिल्यूजन है।
1: बिल्कुल।
0: ये भी हो सकता है कि मैं कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो इसके कारण ये जो इस प्रकार का साइकोटिक डिप्रेशन, उसमें मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात की थी जो मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, यू नो, जो लक्षण दिखने लगते हैं, तो कुछ फिजिकल लक्षण भी होते हैं जब डिप्रेशन हो रहा होता है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये जानना चाहिए सचमुच। ये तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि फैमिली फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं, उसमें भी 30-40% को डिप्रेशन है। इवन एमडी फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं, कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन है। स्टडी भी हुई है, प्रॉपर कहीं टेस्ट आती है साइकोलॉजी में, जैसे क्रोशाक टेस्ट है, 16PF की, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसके द्वारा हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट होती है, ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल टूल्स है। वह जो फिजिशियन के पास जा रहे थे लोग, उन लोगों को ये साइकोलॉजिकल टूल्स दिए गए और पता चला कि बड़ी संख्या में 25-30% पेशेंट्स हु आर विजिटिंग अ एमडी फिजिशियन आर एक्चुअली डिप्रेस्ड।
1: ओहो, तो मतलब ये फिजिकल एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, दे कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन,
0: दे आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। नहीं, वो डिप्रेशन का एक पार्ट है।
1: ओके।
0: उन्हें वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो रहे, भी पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और कोई तकलीफ है, लेकिन साथ साथ में डिप्रेशन भी है।
1: तो अगर
0: जो फिजिशियन को समझ में नहीं आता है,
1: डिप्रेशन दूर कर पाएंगे तो क्या वो सिम्टम्स,
0: वो भी ठीक हो जाए। हाँ, अगर डिप्रेशन आपने दूर कर दिया तो वह जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी रिलीफ कर देंगे।
1: हाँ, तो फिर सबसे पहली चीज यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन की डिप्रेशन है।
2: नहीं, बीच में आपको याद हो कि आया था कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों को
1: पेट में दर्द
2: होने लगा है, और उसमें अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारे डायग्नोस भी कराए, लेकिन कुछ फिजिकल एलिमेंट ही नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं ठीक हो रहा। तो देन इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, लेकिन हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पर इतना ध्यान देते हैं ना, एक्सटर्नल।

0: तो इंटरनल एस्पेक्ट पर न ध्यान देने के कारण उसको जड़ से उस प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पाते।
1: फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज आर इंटरलिंक, जैसे ना हाइपोथायरॉयडिज्म एक जिसमें थायराइड का लेवल कम है, इट कैन बी लिंक विद डिप्रेशन, इधर वे इज पॉसिबल।
2: डिप्रेशन कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म,
1: हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो कैन कॉज डिप्रेसिव सिम्टम्स
2: बिकॉज इट विल बी सेकेंड वन जो केमिकल चेंज हो रहा है।
1: केमिकल ये इवन हाइपोथायरॉयड के सिम्टम्स भी ऐसे ही है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ कम करने का नहीं होगा मन, इवन रिफ्लेक्सेस आर वेरी स्लो, तो वो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हो सकती।
2: और आपने कहा कि जो पहले दो तरह के जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन और जो दूसरे डिप्रेशन की आपने बात की जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम सेल्फ काउंसलिंग से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एम जब हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, जब भी इस कार्यक्रम में भी बात कर रहे हैं कि मकसद हमारा यही है कि हम सोल्यूशंस जरूर तलाश लें, और सोल्यूशंस अगर हम खुद की पहचान के दौरान ही तलाश लें जिस सफर पे हम हैं, तो क्या है वो सोल्यूशंस
1: जो सेल्फ काउंसिलिंग के सोल्यूशन। एक तो कि सेल्फ काउंसिलिंग से या तो कहेंगे कि मेडिटेशन से आप अपने आप को सही रूप से पहचान पाते, अपने सिम्टम्स को जो है, तो अधिकतर व्यक्ति अपने सिम्टम्स को ही पहचान नहीं पाता है, और अगर आप अपने सिम्टम्स को ठीक से पहचानने लगे तो थोड़ा भी डिप्रेशन शुरू होगा पता चल जाएगा, और फिर उसके लिए कोई कदम उठाना भी संभव है। आमतौर पर जब काफी डिप्रेशन बढ़ जाए तभी व्यक्ति को पता चलता है।
2: कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रह पाना सिस्टर शिवानी कि कुछ देर के लिए तो मैं खुद से बातचीत करके अपने आप को उस स्टेट से बाहर ला सकती हूं, लेकिन कई बार फिर ये लगने लग जाता है कि क्या मैं झूठ तो मतलब मैं क्या जिंदगी जी रही हूं। ये बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल अब मन में आता है जब वेन यू बीन टॉकिंग अबाउट कि अपने आप से बात की जाए, सेल्फ काउंसलिंग की बात की जाए, कई बार क्योंकि सब चीजें बेमानी लग रही होती है तो खुद से बात करना भी बेमानी लगता है कि क्या कर रही हूं मैं, क्या चीज है। लेकिन कितनी देर तक वो उस स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि हर लम्हा हर क्षण उस स्टेट में रह पाना जैसे हमने पहले बात की थी दैट इज द यू नो द बेस्ट, लेकिन वो नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा अब ये भी कंडीशनिंग हो सकती है लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं अभी आज के इस वक्त में नहीं है। तो कैसे हम अपने आप को हर पल समझा सकते हैं?
0: हर पल समझाना नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ये सिर्फ एक शुरू में थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है। जैसे आज नेगेटिव सोचना या परेशान रहना ये बहुत नेचुरल हो गया है, उसी तरह खुश रहना बहुत नेचुरल होगा। इट्स नॉट दैट लाइफ लॉन्ग आप ये करते रहेंगे कि बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा। कुछ एक दिन के लिए या कुछ एक मास के लिए कहें, ये एक जर्नी पे आप चलते हैं जहां परिस्थिति आती है, आप परेशान होते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को उससे निकालते हैं। 2, 4, 8, 10 बार आप जब इस तरह से करते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। आप अपसेट होंगे, तुरंत आप कहेंगे नो इट्स इन माई कंट्रोल, चलो 5 मिनट्स एंड बैक। सो द टाइम ड्यूरेशन की हम कितनी देर वो डाउन,
2: 4 घंटे के बजाय हम
0: इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। पहले वो 4 घंटे था, अब वो थोड़ा और कम होता जाएगा, एंड धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज, कुछ बात आई, आप अपसेट हुए, क्विक आप वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे स्टेज आएगी कि आप अपसेट नहीं होंगे।
1: राजयोग में जो मेरा अपना अनुभव है कि इसमें स्पेशल बहुत बैठने की आवश्यकता नहीं है, कई बार और जो टेक्निक्स होती है जिसमें आपको स्पेशली बैठना पड़ता है, 20 मिनट ध्यान किया फिर शांत लगने लगा, राजयोग की विधि ऐसी है कि आप चलते फिरते भी कर सकते। जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, परंतु भी मैंने ऐसे इंटरव्यू तो ढेर सारे दिए, नॉलेज इज देयर, मुझे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। तो जब आपसे बात कर रहा हूं तभी मैं ये अवेयरनेस ला सकता हूं कि आई एम अ पीसफुल
2: बीइंग,
1: आई एम पीसफुल और मैं आपको अपने विचार बता रहा हूं, तो देन इवन व्हाइल टॉकिंग आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेज। मैं तो यहां तक कहता हूं ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं आप मेडिटेटिव स्टेज में हो सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं वो स्टेज आपकी बन सकती है। तो शिवानी बेन ने बिल्कुल राइट कहा कि वो जो रूट जब स्टार्ट हो रहा है देयर इटसेल्फ यू कैन कट इट ऑफ।
2: तो ये हमने पहले भी बात ये की थी कि ये जो पूरा अवेयरनेस है ये हम आज इतनी देर बाद आकर हम जानने की कोशिश करते हैं, द जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम एट अ वेरी यंग स्टेज यू नो, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्वेश्चनिंग यू नो नॉट रियलाइजिंग। अगर वो 5वीं का बच्चा या 6ठी का बच्चा भी काउंसलर के पास जा रहा है, अगर ये अवेयरनेस उसके पास ही आ जाए वहां से, तो ये कितना जरूरी है, कहां कैसे किया जा सकता है?
0: जितना आजकल जैसे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, लेकिन काउंसलर्स भी यही ध्यान रखें कि वो उस इंडिविजुअल को, उस बच्चे को इनर पर लेकर जाएं, यू नो, वो भी कहीं सोल्यूशन आउटर ही ना देना शुरू कर दें।

0: अबाउट
1: दैट्स ऑल
2: आई थिंक स्टिल लाइक द बीए तो कहते हैं पांचवी मैं तो समझता हूँ पेरेंट्स आर बेस्ट काउंसिलर और बच्चा दो साल का है ना तब ही स्टार्ट हो इट्स नॉट एक्चुअल काउंसिलिंग कहा गया बच्चों को देखा है कि भी बच्चे हैं ना टीचिंग से नहीं सीखते दे डोंट डू व्हाट यू से दे डू व्हाट यू डू एक बार मैं भी अपनी एनालिसिस कर रहा था कि ऐसे स्पिरिचुअल कैसे बने नो व्हाट हैपेंड इन लाइफ लाइक माय पेरेंट्स वर नॉट सो स्पिरिचुअल फिर भी ये कैसे बात आई तो जब सोचते तो मुझे पता चला कि जब हम छोटे थे तो मेरे नाना हम गांव जाते थे गुजरात में एक छोटा सा गांव है वैकेशन में दो ढाई मास जाते थे और मेरे जो नाना थे वो दो तीन घंटे तक कुछ पूजा पाठ अपना करते थे हम लोग भी साथ में बैठ करके एवरीथिंग वी यूज टू डू एंड आई थॉट दैट मस्ट बी द सीड
0: समवेयर डीप विद इन
2: वो सीड था सचमुच की जो आगे चल करके वो सचमुच फुल ब्लोन फेज में आया तो पेरेंट्स को भी यही करना है
0: बिल्कुल
2: गलती ये करते हैं हमारे पास भी कहते हैं कि बच्चों को ले जाओ सेंटर पे हमको नहीं आना है And unless you do, children will
1: never practice that. Yes. And it won't have its effect also. Because then you are creating a wrong thought pattern. So agar aap bachchon ko right thought pattern create, you know, sikha bhi rahe hain, unless aap khud practice kar rahe hain, wo jo sanskars hain, wo change nahi honge.
0: Unless until you realize it, wo bachcha to fir apni sahi baat bolne lag
1: jayega. Actually, bahut zyada bachche ka thought pattern hum hi banate hain. You know, even ye kehna wahan mat jana, wahan bhoot hai. Ye fear create karna, ye humne hi to create kiya. बच्चा चल रहा है इतना छोटा सा उसको टेबल लग गई अब बच्चे को समझाने की बजाय कि आपकी गलती थी हम टेबल को मार देते हैं दिस इज ब्लेम कल्चर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर टॉट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट इट वॉज द टेबल्स फॉल्ट तो वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स लेकिन ये सारे थॉट पैटर्न्स हम छोटे से उनके अंदर डाल रहे हैं इंस्टेड यू नो राइट सोर्स क्योंकि ईजी वे आउट बजाय को समझाना कि बाहर अंधेरा है या क्या नहीं बाहर भूत है बाहर मत जाना तो इजी वे आउट विल नॉट वर्क
0: भूत आ जाएगा यू नो सो जाओ इस तरह से सुलाने के लिए
1: तो ये फियर
0: पी लो ये इस तरह से यस डेफिनेटली
1: ये सारी छोटी छोटी चीजें जो लॉन्ग टर्म में हमारे थॉट पैटर्न को फिर डिटरमिन कर देंगे
0: हाँ और कहीं ना कहीं जब फिर वो जो अचीवमेंट की बात है एक अगेन अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली अभी तो हमारा वक्त खत्म हो रहा है लेकिन इस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी अचीवर्स जो अचीव करने की एक यू नो लालसा कि मुझे वहीं पहुंचना है और नहीं पहुंच पाते वो जो डिप्रेशन है चाहे वो पीयर प्रेशर से है जो जो सुसाइड इतनी ज्यादा रिजल्ट्स को लेके होती हैं कि मेरे में कैपेसिटी है या नहीं मुझ में क्षमता है या नहीं लेकिन अचीव वो करना है वो जो मेजर डिप्रेशन जिसे आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा रूबरू हो रहा है अगली बार हम पूरे हमारे पास बहुत से ईमेल्स भी आए हैं शिवानी उन पे बात करेंगे और ये कि वो अचीव अगर नहीं कर पाए तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है डॉक्टर गिरीश पटेल आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए थैंक यू सो मच एंड सिस्टर शिवानी थैंक यू सो मच इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें लेकिन आज की इस पूरी बातचीत में जो बात सामने आई वो ये कि डिप्रेशन के कई फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं तो जरूरत ये है कि ना सिर्फ हमारे मन में क्या चल रहा है बल्कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं हमारे फिजिकल सिम्टम्स क्या कह रहे हैं क्या हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं इस बात को समझ लेना चाहिए और वहीं एक पॉज लेकर एक लम्हे के लिए रुककर खुद से बात करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं तुझे क्या चाहिए जिंदगी ये हर बार हम कहते हैं तो उस जिंदगी को तलाशना है अपने अंदर की इस जर्नी इस सफर को तय करना है और ये जानना है कि किस तरह से एक बेहतर न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी जिंदगी को भी हम जी पाएंगे आपके पास भी जरूर कोई ना कोई सवाल होगा तो आपका स्वागत है आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति
3: आला आला आला
4: अहो काय आला

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा यू नो ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
4: थैंक यू सो मच
3: सिस्टर। मैं सोच रहा था, इतनी हम बातें कर रहे थे संस्कारों की, तो जो संस्कार पहले आपने थॉट से शुरू किया, थॉट लेवल से फीलिंग वगैरह एक्सेट्रा, एंड में फिर संस्कार बन जाते डेस्टिनी, तो फिर ये डेस्टिनी का मतलब कर्म हुआ ना।
4: यस,
3: तो फिर जो मैं कर्म कर रहा हूँ तो वो फ्यूचर में फिर आ गया।
4: ये भी एक प्रोसेस प्लांट है ना, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज अ प्रोसेस। तो इन्फॉर्मेशन अंदर डाली, बिलीफ सिस्टम बने, थॉट्स क्रिएट हुए, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, ये सब अंदर तक था। राइट, इन्फॉर्मेशन हमने बाहर से ली, बिलीफ सिस्टम भी बनाए, यहाँ थॉट क्रिएट हुई, फीलिंग क्रिएट हुई, एटीट्यूड क्रिएट हुआ, ये यहाँ तक था। उसके बाद हम उसको एक्शन में लेकर आए, कर्म में लेकर आए, नाउ वी ब्रॉट इट आउट। फिर उसके बाद वो हमारी पर्सनालिटी बनी, फिर उसके बाद हमारी वो डेस्टिनी बनी। अब अगर हम उसको इस लेवल पर ही स्टॉप कर देते,
3: हार्ट लेवल पे,
4: हाँ, इन्फॉर्मेशन लेवल पे चेक कर लेते, बिलीफ सिस्टम क्या हमारा है उस पर चेक कर लेते, थॉट चेंज कर लेते, तो कर्म एंड डेस्टिनी वुड बी प्रोटेक्टेड।
3: यहाँ पर एक मुझे तकलीफ होती है, मन मुझे लॉजिक मांगता है कि मेरे कार्मिक एक अकाउंट में लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा सोचा और ऐसा होना था इसलिए मैंने बुरा कर दिया।
4: सी, बिलीफ सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन, थॉट कम्स आउट इनटू कर्म, राइट, बिकम्स द डेस्टिनी, एज विल बी माय डेस्टिनी, नाउ आई विल क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम, देन थॉट, देन इनटू कर्म, देन डेस्टिनी। तो वो साइकिल में चला गया, राइट, अब वो साइकिल में चला गया। इसलिए अब हम कह सकते हैं जैसे मेरी थॉट

0: जैसा मेरा कर्म या जैसा मेरा कार्मिक अकाउंट वैसे मेरी थॉट, वो एक साइकिल में चला गया है। लेकिन अब अगर हमें इस साइकिल को चेंज करना है, सपोज मेरी नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव कर्मा बन रहा है, डेस्टिनी में हर बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब जब डेस्टिनी में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को देखकर मैं फिर नेगेटिव थॉट क्रिएट करूं, प्रॉब्लम को देखकर हम पैनिक कर देते हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, हर्ट क्रिएट करते हैं, हम फिर नेगेटिव
1: क्रिएट करना, ये हर्ट करना, ये नेगेटिविटी क्रिएट करना, क्या ये भी मेरे कर्म में किस्मत पे लिखा था क्या?
0: कैसे लिखा था, दैट वी हैव टू सी, कैसे लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, कौन चेंज करेगा
1: कि कैसे लिखा, किसने लिखा, कब लिखा। लेकिन आज तो मैं मजबूर हूँ कार्मिक अकाउंट के हिसाब से।
0: तो फिर क्या दो ऑप्शन है, उसी साइकिल में घूमते रहे
1: और क्या कर सकते हैं, ही कर्म डेस्टिनी तो बना ली मैंने।
0: एट एवरी स्टेप वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द साइकिल। कोई चीज साइक्लिक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती जा रही है, उसने साइक्लिक ही चलना है, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
1: क्लॉकवाइज घुमाना है,
0: एक स्टेप पर उसको रोक के उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है।
1: हो सकते हैं,
0: यस। एंड जैसे ही उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, वो क्लॉकवाइज ही घूमती जाएगी क्योंकि वो साइकिल है। लेकिन अगर हमने उसको रोक कर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती जाएगी जीवन भर। और फिर अगर जीवन भर घूमती गई,
1: नेवर एंडिंग प्रोसेस,
0: एंड फिर अगले जन्म में भी, फिर उसके अगले में भी, फिर अगले, क्योंकि यहां पर साइकिल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता गया। तो इट इज अ साइकिल, बट साइकिल ऑल्सो हैज अ डायरेक्शन, कि साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमने वाला है या साइकिल नेगेटिव डायरेक्शन में घूमने वाला है। इट्स बिकॉज हम उसको साइक्लिक देखते हैं, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम कहते साइकिल है ना, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि उस साइकिल को एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव जो घूम रहा है, उसकी जगह हमें उसके डायरेक्शन को चेंज करना है।
1: ये थॉट भी आपकी डेस्टिनी में होनी चाहिए ना, कि मैं एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज करने के लिए आज से करूंगा, क्योंकि मैंने जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया उतना भुगतना है ना मुझे।
0: आज हमें ये ज्ञान मिल रहा है, ये भी हमारी डेस्टिनी में था, इसलिए मिला ना।
1: ऑफ कोर्स
0: मिला। अब इस ज्ञान से आज हमने क्या करना है, ये हमारे प्रेजेंट में पावर है। हम सारा ब्लेम पास्ट पे डाल रहे हैं, प्रेजेंट की पावर जो आ रहा है वो डेस्टिनी है, वो पास्ट की वजह से है। क्या प्रेजेंट में कोई पावर नहीं है? क्या हम प्रेजेंट सिर्फ पास्ट पे डिपेंडेंट है? प्रेजेंट की पावर क्या है?
1: मोर पावरफुल,
0: प्रेजेंट इज मोर पावरफुल देन द पास्ट। कल मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, आज मैं बीमार। आज मैंने फिर ध्यान नहीं रखा, टुमारो अगेन बीमार। टुमारो अगेन ध्यान नहीं रखा, डे आफ्टर टुमारो अगेन बीमार। तो पास्ट क्या कर रहा है, हर रोज मेरे सामने आ रहा है, हर रोज मेरे सामने आ रहा है, पास्ट मेरे सामने आता जा रहा है। क्या कोई भी एक दिन प्रेजेंट में मेरे पास ये पावर नहीं है कि आज ध्यान रखना है? तो प्रेजेंट का क्या महत्व है फिर?
1: तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं आज कोई भी खराब कर्म भी करूं, कार्मिक अकाउंट कैसा भी बनाऊं, टुमारो आई कैन चेंज, गेट आउट ऑफ इट।
0: ऑफकोर्स टुमारो आई कैन चेंज,
1: आई कैन ओनली चेंज माई रिएक्शन टू इट।
0: बट चेंजिंग द रिएक्शन ऑल्सो वी चेंज द सिचुएशन एंड द कॉन्सिक्वेंस। नो, कहीं तो साइकिल की एनर्जी को तो बदलना पड़ेगा ना, अगर हम नहीं चेंज करेंगे। एंड अब हमारे पास जो मोस्ट पावरफुल टूल है वो है मेडिटेशन। एक है कर्म सामने से आ रहा है जो पास्ट का, उसको हमें फेस करना है।
1: ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, एक कर्म सामने से आ रहा है और दूसरा आपको आज ज्ञान मिल रहा है।
0: yes.
1: तो ज्ञान मिलने का मतलब ही ये है कि नाउ यू आर गेटिंग अ चांस।
0: यस,
1: अब समझ में आया।
0: ज्ञान मिलने का मतलब ये है कि वी आर गेटिंग अ चांस, लेकिन साथ में हमारे पास मेडिटेशन का बहुत पावरफुल टूल है टू जैसे हम पहले कहते हैं ना, पापों को कैसे धोना है। आज दिन तक बहुत कुछ हमने दुनिया में देखा है कि पाप जो हमने पहले किए,
1: गंगा स्नान करते थे पहले,
0: हाँ, पापों को धोने के लिए बहुत कुछ करते थे, कहते पापों का प्रायश्चित करना है। तो वो पापों का प्रायश्चित करने का मीनिंग क्या होता था, कि जो मैंने पाप किया, मतलब मेरे से कोई गलत कर्म हुआ, तो मैं आज क्या करूं जिससे वो गलत कर्म क्या हो जाए, वो मिट जाए। द सिन नीड्स टू बी क्लेंज्ड।
1: जैसे

0: है वो भी जिम्मेवारी मेरी, जो मेरे साथ हो रहा है उसका भी जिम्मेवार मैं, अब क्या करना है वो जिम्मेवारी मेरी, कल टुमारो मेरे साथ क्या होगा उसका भी जिम्मेवार मैं, क्योंकि वो मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ। द पावर लाइज हियर। जैसे ही ये थॉट भी क्रिएट की, आर वे ऑफ लिविंग विल चेंज।
1: ये आपकी बात बहुत पसंद आई मुझे कि विक्टिम बनना है कि मास्टर।
0: अपना भाग्य बदलने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बिना नहीं बदला जाएगा, उसके बिना नहीं बदल सकते। फर्स्ट स्टेप इज टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मन की स्थिति की, अपने शरीर की हेल्थ की, अपने रिश्तों की, अपने साथ जीवन में हो रहा है उसकी जिम्मेवारी ये मेरी है। आगे इसका क्या करना है वो भी जिम्मेवारी मेरी है। आई हैव द कम्प्लीट पावर एंड द चॉइस टू क्रिएट अ डेस्टिनी दैट आई वॉन्ट। सारा दिन में कर्म वर्ड जो हम यूज करते हैं दो रूप से सारा दिन में चल रहा है, एक है इंटरनल कर्म, एक है एक्सटर्नल कर्म, दोनों है। एक कर्म है जो यहाँ चल रहा है, एक कर्म है जो यहाँ चल रहा है, क्योंकि इट्स विद पीपल इन्वॉल्व्ड, इट्स विद सिचुएशंस, एंड एक है जो अंदर चल रहा है। दो लेवल पे कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं सारा दिन। जो बाहर चल रहा है उसको हम कहेंगे वो एक रिपल इफेक्ट है, कि हम एनर्जी बाहर भेजते हैं वो एनर्जी हमारे पास वापस आती है। पहले हम ये कर्म देखते हैं जो अंदर चल रहा है सारा दिन, जिसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अब उसको कर्म के लेवल पर देखने की जरूरत है।
1: अंदर तो थॉट्स चल रही है ना, वो
0: थॉट्स चल रही है ना वो। सपोज आज मैं आपसे मिलूं और कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, या आप ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं जो मुझे बुरा लगता है और मैं गुस्सा भी कर देती हूं ऊपर से। जैसे ही मैंने ये गुस्सा किया, आपकी बात सुनी, बुरा लगा, गुस्सा किया, ये सारा सीन रिकॉर्ड हो गया सीडी पर। सीडी पर क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, द इमेज कि क्या हुआ था, द एंगर दैट आई क्रिएटेड एंड द वे आई एक्सप्रेस्ड दैट एंगर, एवरीथिंग गॉट रिकॉर्डेड हियर। ये कर्म एक्सटर्नल था, यहां रिकॉर्ड हो गया, सीन इज ओवर। थोड़े दिन के बाद मैं आपको कहीं और मिलूं, आपको देखते ही, अभी आपने कुछ नहीं किया, इस बार आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको देखते ही तेरा बिग चांसेस कि मेरे पास जो पास्ट की रिकॉर्डिंग है वो फिर याद आ जाएगी, याद आएगी मुझे, और यहां पर वो गुस्सा जो मैंने पिछली बार क्रिएट किया था जो रिकॉर्डेड है वो यहां नहीं,
1: अंदर जाग जाएगा,
0: यहां नहीं लेकिन यहां फिर से क्रिएट हो जाएगा। और जब ये फिर से यहां क्रिएट हो जाएगा वो फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि फिर से क्रिएट किया,
1: रिफ्रेश हो जाएगा,
0: रिकॉर्ड फिर से होगा। रिफ्रेश हो रहा है तो पहले वाली रिकॉर्डिंग रिफ्रेश हो रही है। नाउ आई एम क्रिएटिंग इट अगेन, Now it's getting recorded another time.
1: Oh God.
0: Okay. अब हो सकता है आप सामने भी नहीं है, you're not even there in front of me. मैं अपने घर आराम से बैठी हूँ, बैठे बैठे कुछ हुआ, मुझे फिर से वो बात याद आ गई,
1: फिर से रिकॉर्ड हो गया,
0: फिर से रिकॉर्ड होगा। This is internal karmas, how they happen. Karma means starts at the level of thought. अब वो फिर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब मैं कहीं और किसी के पास बैठी थी, किसी ने आपके बारे में बात करने शुरू की, किसी ने कहा वो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ये भी करते हैं, मैंने कुछ और ही कह दिया, वो फिर से रिकॉर्ड हुआ। दिस इज अ रिकॉर्डिंग विच इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक बार ये रिकॉर्डिंग होने लग गई, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिली, आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन प्रीवियस इमेज जो यहां है, द नेगेटिव इमेज दैट आई एम कैरिंग ऑफ यू, इससे मेरे मन बुद्धि इतनी क्लाउडेड होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, मेरा इस बार भी जो आपके साथ व्यवहार होगा

0: इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्वीट वन, बिकॉज मैं उस रिकॉर्डिंग का जो बटन है वो ही दब गया एंड वो ही फिर कर्म में आ गया, वो फिर रिकॉर्डिंग हो गई। इसीलिए कुछ लोगों के साथ हम अनुभव करेंगे कि पास्ट की कुछ अनप्लेजेंट बात, हर बार हमारा रिश्ता उनके साथ क्या होता जाता है,
1: खराब होता जा रहा है।
0: एंड वी आर जस्ट नॉट कम्फर्टेबल विद सर्टन पीपल ऑफ आर लाइफ, वी आर नॉट कम्फर्टेबल। कहते इनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, ये इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही है, बाहर कुछ नहीं हो रहा।
1: जैसे आपने कहा कि बार बार री रिकॉर्ड एक चीज को हम कर रहे हैं उसी बात को, तो इतनी पक्की हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम आप मिले तो थोड़ा कुछ और भी हो, एक छोटा सा आप जो कहते स्टिमुलस कहीं से भी हो, तो फिर सब फट के निकलेगा, फिर तो बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाएगा।
0: अच्छा, अगर अगली बार बहुत ही बड़ा झगड़ा हो भी गया फिर रिकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी?
1: हाँ, तो तीसरी नई वाली और भी बढ़ जाएगी।
0: रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ दिस रिकॉर्डिंग इज नॉट इवन हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनीथिंग आउटसाइड, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ लॉट दैट इज हैपनिंग इनसाइड। हर बार जब उस बात को याद करते हैं
1: तो फिर हम इनसाइड से क्यों नहीं चेंज कर लें?
0: दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। एक्सटर्नल कर्मा पर चेंज करने से पहले हमें इंटरनल कर्मा पर ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कितनी सारी चीजें इंटरनल रिकॉर्ड होती जा रही है। एवरी टाइम वी थिंक ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट, इट इज अ कर्मा
1: एंड अ न्यू रिकॉर्डिंग। तो इसको रोकने के लिए क्या स्टॉप बोलें या मेडिटेशन करें?
0: इम्पोर्टेंट है इस बात को याद समझ लें कि एक झगड़ा एक बार हुआ, एक इंसल्ट किसी ने एक बार की, एक गलत शब्द किसी ने मुझे एक बार कहा, एक बार मैं हर्ट हुई, वो एक कर्मा बना। लेकिन जितनी बार उसको याद किया, जितनी बार वो बात फिर से अंदर घूमी, जितनी बार वो इमोशन फिर से क्रिएट हुआ, हर बार वो एक कर्मा बना। क्योंकि यहां तो क्रिएट हो गया ना फिर से सारा कुछ, वो इमोशन क्रिएट हुआ, फीलिंग क्रिएट हुई, वो एक्सपीरियंस फिर से आया, सब कुछ क्रिएट हुआ, रिकॉर्डिंग हुई। तो कर्मा इज सो मच दैट इज हैपनिंग इनसाइड, लेस दैट इज हैपनिंग आउटसाइड, मोर इज हैपनिंग इनसाइड। के एक सिचुएशन को अगर हम 10 बार भी याद कर लें, कर ही लेते हैं हम, जो बहुत हैप्पी सिचुएशंस नहीं है उनको हम कई बार याद कर लेते हैं, तो एक सिचुएशन को हम 10 बार भी याद कर लें तो फिर वो एक कर्मा नहीं, वो 10 नेगेटिव कर्मास बन जाएगा।
1: अनहैप्पी सिचुएशन तो ज्यादा याद आती है,
0: हर्ट वाली, अब्यूज वाली, इरिटेशन वाली, रिजेक्शन वाली, एक्सप्लोइटेशन। ये एक बार हुआ था, लेकिन रिवाइज कितनी बार किया अंदर, रोए कितनी बार, गुस्सा कितनी बार आया, हर्ट कितनी बार हुए, उदास कितनी बार हुए, याद ही कितनी बार कर लिया। जितनी बार किया, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग। नाउ वी आर अ बंडल ऑफ ऑल दीज कर्मास, सो वी हैव टू टेक केयर कि पास्ट इज पास्ट, जो हुआ। हर बार अगर हम सिर्फ इतना भी याद कर लें, मेरे को ये बात फिर से याद आई ना, ये फिर रिकॉर्ड हो रही है
1: और इसमें मेरा नुकसान है,
0: मेरा ही नुकसान है।
1: मैं अपने गोल से भी हट रहा हूँ, पाथ से भी हट रहा हूँ, बीमार भी हो रहा हूँ।
0: सिर्फ ये एक होमवर्क, जब भी कोई पुरानी बात याद आए, पास्ट की बात याद आए, शुरू होगा वो थॉट आना, थॉट क्रिएट भी हो जाएगा, उसको कहेंगे फुल स्टॉप ये फिर रिकॉर्ड हो जाएगा।
1: बैड फॉर माय फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ,
0: स्पिरिचुअल हेल्थ, एंड इट्स बैड फॉर माय डेस्टिनी, बिकॉज माय कर्मा विल क्रिएट माय डेस्टिनी। फुल स्टॉप, नहीं तो ये फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एक लाइन अपने आप को आज बार बार कहेंगे तो वी विल सी कि हम बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करने से बच जाएंगे, रुक जाएंगे।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: थैंक यू। थॉट्स
2: So destiny is a cyclic process. If we are not aware, then as will be our past karmic account, so will be our present thoughts. If we created negative thoughts, our destiny is not pleasant. And now, in the face of that destiny, we may again create negative thoughts. So, we start blaming our destiny for the quality of our thoughts now. If our past thoughts to destiny to present thoughts cycle is in the negative direction, it may continue for a lifetime and also carry forward to the next birth. If in a difficult karmic account we create pure thoughts, the direction of the cycle will change and then continue in the positive direction always. Situations which are coming towards us, which includes our health and people's behavior, are due to our past karma. The way we respond to them now is our present karma. Our present is more powerful than our past. If we keep blaming the situation for how we react now, then our past continues into the present and the future. In the present karma, we have the power to change our sanskars, to heal our body, to create harmony in relationships, and to experience success.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। श्रीधर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुरेश जी भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं, खास करके जब हम लोग इंडियन लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें जो है एक मल्टीपल वर्कआउट यहां पर दिखाई देता है। तो इसमें हम विद्यार्थी मित्रों को किस तरह से अपना करियर करना है, वो चीजें हम लोग जो है कोशिश करेंगे आज आपको कुछ खास बातें, टेक्नोलॉजी के साथ हमारी भाषा कैसे काम करती है और इंडियन लैंग्वेज किस तरह से काम करता है, इस विषय पर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से श्रीधर जी का और सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। नमस्ते श्रीधर जी।
4: नमस्ते,
3: कैसे हैं आप? नमस्ते,
4: मैं अच्छा हूँ
3: जी। जी सुरेश जी, कैसे हैं आप?
5: मैं सुरेश बढ़िया, आप सब?
3: चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं श्रीधर जी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। श्रीधर जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप करते क्या है?
4: मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, उसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट में था और उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूं।
3: जी जी।
4: और 35 साल से मैं काम करते आ रहा हूं ये आईटी क्षेत्र में, और इसमें मैं खास करके इंडियन लैंग्वेजेस का सॉफ्टवेयर बनाने के प्रयास किया है और वो उसमें सभी भारतीय भाषाओं, और वो 40 साल के ऊपर मैं कर रहा हूं। इसमें ये पहले इंस्पिरेशन ये था कि भारतीय भाषाओं के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए,
3: जी जी जी,
4: ये पीसी आने से पहले भी हम लोग को चाहिए था, आईबीएम पीसी इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो उस टाइम मैं ये सोच के काम किया था कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत में से कोई नहीं सोचते तो कौन सोचेगा। तो ये लगभग 85-86 की बात है। तो उस टाइम से ही एक इंटरेस्ट आया था लैंग्वेजेस में काम करने के लिए, और फिर वही मेरा मकसद भी बन गया और एक करियर ऑप्शन भी मिल गया, और उसी में करते आ रहा हूं और कंटिन्यूअसली जो भी डेवलपमेंट होते जा रहा है उसमें आई एम टेकिंग इंडियन लैंग्वेजेस।
3: क्या बात।
4: तो शुरू में विंडोज में आया था, विंडोज के बाद विंडोज 95, विंडोज 95 के बाद विंडोज 2000, फिर उसके बाद नया वाला विंडोज जो आया
3: जी
4: उसमें भी चल रहा है, और इसके साथ साथ हम लोग एप्लीकेशन में लाइक वेंचुरा से लेके पेज

0: का भी जो सॉफ्टवेयर चाहिए
1: वो भी
0: वो सब हम लोग उसमें साथ में दे रहे हैं। और नए रूप में अभी मोबाइल आने के बाद काफी कुछ विस्तार हो गया, क्योंकि यूसेज बढ़ गया और मेथड्स भी बढ़ गए और यंगस्टर्स भी बहुत यूज कर रहे हैं जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं लेकिन मोबाइल में अच्छे तरह जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उनको कवर करने के लिए हम लोग ये पूरा जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल में भी लेके आया। मोबाइल में भी आप टाइप कर सकते हैं, मोबाइल में वॉइस टू टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल को लेकर बात करेंगे तो आप टाइपिंग हो जाएगा अपने आप।
1: अच्छा,
0: तो कहीं से भी कोई भी कुछ चीज लिख के आपको भेज सकता है इसके थ्रू। और इसके अलावा आपको टेक्स्ट टू स्पीच करके एक टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या करेंगे आप टेक्स्ट को देंगे और वो पता के स्पीच में कन्वर्ट करके आपको सुनाई देगा अच्छा से। अभी वो जो इसमें आ रहा है अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो हर एक का आवाज सुनाने को दे रहा है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है और इसका पूरा टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो आम आदमी यूज कर सकता है।
1: अच्छा,
0: ओके, ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए कहीं लाखों खर्चा करना है या तो इधर उधर दौड़ने का है, सब अपने मोबाइल में या तो अपने पीसी में हो सकता है, उपलब्ध है।
1: बिल्कुल।
0: और ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, सभी भाषाओं को कवर करते हैं। इंडिया में 22 भारतीय भाषाओं में अप्रूव्ड है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस में
1: जी।
0: सभी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में होगा या तो तमिल में होगा या तो मराठी में होगा, सभी लैंग्वेज का कवर कर सकते हैं। और इससे एक नया फीचर हम लोग जो दे रहे हैं उसको बोलते हैं ओसीआर। ओसीआर का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। जो हमारे पास पुराना टेक्स्ट है जो मतलब 30 साल 40 साल 50 साल 100 साल, उसको सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ ग्रंथ या तो किताब है, उसमें से हमको उठाना है टेक्स्ट को। अभी नया जनरेशन है तो शिलिपि का फॉन्ट है, ओके, इंडिका का फॉन्ट है, हर एक डेवलपर अपने अपने हिसाब से किया है पहले।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी क्या हो गया, सब मिलके एक यूनिकोड बन गया, यूनिकोड इज अ स्टैंडर्ड। लेकिन ये स्टैंडर्ड में लेके आने के लिए कुछ कन्वर्शन करना पड़ता है, तो ये कन्वर्टर हम लोग उपलब्ध किया है सो दैट ये कोई भी पुराना टेक्स्ट हो उसको आसान तरीका से नया रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिकोड इज एक ही टेक्स्ट है जो मोबाइल में देख सकता है, बाकी टेक्स्ट है मोबाइल में पढ़ नहीं सकता। आप प्रिंट के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन मोबाइल में जाना है तो पढ़ नहीं सकते हैं, वो एक बड़ा इश्यू है। तो इसके लिए ये कन्वर्शन बहुत जरूरी है और वो भी हम लोग दे रहे हैं, और कोई सिर्फ एक भाषा में नहीं है, सभी भाषाओं में।
1: बहुत बढ़िया,
0: मतलब आपको हिंदी में भी हो तमिल में भी हो। और इसके अलावा एक और यूनिक फीचर है जो क्या बोलते हैं, लिपि बदलने का प्रक्रिया है।
1: अच्छा,
0: उसमें क्या है कि आपका टेक्स्ट है हिंदी में है लेकिन मुझे हिंदी पढ़ने को नहीं आता है, समझने को आता है, लेकिन मेरा लिपि पढ़ने का है मेरा गुजराती या तो कन्नड़ या तो तमिल या तो तेलुगु, तो वही हिंदी टेक्स्ट आपको सिर्फ एक बटन के क्लिक से गुजराती में आ जाएगा या तो तमिल में आ जाएगा या तो तेलुगु में आ जाएगा, मैं पढ़ सकता हूं।
1: अच्छा,
0: मुझे हिंदी समझ में आता है लेकिन पढ़ने को नहीं आता, ऐसा बहुत है। और नए जनरेशन के नए पीढ़ियों में भी ऐसा है कि यंगस्टर्स को हिंदी समझ में आता है लेकिन अंग्रेजी में पढ़ते हैं, वो भी कर सकता है उसके
1: वो भी कर सकता है।
0: तो इसी तरह भाषा बदलने का स्कीम है। और अभी एक और समस्या आ गया है कि मोबाइल यूसेज, ये पहले 10 साल पहले इतना नहीं था। अभी मोबाइल यूसेज काफी ज्यादा हो गया। हम लोग एक्चुअली एक स्टैटिस्टिक्स भी निकाला था, एक दो मैं ई बुक्स भी बनाता हूँ, मतलब ई बुक्स बना के मोबाइल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
1: अच्छा,
0: तो उसके लिए क्या है कि हम लोग एक सर्वे किया था, एक किताब डाला था और उसको देखा था, कुछ 1 लाख व्यूज आया था उसमें।
1: अच्छा,
0: तो वो किताबों को अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ 1 लाख व्यूज 99.5% मोबाइल से देख रहे थे।
1: अच्छा,
0: और बच्चे कुछ जो 0.5% वो पीसी में लैपटॉप में देख रहे थे या तो डेस्कटॉप में देख रहे थे। तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि जनरेशन मोबाइल में कंज्यूम करते हैं डेटा को, और हम लोग जो बनाते हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं हो तो इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जिसको पहुंचाना है वो पहुंचा नहीं सकते। यंगस्टर्स तो काफी दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ मोबाइल, जो 15 साल से है, 20 साल से है, 30 साल से है, वो

0: कम्फर्टेबल विथ मोबाइल, उनको एक्सेस भी नहीं है कि डेस्कटॉप का, क्योंकि डेस्कटॉप जरूरत ही नहीं है किसी को,
1: बिल्कुल मोबाइल ही नहीं है।
0: हाँ, तो और दूसरा हम लोग इसके साथ पूरा जुड़े हुए हैं, रात भर जुड़े हुए हैं, दिन भर जुड़े हुए हैं, 24 घंटे जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो कोई भी देते हैं तो वो प्रेफर भी करते हैं मोबाइल में तुम भेजो।
1: बिल्कुल,
0: तो हम लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ में भेजते हैं। पीडीएफ में कंटेंट भेजने में मेन समस्या है कि पीडीएफ एक फॉर्मेट है जो पेपर की साइज में बनती है, तो पेपर है हम लोग का लाइक A4 होगा या तो इसका 5x8 या तो 5.5x8.5 ऐसा होता है। 5 इंच का पेपर है, 8 इंच का लंबा पेपर है, उसको हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं, दो इंच का विड्थ है, ठीक है, 2.5 इंच का विड्थ है, तो उसमें अगर देखेंगे तो वैसे भी छोटा होने वाला ही है, और छोटा ऐसा होगा कि 1/4 हो जाएगा, 1/4 होता है तो आपको पढ़ने का जो ये है वो खत्म हो जाता है, फिर आपको जूम करना पड़ता है। जूम करके आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है कि थोड़ा एक दो पेज के लिए अच्छा लगता है, तो वैसे ही प्रिंट जैसा ही दिखता है, सही दिखता है, लेकिन एक दो पेज आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद अंक में स्ट्रेन आ जाता है। स्ट्रेन आने के बाद आपको क्या करेंगे, आप बंद करके चले जाएंगे। तो मोस्टली क्या है कि पीडीएफ जरूर फॉरवर्ड होता है, सबको फॉरवर्ड होता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। तो आपका मकसद क्या है, पढ़ना है या तो फॉरवर्ड करना है? तो हमारा कंटेंट क्रिएशन का मतलब है पढ़ना है, क्योंकि कुछ तो समझना है ना, नहीं तो क्या है कि फॉरवर्ड ही करना है तो फिर कैसे भी करो तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पहले नहीं था, क्योंकि 10 साल पहले मोबाइल यूसेज इतना नहीं था और किसी को ये स्ट्राइक भी नहीं हुआ, और आज जो है इसका बहुत बड़े समस्या, गंभीर समस्या हो गया। और दूसरी बात है, पीडीएफ जो है वो 40 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, वो जब भी इन्वेंट किया था या तो बनाया था उस टाइम ये नहीं था कि मोबाइल आने वाला है करके मालूम नहीं था, किसी को भी पता नहीं। सो ये 10 साल ये जो रिसेंट चेंजेस है वो मोबाइल पीडीएफ को भी पीछे कर दिया।
1: तो पीडीएफ के बदले अभी क्या,
0: पीडीएफ के बदले अभी क्या है कि दूसरा एक नया स्कीम आया है कि ईपब करके, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। उसमें क्या है कि आपका मोबाइल जो भी साइज का हो आप कोई भी साइज में देख सकते हैं। अभी आप मोबाइल में देखना चाहते हैं तो मोबाइल के हिसाब से वो फिट करेगा, और अगर आप बड़ा टीवी में देखना चाहते हैं तो वो टीवी के हिसाब से फिट करेगा, या तो आपका पीसी में देखना चाहते हैं तो पीसी के हिसाब से फिट करेगा। तो इसका बोलते हैं लिक्विड लेआउट। तो लिक्विड कैसा है कि कोई भी बर्तन में डालेंगे, बर्तन के हिसाब से वो फैलेगा, सेम थिंग विल हैपन हियर। तो इसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको कंटेंट जो है वो पढ़ने को मिलेगा, आराम से पढ़ सकते हैं, आप जूम नहीं करना है। आप अगर समझ लीजिए आपका आंख थोड़ा पावर कम है, आप उसमें बड़ा करके देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक बटन से क्लिक कीजिए, पूरा बड़ा होके उसी साइज में वापस दिखेगा।
1: अच्छा,
0: ये जूम नहीं है, जूम मतलब आप ऐसा ऐसा हिलाना पड़ता है, इधर वो सब जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा ही है, फेसबुक या तो व्हाट्सएप में जैसा देखते हैं वैसा पढ़ के आगे बढ़िया। ये प्रोसीजर है, सबको अभी आसान से आता है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम लोग सब सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, सबका वो इंटरेस्ट भी है, उधर कंज्यूम भी करते हैं, तो इसी तरह ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा। और ये ऐसा स्टैंडर्ड है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है, 50 साल आएगा तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: और अगर रहेगा तो भी जो भी नया टेक्नोलॉजी आने वाला है इसको साथ में लेके जाएगा, आपको नया चीज कुछ करने की जरूरत नहीं है।
1: सही बात है। चलिए श्रीधर जी, बहुत ही अच्छी बात ये आपने बताया कि किस तरह से आप काम करते हैं, और फाउंट के बारे में आपने बताया, और जिस तरह से हम लोग आज सभी चीजें देख रहे हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल से पढ़ना भी चाहते हैं और मोबाइल से ही सब कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका ये जो टेक्निक है, ये जो आपने रिसर्च किया है, ये सब चीजें जो है यूजर फ्रेंडली होगा और मोबाइल यूजर के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा आने वाले समय में। बहुत अच्छी बात आपने बताया। आइए यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हम सुरेश जी से भी बात करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और 107.8 एफएम को आप सुन रहे हैं। और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं कि किस तरह से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी की बातें सुन रहे थे और उसमें भी लैंग्वेज और फाउंड के बारे में बातें कर रहे थे। तो श्रीधर जी ने काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन, उनका अनुभव हमारे साथ साझा किया और पिछले काफी लंबे समय से जो है 3-4 दशक से वो इस काम को कर रहे हैं और उन्हें ये टू जेड पता है कि पहले कैसे होता था, अभी कैसे है। और जब मोबाइल की टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी ये काम होता था और आज फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी आने के बाद उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको बताया गया। और कई बार हमारे पास पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हम बहुत मुश्किल में उसको पढ़ पाते हैं या कहीं देने में भी थोड़ा झिझक हो जाता है, तो ऐसे में उसको आप रिफ्रेश करके नया भी कर सकते हैं और वो उसमें जो भी टेक्स्ट है उसको जो है आप स्क्रीन पे भी लेके आ सकते हैं। तो ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूनिक एक जो है फीचर है जो आप अगर इन चीजों को समझते हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हूँ सर, धन्यवाद।
0: जी जी जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कब से जुड़े हुए हैं इस फील्ड में?
1: श्रीधर जी के साथ जब से आकृति सॉफ्टवेयर बना है तब से जुड़ा हूँ 93 से, और आप की संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी 93 से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके प्रिंटिंग प्रेस जो है ज्ञान अमृत भवन संतोष जी से मुलाकात हुई थी और तभी से आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और तभी तो काफी रिसोर्सेज कम थे वो, लेकिन वो रिसोर्सेज में भी हमने काम किए हुए हैं और सॉफ्टवेयर को उन लोग ने बहुत अच्छे फीडबैक देके जो जो उसमें कमियां या सुझाव

0: उसके यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए दिए वो हमने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किए। और विपणन बेसिकली मार्केटिंग मेरा मेन फोर्टे है। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, लेकिन पहले से एक ध्येय रहा है कि ये चीज पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है या सर्विसेज है उसको कितनी अच्छी तरह से मैं लोगों के समक्ष लाऊं, कितना यूजर फ्रेंडली बनाऊं। तो मेरा मकसद यही रहता था कि लोगों का फीडबैक मैं सीधा जी को दूं और वो सीधा जी उनको और अच्छी तरह बना पाए। और ये रिश्ता करीबन 35 सालों से चल रहा है और भी आगे बढ़ता ही रहेगा। और शुरुआत में तो जो अलग अलग टाइप के जो टाइपिस्ट हुआ करते थे
1: जी जी,
0: उनके लिए भी हमने लेआउट बनाया। पहले तो सिर्फ भाषा दो ही थी, मतलब हिंदी और गुजराती, फिर धीरे धीरे तमिल, तेलुगु, मलयालम। और अपार्ट फ्रॉम ये आपकी संस्था है, मेरा करियर की ऑलमोस्ट 80% मैंने बैंकों में समर्पित की है।
1: अच्छा।
0: तो रिजर्व बैंक ने 95 में ये सॉफ्टवेयर को अप्रूव किया।
1: अच्छा।
0: केवल आकृति नहीं, दो और भी वेंडर्स थे, लेकिन करीबन 2 साल में उन्होंने बाकी के दोनों सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना बंद कर दिया और केवल आकृति पे ही रहे। और वहां पे मुझे एक समस्या थी कि उनके पास वो दिन स्टेनोटाइपिस हुआ करते थे, तो एक लाइन उनको अंग्रेजी में करनी है, एक लाइन हिंदी में करनी है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो उनको फॉन्ट बदलने जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लगता था। फिर सीधा जी के साथ डिस्कस किया कि ये समस्या का हल कैसे किया, तो हमने बायलिंगुअल फॉन्ट बनाया है।
1: अच्छा।
0: तो वही फॉन्ट में आप अंग्रेजी और हिंदी साथ साथ कर सकते हैं, टोगल की दे दी, स्क्रॉल लॉक है या कैप्स लॉक है या और कोई बटन है, तो वही फॉन्ट में वो। फिर उधर और भी एक समस्या थी कि उनका पुराने डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर थे, एक तो शब्दरत्न था और एक कौन सा था, एक सीधा
2: विनकी
0: नहीं, वो शब्दरत्न था और एक था अक्षर
2: अक्षर फॉर डॉस।
0: तो वो जो उन्होंने अपने टेक्स्ट बनाई है तो वही स्वरूप में हमने विंडोज में इम्प्रूव करके दी। और सबसे बड़ा चैलेंज था जो विन की करके जो कीबोर्ड था वो 4-लेवल कीबोर्ड था।
1: अच्छा अच्छा।
0: उसको भी हमने साकार किया क्योंकि कुछ बैंकों के कुछ जो स्टेनोटाइपिस्ट थे उनको वही लेआउट की एक आदत हो चुकी थी, तो वो वहां से नया लेआउट सीखना बिल्कुल नहीं चाहते थे। अच्छा। दूसरा, आगे सॉफ्टवेयर का एक्सेप्टेंस के लिए और एक चुनौती आई कि जो मैनेजर है, जो फाइनली जो डिसाइड करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर लेना है
1: जी।
0: तो उनको तो ये टाइपराइटर कीबोर्ड लेआउट तो कुछ आता नहीं था।
1: हाँ।
0: मतलब डी पे क करना एग्जांपल है, तो फिर हमने एक फिर से कोशिश की फोनेटिक लेआउट। तो जैसे आपको राम लिखना है तो आर एम राम है, कमल लिखना है तो के एम एल कमल है, वैसे करके। तो उसका हमने बहुत सारी ट्रेनिंग दी रिजर्व बैंक की जो स्टाफ कॉलेज हुआ करती थी
1: जी।
0: मैं मेरा साथी ऑलमोस्ट महीने में 4 बार वहां, बाकी के बैंकों के ऑफिसर्स आते थे उनको हम सिखाते थे और वो खुद टाइप करते थे, फाइनल प्रिंट आउट भी हमें दिखाते थे। और हम उनको एक, तभी उन दिनों में फ्लॉपी भी थी सीडी भी थी, तो उनको एक डेमो पैकेज भी देते थे, फिर वो अपने ऑफिस में जाके इस्तेमाल करते थे, फिर वो आगे की प्रोसेस जारी रहती थी। तो ये बहुत ही यूजफुल रहा, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, रेलवेज है, पोर्ट ट्रस्ट है, तो वहां पे मेरा ऑलमोस्ट आप समझिए कि 75% करियर उसी में ही गया। और पैरेलल जैसे ब्रह्मा कुमारी है तो मैं ही आकृति के लिए फ्रंट फेस हूं, सीधा जी तो है ही
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आप लोगों की जो भी छोटी छोटी समस्या आती है वो मेरे पास पहले आ जाती है, तो उसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी का ऋणी हूं कि अभी तक मुझे सेवा देने का मौका मिला है।

बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, किस तरह से आप इस फील्ड में आए और ज्यादातर आप बैंकों के साथ जुड़े रहे और उनकी जो टाइपिंग वाली बात आती थी उसे बड़ी रिसर्च आपने उस पर किया और काफी संशोधन आपका चलता रहा कंटिन्यू, क्योंकि एक बार आप इन चीजों को करना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका भी मकसद यही रहता है कि यूजर को अच्छे से यूज करने को मिले और चीजों को आसान हो जाए उपयोग करने में, और लोग भी चाहते हैं कि ये चीजें सॉफ्टवेयर जो भी मिला है उससे काम जल्दी हो जाए, ऐसा ना हो कि पहले तो हम लोग जो टाइपिंग करते थे वही ठीक था, ऐसे ना हो, इसलिए तो वो चीजें करते करते आज जो है काफी इसमें बहुत सारी चेंजेस करके आज यूजर फ्रेंडली चीजें बना रहे हैं आप, और दोनों मिलकर आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: शांति नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और श्रीधर जी और सुरेश जी का दोनों का एक्सपीरियंस हमने सुना और दोनों ने इक्विवेलेंटली आकृति पर काम किया और फिर अलग अलग जो चीजें सामने आती थी उसको समस्या को सुनते थे और उसका फिर समाधान भी ढूंढकर लोगों को देते थे। और साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी से भी उनका काफी लंबा समय से जो है 93 से उनका नाता बना और जब ज्ञानमृत प्रिंटिंग प्रेस यहां पर हुआ करता था तो वहां पर उन्होंने आकृति को एस्टेब्लिश किया और आकृति के साथ साथ जो चीजें समस्याएं आती थी उसका फिर समाधान करते हुए इसमें काफी चेंजेस करते करते आज जो है एक बहुत ही अच्छी चीजें वो दे रहे हैं। तो आइए मैं फिर से श्रीधर जी को जोड़ना चाहूंगा। जो करियर के हिसाब से अगर हम लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, विद्यार्थी मित्र है जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो मोबाइल टेक्नोलॉजी या फिर लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा मिक्स हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए करियर का शुरुआत कैसे और कहां से कर सकते हैं, श्रीधर जी थोड़ा बताइए।
2: धन्यवाद। अभी हम लोग ये देखा था कि किस तरह टेक्नोलॉजी हमारे बीच में बदलते जा रहा है।
1: जी जी जी।
2: तो इसको नजर रख के हम लोग अगर आज के जमाने में देखते हैं कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस मिलता है। नंबर वन, हमको समझना है कि यूसेज बहुत बढ़ गया, कंटेंट कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, ठीक है। और दूसरा है कंटेंट जो है वो हर रूप में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट ही कंटेंट है, वीडियो एक पावरफुल कंटेंट है, ऑडियो एक पावरफुल कंटेंट है और ये मिक्स किया हुआ भी एक पावरफुल कंटेंट है।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि सिर्फ ऑडियो भी नहीं है, सिर्फ वीडियो भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट भी नहीं है, एक मिक्स किया हुआ कंटेंट भी है। हम लोग सिर्फ एक पे फोकस करके करेंगे तो वो एक सीमा तक ही रहेगा, बिकॉज इट इज यूज्ड एंड हर एक का अपने अपने एक यूज होता है। क्योंकि जहां पे आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, हाई बैंडविड्थ लगेगा, उस टाइम ऑडियो सुन सकते हैं। और पढ़ने का जो तो ये नहीं है, क्राउडेड बस है या तो जिसमें हम लोग बैठ के पढ़ नहीं सकता है, स्टैंडिंग में जा रहे हैं, मैं ऑडियो सुन सकता हूं।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन ऑडियो का जो है वो अलग स्कीम में काम करता है, जिसको मेरे को रेफर करना है बार बार, उसमें मुझे पढ़ना ही अच्छा रहेगा। बिकॉज ये वीडियो और ऑडियो में मेरे को फॉरवर्ड और बैकवर्ड, पीछे आगे जाके कितना मैं ये करूंगा, ग्रास करूंगा, वो मुश्किल है, उस टाइम पढ़ना ही अच्छा रहेगा। सो हरेक का एक एक महत्व रहता है और उसको अनुसार हम लोग स्किल डेवलप करना है। नाउ अभी देखेंगे कि ये जो डिजिटल पब्लिशिंग में करता हूं, इसको एक्चुअली डिजिटल पब्लिशिंग बोलते हैं और इसमें मैं काफी काम कर चुका हूं और ट्रेनिंग भी देता हूं और काम भी करके देता हूं और ट्रेनीज को प्लेसमेंट भी देता हूं। क्योंकि ये जो है ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि

0: सिर्फ भारत में होने वाला है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है और ये टेक्नोलॉजी बदल रहा है। सो ये बदलने के बाद जो रिक्वायरमेंट है ना, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, वो भी बदलेगा। और आप सब जानते हैं अभी चैट जीपीटी का भारी बात होती है और कैसा ये पूरा बदल रहा है सीन, क्योंकि कंटेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी को बता दिया तो वो कंटेंट अपने आप दे देगा। ओके, वो भी उसका थोड़ा बाद में करता हूं। सो इस ये सबको देख के मुझे ये लग रहा है कि कम 20 एरिया में करियर ऑप्शन मिल सकता है अभी।
1: अच्छा,
0: ओके, एक नहीं है, दो नहीं है, 20 ऑप्शन में। पहले देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक तो कंटेंट का क्रिएशन अमाउंट बढ़ गया है। आप देखिए यूट्यूब है, इज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग।
1: बिल्कुल,
0: आप वीडियो सोचिए, सिर्फ वीडियो को ही देखिए, बिलियंस ऑफ वीडियोज आर देयर, तो इसका मतलब कितना विस्तारित हो गया। सिमिलरली व्हाट्सएप इज अ ह्यूज पब्लिशिंग थिंग, फेसबुक इज ह्यूज पब्लिशिंग। हम लोग वो पब्लिशर में गिनते नहीं है क्योंकि वो पब्लिशिंग है। ये नंबर 1 2 3 ये तीन रहेगा, फिर बाकी का आएगा प्रिंट का। प्रिंट का सी, प्रिंट एज ए लिमिटेशन, डिजिटल में आपको लिमिट नहीं है क्योंकि यू कैन एक्सप्लोर टू एनी लेवल। और दूसरा फिजिकली नो बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकली बाउंड्री नहीं है। फिर अभी ये भाषा चेंज करने के प्रक्रिया से आप एक कंटेंट दूसरे लैंग्वेज में पढ़ के देख सकते हैं तुरंत उसी टाइम,
2: आसानी से,
0: इंस्टेंट। मतलब आपको ये नहीं है कि कोई आके ट्रांसलेट करके बताना है, तुरंत आप भाषा बदल सकते हैं। ये सब होते हुए पहले ये आता है कि टाइपिंग, जो लैंग्वेज में टाइप करते हैं उनको अभी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप कहीं से भी टाइप कर सकते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीसी से टाइप कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं,
2: सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत,
0: ओके, सॉफ्टवेयर का भी कोई जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिना खर्चे ये सब हो सकता है। और ये टाइप करके देंगे तो आपको पैसा मिल सकता है, सिंपल। दूसरा है, आप सिर्फ हाथ से टाइप करने का जरूरत नहीं है, अभी आप बोल के टाइप कर सकते हैं। वॉइस टू टेक्स्ट आ गया तो आप सिर्फ बोलेंगे तो टाइप हो जाएगा, फिर करेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि थोड़ा और बढ़ा देता है उसको, तो आप उसी चीज में एक और लेवल घुस गया। दूसरा, तीसरा है, आप हैंड राइटिंग करके टाइप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। वो अभी एक्चुअली टैबलेट आ गया, उसमें आप एक पेपर रखेंगे, पेपर के ऊपर बॉल पेन जैसा इससे लिखेंगे और वो लिखते लिखते इधर टेक्स्ट आते रहेगा। एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है, तो किसी को लिख के टाइप करना है वो कर सकता है। सो आपका टाइपिंग ही चार बार, चार एक एक आइटम में हो गया। इसके अलावा पुराना कंटेंट हो तो आप ओसीआर करके ले सकते हैं, पुराना बुक। ओके, ये एक हो गया टाइपिंग का। दूसरा, नेक्स्ट वाला, टाइपिंग करने के बाद उसको एक बार चेक करके प्रूफ करेक्शन वगैरह जो करेक्शन करना है वो एक हो गया। उसका भी अलग स्किल सेट रहता है, जो आदमी उसको देख सकता है, क्योंकि ये प्रूफ रीडर्स पहले बहुत होते थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: न्यूज़पेपर में और इवन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पे पब्लिकेशंस बहुत होता है, आजकल वो बंद हो गया। और कोई भी ये जो नया जनरेशन में वो प्रूफ रीडिंग एक्चुअली करना नहीं चाहता है, लेकिन रिक्वायरमेंट है। अगर कोई सोचता है कि मैं थोड़ा प्रूफ रीडिंग करूं, क्योंकि जिसको भी भाषा में इंटरेस्ट है वो प्रूफ रीडर बन सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ दो स्क्रीन रखेगा, एक में आपका टाइप किया हुआ, दूसरा वो जो ओरिजिनल है, आप कंपेयर करके देख लो, तो स्पेलिंग अगर गलत है तो टाइप कर देना। तो ये एक स्किल हो गया, इसका भी पेमेंट मिल सकता है। ये सब स्किल में ना पेमेंट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इसका नीड है। मेरे पास आ रहा है क्लाइंट कि अरे मुझे कोई है तो बताओ जो टाइप करके दे सकता है, जो प्रूफिंग करके दे सकता है, ठीक है। और तीसरा एक हो गया आवाज रिकॉर्ड करने का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी तरह ऑडियो का बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हो गया इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि ऑडियो एक चीज ऐसा है कि जो चलता रहता है 50 साल से, लेकिन ये डिजिटल ऑडियो काफी कुछ बदल दिया है। और उसके साथ अभी वो नया टेक्निक्स आया है, नया कंजम्पशन है। एक तो हम लोग गाड़ी चलाने के टाइम सुन सकते हैं, और दूसरा कहीं भी बैठ के रात को सोने का टाइम सुन सकते हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स भी कर सकते हैं, तो ऑडियो अपने हिसाब से डाल के। तो ये सब होता है, तो इसका रिकॉर्डिंग भी चाहिए। रिकॉर्डिंग में दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि आवाज बोल के रिकॉर्ड करवा दो, दूसरा ऑटोमेटेड होता है।
1: बिल्कुल।

0: ऑटोमेटिक भी अभी अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक यूजेबल नहीं है करके, यूजेबल है लेकिन मोनोटोनस रहेगा, आपको क्या है कि वो फीलिंग नहीं आएगा। अभी आप जब भी बात करते हैं तो यू चेंज द टोन्स, यू क्रिएट द एटमोस्फियर, फिर वो सब आप माहौल क्रिएट करते हैं उसमें, लाइक गंभीर है तो उस तरह टोन बदलता है, या तो हल्का रखना है तो उस तरह टोन बदलता है, इसमें वो नहीं हो पाएगा, आप नॉर्मल टोन में बात कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक है कि स्किल है, वो चाहिए, वो कर सकते हैं, ये भी घर से कर सकते हैं, आपको कोई स्टूडियो की जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में आपको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अच्छा क्वालिटी मतलब आ जाता है, उतना ये नहीं है कि वो आपको क्वालिटी थोड़ा बेकार रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा नॉइस कम होना चाहिए, उस टाइम आप रिकॉर्ड कीजिए और उसको भेजिए, इसका भी एक एक स्टोरी आप बताएंगे तो उसका पैसा मिल सकता है, ये एक रेवेन्यू मॉडल है
1: जी।
0: और ये हो गया सिमिलरली वीडियो, वीडियो आप छोटा छोटा वीडियो बना सकते हैं, इस तरह इंटरव्यू ले सकते हैं, इस तरह सोशल मीडिया में डालते हैं, उसी चीज को आप एक पेड चैनल या तो किताब उसमें आप कर सकते हैं। ओके, सो इसको कलेक्शन करके, तो वीडियो का भी हो गया। और ग्राफिक्स, ग्राफिक्स वालों को बहुत डिमांड है, जो आदमी कवर बना सकते हैं अच्छा सा, या तो अच्छा सा पोस्टर्स बना सकते हैं, ओके, उसको भी चाहिए ना, वो एक डिमांड है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल इन द फ्यूचर,
2: ग्राफिक डिजाइनर।
0: ओके, वो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जो कवर भी बना सकता है और इस तरह पोस्टर्स भी बना सकते हैं, बीच में जो टेक्स्ट है उसके बीच में कुछ ग्राफिक, इन्फोग्राफिक बोलते हैं, तो वो सब दे सकते हैं, तो काफी उसका डिमांड आएगा। तो ये इतना तो एक लेवल पे हो गया, ग्राफिक्स का है, इसका है। देन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए भी थोड़ा अगर करते हैं तो आजकल सभी इन्फोग्राफिक्स अच्छा चलता है, उसमें क्या करना है, थोड़ा बैठ के ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि किधर क्या हो रहा है, उसको कुछ एक रूप देके उसको कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: देन स्टोरी टेलर बहुत बड़ा डिमांड है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि हम लोग जो भी सीखते हैं कहानी से अच्छा से सीखते हैं, ये तो हमारा परंपरा है।
1: बिल्कुल।
0: सो उसी को एक्सटेंड करके आप थोड़ा भी लाइक एजुकेशन एंड इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, ये दोनों कंबाइन करके आप दीजिए, उसका डिमांड काफी अच्छा है। तो ये बच्चों को कहानी बोलने के लिए किसी को आता है तो वो भी ज्यादा कहानी रिकॉर्ड करके बेच सकते हैं। ओके, वो एक हो गया। देन नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, आपको कुछ स्किल आता है, आप संगीत सिखाते हैं या तो आर्ट सिखाते हैं या तो कोई भी चीज, कारपेंटरी सिखाते हैं या तो कोई भी चीज को स्किल डेवलपमेंट के रूप में आप इसमें डाल सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हर एक स्किल में थोड़ा ये समझ लीजिए कि इसको कैसा करना है, तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 थिंग्स विल बी कवर्ड इन दैट। इलेक्ट्रीशियन कैसा बनना है, एसी कैसा रिपेयर करना है, ओके, गाड़ी का कैसा रिपेयर करना है, छोटे छोटे चीजें जो हमको हर बार लगता है। कुकिंग, कुकिंग भी बहुत मतलब खाना पकाना तो ग्रेट, दैट हैज बिकम अ टॉप थिंग टूडे, क्योंकि कुकिंग चैनल्स आर ड्रॉइंग ह्यूज क्राउड्स। ओके, सो लेकिन हर एक अपने अपने लेवल से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको वायरल होना है या तो सबको करोड़ों व्यू मिलना है, बट अगर 10 जन भी देखते हैं और उसमें से 2 का भी फायदा होता है तो अच्छी बात है। हम लोग शुरू तो ऐसे ही करते हैं ना, तो ये नहीं है कि पूरा झाड़ पहले दिन हो जाता है हम, लेकिन शुरू करने में ये सब बहुत काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के लिए गेम्स बना सकते हैं, छोटा छोटा गेम्स, हम लोग किसी के साथ टाइप भी किया है अभी। अच्छा। तो बच्चों के लिए गेम्स बनाने का, लाइक कैसा गेम बनाएंगे, एक तो फिजिकल गेम्स जो होती है वो बन सकता है, दूसरा उनका भी क्या है कि बच्चों का भी डिजिटल इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, हर एक का बच्चे को मोबाइल देना एक जरूरी हो गया, सिर्फ उसको डाल के वीडियो डाल के छोड़ने के बजाय कुछ गेम्स उसमें दे दो, सो दैट बच्चों का थोड़ा दिमाग का भी डेवलपमेंट हो सकता है, साथ साथ में होता है, तो उसमें क्या है कि वर्ड गेम्स हो सकता है या तो कोई एक्टिविटी हो सकता है, सो फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह जो भी हम लोग पेपर में कर रहे हैं वही चीज डिजिटल में कर सकते हैं, ये भी करके रखा है, क्रॉसवर्ड दे सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप दे सकते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप करके छोड़ना है, तो इस तरह काफी कुछ 8-9 तरीके से क्विजेस दे सकते हैं। और इसमें मेन चीज क्या है कि ये डिजिटल पब्लिशिंग में आपको टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिविटी, ये पांचों मिलके एक साथ मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: आप अलग अलग चीज के लिए अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी कैसा है कि पॉडकास्ट है ये सिर्फ ऑडियो है, यूट्यूब है वीडियो है, ओके किताब है टेक्स्ट है, और इंटरएक्टिविटी है तो गेम्स अलग से है। तो ये सब मिला के अगर एक ही चीज में हमको मिलता है उसी चीज में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मैं वीडियो भी डाल सकता हूं, ऑडियो भी दे सकता हूं, और इंटरएक्टिविटी प्रोग्रामिंग टाइप भी कर सकता हूं, और टेक्स्ट भी देख सकता है, उसमें इमेज भी डाल सकता हूं। तो मेरा कंप्लीट बुक जो भी मेरे को करना है उसी में कर सकता हूं। और ये ऐसा टेक्नोलॉजी है कि 50-100 साल रहने वाला है।
1: बिल्कुल
0: ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ एफर्ट लेंगे तो कल ये चला जाएगा। और सो एक तो ये क्लियर है कि आपको आगे का दिशा जो है ना वो क्लियर है, साफ है, और कोई रुकावट नहीं आने वाली है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इसमें एक ही चीज है कि ये जो हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी और बाकी वाला, ये सब इसमें आराम से इंटीग्रेट कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: आप एक किताब बनाइए चैट जीपीटी से, उसको अनुवाद कीजिए सभी भारतीय भाषाओं में, ये सब टेक्नोलॉजी के रूप में, कोई मैनुअल वर्क कितना नहीं रहेगा, लेकिन कुछ चेकिंग तो करना है, वो तो जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: हम लोग कुछ करते हैं तो वो सही है कि गलत है वो तो चेक करना है, उसके बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं एक स्टोरी लिखा, जैसे बच्चों का स्टोरी है, एक लैंग्वेज में बता दिया, फिर मैंने वो भी मैं टीम बोल के एआई से लिखवाया। अच्छा। मैं वो भी किया। सो अगर अब टीम बोल दिया कि एक दो तीन जानवर चाहिए मुझे, ओके एक लड़का एक लड़की चाहिए, और इस तरह एक माहौल है, एक स्टोरी बनाओ, वो अपने आप बना के देता है। ओके लेट्स से अंग्रेजी में देता है, उसको फिर अनुवाद किया हिंदी में, अनुवाद किया तमिल में, अनुवाद किया बंगाली में, ये पूरा ऐसे ही किया। उसके बाद उसका टेक्स्ट तो मिल गया, उसी को भी मैंने वो करके बुक बनाया और उसको रीड आउट किया ऐसे। ओके तो ये पूरा मेरा किताब है, पूरा बन गया है ऐसे।
1: अच्छा।
0: खर्चा कुछ नहीं है, एक दो घंटा बैठा है, बस हो गया। तो ये होने वाला है ज्यादा, आपको आइडिया से मतलब है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दूसरा अभी आप देखिए कि कंटेंट का जो तरीका है ना वो भी बदलने वाला है। हम लोग अभी क्या करते हैं कि एक ही आदमी सोचना है लिखना है करना है सब कुछ होता है, उसके बदले आप कंटेंट क्यूरेटर बन जाइए। कंटेंट तो बहुत है लेकिन उसमें से थोड़ा फिल्टर करके अच्छा कंटेंट जरा लेके आइए। वो सी सर्चे तो सब कचरा भी आएगा साथ में अच्छा भी रहेगा, तो एक थोड़ा फिल्टर लगा के आप अच्छा कंटेंट दीजिए। तो इसका मतलब अभी क्या है कि कोई एक वीडियो हम लोग लेते हैं, गाने का ही वीडियो लेते हैं, तो रवि साहब का गाना है वो हम लोग ऐसा ही उठा के सर्च करेंगे तो हजारों में मिलेगा, उसमें से थोड़ा फिल्टर करके सुनिंदा गाना है ये 50 गाना
1: सिलेक्टेड है,
0: वो हम लोग कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई डिग्री चाहिए या तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए। गाना तो यूट्यूब में है। ओके आप थोड़ा बुद्धि लगाइए, थोड़ा एक अच्छा सा स्कीम बनाइए, उसके रूप में एक बुक बनाइए और बुक आप दे दीजिए, और ये आप निशुल्क दे सकते हैं, पेमेंट के साथ दे सकते हैं, आपके ऊपर है।
1: अच्छा।
0: तो आपको पेमेंट भी लेना है तो ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। सो ये सब नया टेक्निक्स है ना, ये आने वाला है अगले 5 साल में 10 साल में। उसके लिए जो यंगर जनरेशन है वो तैयार रह सकता है ये सब थोड़ा थोड़ा सीख के। ये कोई सीखे आएगा नहीं है क्योंकि किसी को अभी ये पूरा क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन 1-2 साल के बाद आएगा, इंस्टीट्यूट्स भी आएंगे और सिखाने वाला भी रहेगा, लेकिन कोई आज इसमें घुसेगा उसको फायदा उठा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको जरूर हेल्प करूंगा कि ये ऐसा ऐसा आप चाहिए।
1: बिल्कुल श्रीधर जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक नया करियर ऑप्शन आपने बताया, और बहुत सारे करियर के जो है अलग अलग पहलू को आपने इस बीच में बताया, और जहां पर आपने बताया कि ऑडियो वीडियो इमेजेस टेक्स्ट और फिर एआई का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग जो है अपना करियर को बना सकते हैं, इसके बारे में आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है सभी हमारे विद्यार्थी मित्रों को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए सुरेश जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश के रूप में आप विद्यार्थी मित्रों को क्या बताना चाहेंगे।
2: विद्यार्थी मित्रों को मेरा एक सुझाव है कि अपने कार्य में एक तो फोकस रखिए, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और उस पे डटे रहिए और

0: भी आप कंटेंट बनाते हो उसको और अच्छा करने की कोशिश कीजिए और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो अगर ये आप करेंगे तो सफलता बिल्कुल आपके पैर चूमेगी। और मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी मित्र आगे बढ़े अपने करियर में और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद
1: जी सूर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया। चलिए मित्रों, आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आपको ब्रीफ जो है मिल गया है, कितने करियर ऑप्शन खुल सकते हैं और छोटे छोटे जो करियर के जो सपने हैं, ड्रीम्स, आपको श्रीधर जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से करके बताया है। और मोबाइल आपके हाथ में है और इससे आप सारी चीजें कर सकते हैं और चैट जीपीटी जो है इसका इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके आप जो है अपने कंटेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। और जितना आप करेंगे और कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको मुश्किल आ रहा है इन चीजों को करने में, तो श्रीधर जी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। तो आप श्रीधर जी से भी संपर्क कर सकते हैं और सुरेश जी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपना करियर को अच्छा बनाएं, अपना और परिवार का नाम करें, देश का नाम करें, ऐसी शुभ आशा के साथ ढेरों खुशियां आप सभी को और मंगल कामनाएं करते हैं। फिर से एक बार सुरेश जी एंड श्रीधर जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, सैटरडे फिर मिलेंगे इसी तरह इसी समय। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: डिटेक्टिव गोपीचंद, जासूस गोपीचंद लियोपोल्ड रेस्टोरेंट में अपने दोस्त डॉक्टर मदन के साथ पहुँचे।
1: यहाँ ये सर, इधर बैठिए।
0: अचानक एक हादसा हुआ।
1: अरे देखो, अगली टेबल पर एक आदमी अपनी कुर्सी से गिर गया।
0: डॉक्टर मदन दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुँचे।
1: तुरंत एम्बुलेंस लाओ, इसके मुंह से स्मेल आ रही है, लग रहा है जहर का मामला है।
2: फूड पॉइजनिंग,
0: गोपीचंद आई कार्ड दिखाते हुए बोले।
2: मैं इसे सॉल्व करूंगा,
0: गोपीचंद ने वेटर्स को बुलाते हुए कहा।
2: माणिकचंद को खाना किसने परोसा था?
0: वेटर इधर उधर ताकने लगा और बोला।
3: सर मैंने कुछ नहीं किया। सर माणिकचंद जी ने सीधे कुक चंपू से खाना मंगवाया था, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे।
2: मैनेजर साहब, चंपू को बुलाइए।
4: गोपी जी, चंपू पहले माणिकचंद जी के लिए ही काम करता था।
2: ओ, आपका किचन कितना साफ है।
4: सर हमारा किचन शहर का सबसे साफ किचन है।
2: क्या यहाँ चूहे नहीं है?
4: एक भी चूहा ढूंढ कर दिखा दे, मैं तो आपको मुफ्त में खाना खिला दूंगा।
2: चंपू, तुम माणिकचंद के साथ कितने समय तक रहे थे?
5: सिर्फ 6 महीने सर।
0: तभी एम्बुलेंस आ गई। डॉक्टर मदन बेहोश माणिकचंद को अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने कहा।
4: सर क्या आप सोचते हैं कि मेरे स्टाफ में से कोई माणिकचंद की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है?
2: संभवतः चंपू।
4: पर आपने चंपू को दोषी कैसे माना?
2: यह चंपू और माणिकचंद की पुरानी दुश्मनी का नतीजा है मैनेजर।
4: पर क्यों सर?
2: क्योंकि जब मैं किचन में गया था, तब मैंने सब्जियों के छिलकों के साथ जहर की खाली शीशी भी देखी थी, और बस मैं सारा भेद समझ गया।
6: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
7: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस 5 पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, 5 आत्माएं, ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल, हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर 5ों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज 4 की भी नहीं है, 1 भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर 5ों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
6: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई,

ये दुनिया वाले हम हैं अभी जवान, हम हैं अभी जवान। अरे कुछ भी कहे ये दुनिया वाले हम हैं अभी जवान, अरे हम हैं।

मार्केट से आउट हुआ, लोगों को डाउट हुआ, मेरी बचत वो गया गया गया गया। किस्मत तो बदली, क्या कहूँ रियली।

啊。

0: करते आप?
1: भगवान की काका जाप।
0: क्यों रे निखट्टू भाड़े के टट्टू, और नहीं कोई तुझको काम। जब देखो ये पुस्तक लेकर जपता है तू रामनाथ।
1: अरे भगवान, नाम राम का लेना तो कोई पाप नहीं है?
0: पकी पकाई देने वाला घर में कोई तेरा बाप नहीं है?

不用。